अरे दिल हमारा हुस्न वालों का अखाड़ा अखाड़ा हो गया, अपने ही हाथों से खुद अपना, अरे अप

इसी उलझन में है प्यार बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हो बड़ी मुश्किल है।

चढ़ने मरने को तैयार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है, एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लूटा।
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योति स्वयं भी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे. आशा करती हूँ आप प्रसन्न भी होंगे. तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है, सबका प्रिय वही होता है जो प्रभु का प्रिय होता है, यानी कि सर्व प्रिय ही प्रभु प्रिय है. किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो अक्सर अपने परिचय में हमें वह बताता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, शिक्षक हूँ, इस तरह से चिकित्सक हूँ, इस तरह से अपना वो परिचय देता है. आध्यात्म कहता है कि व्यापार करना, शिक्षा देना या चिकित्सा करना उस व्यक्ति की सृष्टि रंगमंच पर भूमिका है. वास्तव में वो एक आत्मा है. सफल अभिनेता भी वही है जो हर रोल बड़ी संजीदगी से निभाए. आत्मा एक क्या है? प्रकाशमान सितारे के आकार की अति सूक्ष्म दिव्य सत्ता है जो शरीर रूपी ड्रेस पहनकर रंगमंच पर रोल प्ले करती है. कोई भी आत्मा एक शरीर धारण कर केवल एक रोल प्ले नहीं करती, बल्कि अनेक प्रकार के रोल एक ही शरीर से प्ले करती है. जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक सफल व्यापारी है, परंतु व्यापारी की भूमिका क्या है? हाँ, उसके साथ साथ वो उसकी अन्य भी कई भूमिकाएं हैं, जैसे भाई की, पुत्र की, पिता की, पति की, पड़ोसी की, पेशेंट की, यात्री की, तो या ग्राहक की, या दर्शक की, पाठक की. तो हम देखते हैं कि व्यापारी की भूमिका में वो वाहवाही लूटता है, परंतु यदि अन्य भूमिकाओं में अगर वो खरा नहीं उतर पाता है, जैसे कि पत्नी से झगड़ा, पुत्रों से क्रोध, माता से अनबन, बहनों से उदासीन, पड़ोसियों से कटाकटा, अपने चिकित्सक के साथ झुंझलाया हुआ, यात्रा में भी बेचैन, तो उसे सृष्टि रंगमंच का कैसा अभिनेता मानेंगे? सफल अभिनेता भी वही है, वह माना जाएगा जो हर भूमिका बड़ी संजीदगी से निभाता है. मान लीजिए कोई अगर फिल्मी अभिनेता किसी फिल्म में उसे राजा का रोल करना है तो बहुत ही सुंदर प्ले करता है, परंतु अन्य 10 फिल्मों में उसका रोल क्रमशः नौकर का, सिपाही का, चपरासी का, शिक्षक का, या पिता का, कुली का, भिखारी का, पहरेदार का, पुत्र का, पति का, या अन्य किसी भी रोल में वो रहता है. ये उसने संजीदगी से निभाए हाँ या नहीं निभाए. नहीं अगर निभाए हैं तो उसके लिए कहा जाएगा कि अमुक अभिनेता की केवल एक फिल्म सफल हुई, बाकी सब फ्लॉप हो गई. इसी प्रकार सृष्टि रंगमंच के उस उपरोक्त अभिनेता की केवल एक भूमिका व्यापारी रूप में सफल हुई, बाकी सब फ्लॉप हो गई. तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को.

नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है सबका प्रिय वही है, यानी कि सर्वप्रिय ही क्या होता है, प्रभु प्रिय है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि एक्टर एक फिल्म में अगर उसने अच्छी भूमिका निभाई और दूसरे में उसने उसका अभिनय अगर अच्छा नहीं है तो उसकी जो फिल्म है वो फ्लॉप क्यों हुई, ये क्यों हो जाती है, भूमिकाएं यहाँ पर क्या है उसकी। कोई भी अभिनेता जब किसी भी भूमिका का निर्वहन करने से पहले उसकी तैयारी में समय नहीं देता उस भूमिका को आकर्षक बनाने के लिए, स्वयं को उसके अनुरूप नहीं ढालता तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ न्याय नहीं करता तो करता है तो उसकी वह भूमिका फ्लॉप हो जाती है। उसी प्रकार है कि जीवन रूपी नाटक में भी जब कोई भी एक्टर अपनी किसी भी भूमिका को समय नहीं देता, उसकी अहमियत को नहीं समझ पाता, उसे सम्मान नहीं देता तो उसकी भी वह भूमिका क्या होती है, फ्लॉप हो जाती है। वह अपनी किसी एक इमेज को सवारने में समय शक्ति ऊर्जा लगाता है परंतु अन्य भूमिकाओं पर वो क्या करता है, गौण उसको मानकर उसकी अवहेलना करता है। तब कहने में तो आता है ना कि वह अपनी पत्नी से पुत्रों से न्याय नहीं करता, परंतु वास्तव में तो वह अपनी पति वाली भूमिका से और पिता वाली भूमिका से न्याय नहीं करता। इस प्रकार वह क्या होता है, ऑलराउंडर अभिनेता बनने के बजाय किसी एक भूमिका को पकड़कर उसी तक सीमित रह जाने वाला साधारण एक्टर बन जाता है। यहाँ देखते हैं कि हम भूमिका को सीमित या असीमित करते हैं अवगुण और अवगुण, अवगुण और गुण जो होते हैं उसको भी हम देखते हैं कि उस पे क्या करते हैं। सृष्टि रंगमंच पर मानो जो है कि भूमिका को सीमित कौन कर देता है, हाँ, उसको हम देखते हैं उसकी भूमिका जो है सीमित या असीमित करते हैं उसके अवगुण और गुण, मानो चाहे तो सारी सृष्टि को प्रभावित कर सकने वाली भूमिका भी प्ले नहीं कर सकता और चाहे तो ऐसी भूमिका भी प्ले कर सकता है कि उसके नजदीकी लोगों पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। जैसे मान लीजिए बाजार से हमने एक लोहे का टुकड़ा खरीदा, अब उसकी कीमत है 50 रुपए। हमने उस टुकड़े को इस प्रकार ढाला कि वह एक स्कूटर का महत्वपूर्ण पुर्जा बन गया, अब जिससे उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत हो गई 500 रुपए। इससे भी आगे अगर आप देखें तो यदि हम उसे और अधिक तराश कर कार का पुर्जा बना देते हैं तो उसकी कीमत हो जाती है 1000 रुपए। और यदि इतना आकार दे कि वह हवाई जहाज में काम करने वाला कोई महत्वपूर्ण स्क्रू बन जाए तो कीमत उसकी 5000 रुपए तक भी की जा सकती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि लोहे के टुकड़े के साथ गुणवत्ता जुड़ती गई और कीमत बढ़ती गई। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है सर्वप्रिय ही प्रभु प्रिय है। एक होता है यहाँ पर हम देखते हैं इंद्रियों की जो गुणवत्ता की वृद्धि। इसी प्रकार कोई भी साधारण जो व्यक्ति होता है वो ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से यदि अपने विचारों में सर्व के लिए शुभकामना, नेत्रों में सर्व के लिए पवित्रता की किरणें और मुख में सर्व को ऊंचा उठाने वाले बोल और हाथों में परोपकार के कर्म भर ले तो उसकी भूमिका जो है वैश्विक हो जाती है। हर कोई उसे जाने लगता है, हर कोई उसे अपना मानने लगता है। वह सर्वप्रिय अर्थात लोकप्रिय के साथ साथ प्रभु प्रिय भी बन जाता है। ऐसा इसलिए वो पाया क्योंकि उसने अपने एक एक इंद्रियां की गुणवत्ता को बढ़ा लिया। कई भाई बहन के मन में एक प्रश्न आता है कि हम अपनी भूमिका को सर्वप्रिय बनाना चाहते हैं, परिवार में सबको राजी रखने के साथ साथ समाज देश में भी सबको राजी रखना चाहते हैं, परंतु पता नहीं क्यों हमसे ऐसा चिंतन भूल और कर्म हो जाते हैं जो भूमिका फ्लॉप हो जाती है। अब इस प्रश्न के उत्तर में हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी जो है किसी दीवार के साथ टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तब वह कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये टकराए, परंतु पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। इसका स्पष्ट उत्तर है कि चालक में नियंत्रण शक्ति की कमी थी। उसने समय पर गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाए, ब्रेक की सुविधा होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए दुर्घटना घट गई। यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं कि नियंत्रण शक्ति की कमी। इसी प्रकार मानव जो है जीवन रूपी गाड़ी की जो चालक मानव आत्मा है, मानवीय जो

गाड़ी के सभी महत्वपूर्ण अंगों को चलाना या रोकना यह आत्मा के वश में है। अब यदि मुख से क्रोध के शब्द या अन्य प्रकार के नकारात्मक शब्द निकलते हैं तो इसका अर्थ है कि आत्मा चालक में नियंत्रण शक्ति की कमी है। वह अपनी ही एक अंग मुख को कमांड नहीं दे पा रही है कि कब उसे क्या बोलना है, क्या बोलना है उसे ये नहीं पता, कितना बोलना है। तो यहाँ हम देखते हैं लौकिक दुनिया में जब कोई ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल कर न कर पाए और दुर्घटनाग्रस्त कर ले तो उसका जो लाइसेंस जब्त हो जाता है और अदालत में उस पर कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार जब हम अपने और शरीर की जो कर्म इंद्रियों को अगर ठीक से कमांड नहीं दे पाते हैं और उनके कारण किसी से टक्कर या चक्कर में फंस जाते हैं तो हमारा भी सुखमय जीवन जो है जीने रूपी जो है उसकी लाइसेंस जो है जब्त हो जाती है, अर्थात हम रोग शोक के शिकार हो जाते हैं और हम पर क्या होता है, हम पर भी धर्मराज की अदालत में कार्यवाही चलती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है सर्व का प्रिय प्रभु प्रिय। जैसे कि हम देखते हैं कि आत्मा की इंद्रिय पर नियंत्रण शक्ति बनी रहे और बढ़ती रहे, इसके लिए भगवान शिव कहते हैं प्रजापति बने हो, इंद्रियों रूपी प्रजा के मालिक हो, क्या अनुभव करते हो? हाँ, स्टॉप कहा और कोई भी कर्म इंद्रियां जो है स्टॉप हो गई। ऐसे नहीं आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। हर कर्म इंद्रिया की शक्ति को आंख के इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्म इंद्रिय जीत विमुख तब फिर प्रकृति जीत मन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनो। तो अपने से पूछो हर कर्म इंद्रिया जी हुजूर जी हाजिर करते हुए चलती है, आप राज्य अधिकारी का सदा स्वागत और सलाम करती रहती है। राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है। हे राज्य अधिकारी, आप सबकी राज्य कारोबार कैसी है? मंत्री उपमंत्री कहीं धोखा तो नहीं देते हैं? चेक करते हो अपने राज्य दरबार को? राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी? राज्य अधिकारी की यहाँ के संस्कार ही भविष्य में काम करेंगे। फौलादी दृढ़ता का प्रतीक आसमान में चमकते हाँ ही चमकने वाला ध्रुव तारा जिस ध्रुव बालक की यादगार है उसकी पौराणिक कहानी में दिखाया गया है कि वी माता के कटु वचनों से आहत होकर वह अकेला ही तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा और तपस्या में रत हो गया। तपस्या करते करते भूख प्यास श्वास निद्रा भय सब पर विजय प्राप्त कर ली। इस अखंड तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया, बेटा ध्रुव जिस पद को तुम्हारे पिता या पितामह तक ने नहीं पाया है, जिसे और भी कोई नहीं पा सका है, वह ध्रुव लोक तुम्हारा है। अभी तुम घर लौट जाओ, पिता के बाद सिंहासन को घोषित करना, पृथ्वी पर राज्य भोग कर फिर तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। आत्मनियंत्रण और निरंतर जो तप में ध्रुव को प्रभु प्रिय के साथ सर्व प्रिय भी बना दिया। हम सब भी विकारो रूपी वी माता के कटु वारों से आहत हो परमात्मा पिता की अव्यभिचारी याद रूपी तपस्या के पद पर अग्रसर है। इस पद का एक ही मूल मंत्र है स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों पर विजय। इंद्रिय जीत ही विश्व जीत, विश्व प्रिय लोक प्रिय सर्व प्रिय और प्रभु प्रिय है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। सदा हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हाँ, और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने तीन पड़ाव तो तय कर लिए इस पूरी श्रृंखला में, और एक नई नजर से जो है हम पूरे ना सिर्फ स्व को बल्कि अब जब अपने आप को मैनेज करते हुए हमने अपने रिलेशनशिप्स में और बाहर देखा तो काफी सारे बदलाव दिखते हैं। आपने बात की थी कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है रिसोर्सेस, यानी संसाधन, पर वो रिसोर्सेस क्या है?
1: ट्रू, बिकॉज ईच वन ऑफ अस, हम सबके पास वही रिसोर्सेस हैं। यू नो, जो हम कई बार अपने आप को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और हम कहते हैं इनके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, वट एवर, एक्चुअली हम सबके पास वही रिसोर्सेस हैं। अंतर किस में आ रहा है कि हम अपने रिसोर्सेस को किस तरह से यूज करते हैं, एंड दैट विल ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट इन माई लाइफ। कि मेरे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, लेकिन आपका उसको यूज करने का तरीका और मेरा उसको यूज करने का तरीका वो डिफरेंट हो जाएगा। अब हर एक के पास जो रिसोर्सेज हैं सेल्फ के, वो तीन लेवल पर होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। थ्री रिसोर्सेज जो हम सबके पास है। सो लेट्स से फिजिकल रिसोर्सेज, आज फिजिकल वेलबींग की जितनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, मतलब शायद पहले इतनी नहीं अवेयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ। आप मैगजीन्स देख लो, न्यूज़पेपर, आई मीन एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वेलबींग, एंड येट एट द सेम टाइम इलनेस
0: बहुत ज्यादा है। वी आर ऑल फिजिकली इल, कोई ना कोई बीमारी कहीं ना कहीं
1: समवेयर, कहीं छोटी सी कुछ तो फिर भी एक यू नो कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज वी सो अर्लियर वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वहां शक्ति अपने आप जाएगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जबकि हम सब अपने शारीरिक स्वास्थ्य का इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, इतने कॉन्शियस हो गए हैं, फिर भी हेल्थ क्यों नहीं आ रही है? फिर भी हम क्यों, हमारी बीमारी की यू नो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है जबकि हम ध्यान ज्यादा रख रहे हैं? पहले इट वॉज नॉट देयर, पीपल वर नॉट इवन सो अवेयर ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा डिस्कनेक्ट है, और वो सिंपल जो डिस्कनेक्ट है वो ये कि पहली बात मैं कौन हूं, इसी का जो आंसर था। सो व्हेन आई सॉ दैट आई एम द बॉडी, क्योंकि अभी तक तो हम इसी इल्यूजन में चल रहे थे कि मैं शरीर हूं, तो मैं अगर शरीर हूं तो मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो हम कहते हैं फीलिंग्स कौन सी आपकी, तो मेरी जो प्राइमरी फीलिंग्स है, मुख्य फीलिंग्स हैं जो मुझे अनुभव होती है, वो कौन सी होती थी?
0: शरीर को लेके,
1: हाँ,
0: या मुझे लेके कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: हाँ, तो वो कौन सी फीलिंग होती है? यू नो फीलिंग्स, जैसे आई वॉज डूइंग अ वर्कशॉप इन अ कंपनी एंड आई जस्ट आस्क्ड देम कि फीलिंग कहाँ क्रिएट होती है?
0: हार्ट
1: ना, उन्होंने कहा फीलिंग तो
0: बॉडी में होती है,
1: पूरे बॉडी में होती है।
0: व्हेन यू टच, यू नो दिस इज अ फीलिंग,
1: दिस इज अ फीलिंग, सी। सो मेजॉरिटी, एंड वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दैट, कि हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे कि फीलिंग कहाँ क्रिएट होती है। दे सेड कहाँ क्या क्रिएट होती है, पूरे शरीर में तो क्रिएट होती है, देखो हर जगह फीलिंग क्रिएट हो रही है। वाई? क्योंकि अवेयरनेस इतनी बॉडी के ऊपर है कि मैं ये शरीर हूं, तो जो स्टिम्युलेशंस, जो ये सेंसेशंस मुझे शरीर के थ्रू मिल रहे हैं, मैंने उन्हीं को अपनी प्राइमरी फीलिंग देख लिया। मैं सकल लेवल पर तो गई नहीं, तो एक थॉट के साथ चले कि मैं शरीर हूं, तो शरीर के द्वारा, इन पांच इंद्रियों के द्वारा जो जो सेंसेशंस आते हैं, यू नो आर फाइव सेंस ऑर्गन्स, तो माय साइट, माय ईयर्स, स्मेल, माय माउथ एंड टच, ये पांच कर्म इंद्रियों द्वारा जो सेंसेशंस आती हैं, वो मेरी फीलिंग्स, माय प्राइमरी फिजिकल फीलिंग्स जिसको हम बोलते हैं, वो बनती गई सेंसेशंस। और फिर मैं शरीर हूं, ये फीलिंग्स हैं, तो इनसे जो मुझे फील होगा ये मुझे खुशी देगा। कुछ अच्छा देखने से, कुछ अच्छा सुनने से मुझे खुशी मिलेगी, कुछ अच्छा खाने से मुझे खुशी मिलेगी, अरोमा, अरोमाथेरेपी, कि आपको वो अच्छी सुगंध मिलेगी तो खुशी क्रिएट होगी। यस, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, क्योंकि स्टिम्युलेंट तो है, तो वो स्टिम्युलेंट बाहर से आ रहा है, वो एक सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा कि ये मेरी प्राइमरी फीलिंग है, मेरा नेक्स्ट कंक्लूजन ये था कि खुशी कहाँ से आती है? बाहर से।
0: तो हेल्थ भी यही से आएगी, यू नो, हम जो सारे अगर
1: एवरीथिंग वॉज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन कि आउटसाइड इन, तो इसलिए हम खुशी के लिए, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर एक का क्या था, क्या चाहिए?
0: Happiness.
1: खुशी चाहिए। बट बिकॉज आई थॉट आई एम द बॉडी एंड देन आई रियलाइज्ड कि स्टिम्युलेंट बाहर से है, सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हैप्पीनेस

0: एवरीवेयर आउटसाइड. एंड फिर मैं कहती हूँ खुशी के लिए मैं ये करती हूँ, खुशी के लिए मैं ये खाती हूँ, खुशी के लिए मैं ये सुनती हूँ, खुशी के लिए मैं नए नए कपड़े खरीदती हूँ. एवरीथिंग वॉज वर्किंग दिस वे. तो वी स्टार्टेड बिकमिंग वेरी डिपेंडेंट.
1: लेकिन वो दे तो रही थी खुशी,
0: स्टिमुलेशन. यस डेफिनेटली.
1: कुछ देर के लिए, चाहे वो नया कपड़ा था, चाहे वो कुछ जो मैं खाना चाहती हूँ, जो मैं देखना चाहती हूँ, वो दे तो रहा
0: है. स्टिमुलेंट तो है, इसीलिए हम उसको स्टिमुलेंट कहते हैं. कि स्टिमुलेंट आता है, आप टीवी देख रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, या आपको किसी चीज की आदत पड़ी है. चॉकलेट, चॉकलेट इज अ वेरी बिग स्टिम्युलेंट. कॉफी इज अ वेरी बिग स्टिम्युलेंट. ऑफकोर्स अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीजें. तो वो बार बार जो टेस्ट हम क्रिएट करते हैं वो स्टिम्युलेट तो करता है ना, कहीं ना कहीं.
1: अब स्टिम्युलेट किसे करता है, मेरे थॉट प्रोसेस को?
0: यस yes.
1: या मेरी बॉडी ऑर्गेनिटी
0: सेंसेस? टेस्ट बड हियर, राइट? टेस्ट मैंने लिया, जैसे चॉकलेट खाई, मैंने टेस्ट लिया, लेकिन टेस्ट को परसीव किसने किया?
1: माइंड.
0: परसीव तो माइंड ने ही किया ना. माइंड ने परसीव किया कि ये टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे ये रियलाइज नहीं था कि ये थॉट कौन क्रिएट कर रहा है, ये थॉट ऑफ हैप्पीनेस कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ. सो आई थॉट कि अनलेस आई डोंट ईट दैट चॉकलेट,
1: चॉकलेट के कारण हो रहा है ये.
0: So I needed these things.
1: Oh, मतलब like shopping करूंगी मैं तो shopping के कारण मुझे खुशी
0: मिल रही है. So shopping आज बहुत बड़ा एक वो है लोगों को, कि कहते हैं कि मैं बहुत stressed हूँ.
1: Let's go for shopping.
0: So shopping is supposed to be a de-stressor. कि shopping करूंगी तो मेरा mood ठीक हो जाएगा. Why? Because it is definitely a stimulant. तो अब इतने सारे stimulants हम ढूंढते गए कि कौन सी चीज मुझे खुशी देगी, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे म्यूजिक है, आज वीडियो गेम्स है. यू हैव टू सी चिल्ड्रन विद दैट. आई मीन दे आर टोटली सक्ड इन, एब्सोल्युटली. उनको कोई अवेयरनेस नहीं है कुछ हो रहा है. तो उतनी देर वो चीज आपके ऊपर क्या कर देती है?
1: हावी हो रखी होती है. बिल्कुल
0: हावी हो जाती है पूरी तरह. एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग कि दिस क्रिएट्स माई हैप्पीनेस.
1: ओके, बट व्हाट इज इट इन देम? उनमें ऐसा क्या है, वो क्यों ऐसे स्टिमुलेंट है?
0: सी, इट्स नॉट स्टिमुलेंट फॉर एवरीबॉडी. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज स्टिमुलेंट है. आपके लिए कॉफी स्टिमुलेंट हो सकती है, मेरे लिए चॉकलेट हो सकती है. आपके लिए गेमिंग हो सकती है, मेरे लिए मोबाइल पे बात करना हो सकता है. आपके लिए टीवी देखना हो सकता है, मेरे लिए इंटरनेट चैटिंग हो सकती है. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल.
1: और इतनी ज्यादा है, और इनफैक्ट यस, जो मेरे लिए नहीं है वो मुझे दूसरे को करते हुए नजर आता है कि वो गलत है उसके लिए,
0: लेकिन जो मेरे लिए है
1: वो मुझे ठीक लग
0: रहा
1: है.
0: मुझे नहीं पता,
1: क्योंकि वेरी ट्रू. जब हम बच्चे को इन्वॉल्व हुआ देखते हैं तो हमें खुद को लगता है कि ये गलत हो रहा है.
0: लेकिन हम बहुत सारी चीजें करते हैं ऐसे जो हमें खुद उस टाइम नहीं अवेयरनेस आती. अब वो अलग अलग लोगों के लिए कैसे बन गई? जो चीज मैंने करने शुरू की, एक बार खाई चॉकलेट, आई लाइक इट, सेकेंड टाइम आई एट इट. एंड वी हैव सीन के जो कर्म क्रिएट करते जाओ बार बार बार बार, तो थोड़े टाइम के बाद इट बिकम्स माई हैबिट. तो ये मेरी हैबिट बन गई है. अब मैंने समझा कि ये हैबिट मुझे खुशी देती है, तो आई एम फीलिंग लो, मेरा मूड ठीक नहीं है. एंड मेरे अंदर वो बिलीफ फिट है कि चॉकलेट खाने से
1: मुझे अच्छा लगता है.
0: तो इमिडिएटली मेरा हाथ कहाँ जाएगा? एक चॉकलेट की तरफ.
1: अवेलेबल भी है, चलो आसान से.
0: या टीवी देखने से मेरा मूड ठीक हो जाएगा. नाउ व्हाई डज इट हैपन? क्योंकि टीवी मेरे माइंड इंटेलेक्ट पर इतना ओवरपावर कर देती है कि मेरी अपनी थॉट्स, सी इट इज अ सिचुएशन विच ओवरपावर्स मी. जैसे परिस्थिति मुझे ओवरपावर करती है, लोग मुझे ओवरपावर करते, उसी तरह वहां जो क्रिएट हो रहा है, दिस होल कॉन्शियसनेस कि कोई चीज मुझे ओवरपावर करती है एंड इट क्रिएट्स माय इमोशंस, एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम द टेलीविजन. क्योंकि टेलीविजन या कोई भी मूवी या कुछ हम देख रहे हैं, तो हम अपनी थॉट पावर, अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल बंद करते हैं. वो उदास है तो हम उदास हैं, वो गुस्से में है तभी तो हम कहेंगे ना सीरियल बहुत अच्छा है. कौन सा सीरियल और कौन सी मूवी अच्छी होती है जो आपको इमोशनली
1: स्टिम्युलेट करती है, जिसके साथ हम रिलेट कर पाते हैं?
0: तो हम कहते हैं हम उसके साथ जुड़ गए. जुड़ गए मतलब आप रोए, मैं रोए साथ में. सो दैट इज द मूवी विच इज सक्सेसफुल, जो आपको पूरे 3 घंटे आपका मन, आपकी बुद्धि कहीं नहीं गई. तो आपको कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ा उतनी देर. दैट वॉज डूइंग योर जॉब फॉर यू. It was creating your emotions for you. इट वॉज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू. यहां से हमें आदत पड़ती है और यही हमारी क्रिएटिविटी उस टाइम एकदम क्या बोलेंगे you know more or less it's in the nil stage and because of this even when I come into real life situations I work in that same mode ki aap mere upar influence karte hain situation mere upar influence karte hain
1: mujhe aadat itni ho chuki I'm not even ready you know
0: yes I'm not creative jo humne pichle episode mein dekha ki main situation ko ek naye nazariye se dekhkar ek naya drishtikon dekar ek naye tarah se role play karu
1: नहीं वो तैयार ही नहीं होते. इनफैक्ट यू नो कितनी बार देखा गया है हम इनफैक्ट अगर अपने अनुभव से भी देखें मूवी हॉल से निकलते हैं हम पूरे उस मूवी के इन्फ्लुएंस में इतने ज्यादा होते हैं और कितनी देर तक रहता है वो इन्फ्लुएंस. हम कुछ भी डिसीजन लेने के उसमें नहीं स्थिति में नहीं होते. सीरियल से बाहर निकलते हैं या मैच देखते हुए कभी बाहर जब फिनिश होता है मैच कितनी देर तक हमारे ऊपर वो पूरा और हम
0: ये हो गया ना किसी चीज ने हम पर सेम थिंग इज हैपनिंग विद वीडियो गेम्स. सेम थिंग हैपेंस विद इंटरनेट. आप इंटरनेट पर बैठे हैं आपको टाइम की अवेयरनेस नहीं रहेगी. कुछ आपके पास हो रहा है उसके मतलब इतने घंटों के बाद सडनली आप देखेंगे तो क्या हुआ उतनी देर उस चीज ने आपको पूरी तरह से हावी कर लिया. ड्रग्स क्या करता है
1: वो तो खैर फिजिकली
0: हमने देखा. सो सेम थिंग इज हैपनिंग. व्हाई इज दिस एन एडिक्शन. ड्रग्स क्या कर रहा है हमें रियलिटी से परे लेके जा रहा है. ये चीजें क्या कर रही है हमें. मैं मेरा मूड ठीक नहीं है आज ऑफिस में कुछ हुआ कोई ऊपर नीचे बात हुई है मेरे मन पर चल रही है मैं आकर टीवी ऑन कर दिया. वो टीवी पर जो चल रहा है उसने मुझे रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर दिया. मैं अपना स्ट्रेस भूल गई ऑफिस की बात भूल गई जितनी देर मैं वो देख रही थी मेरा माइंड और इंटेलेक्ट पूरी तरह से.
1: आई यूज्ड टू डू इट अर्लियर यू नो स्टार्ट अ नॉवल. आई यूज्ड टू रीड अ नॉवल. जैसे कोई प्रॉब्लम आई रीड अ नॉवल यू नो आप ड्रिफ्ट हो गए
0: yes.
1: फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम
0: प्रॉब्लम सॉल्व होगी. तो लेकिन जितनी देर आपने वो स्टिम्युलेंट लिया है आप उस दर्द से फ्री है. That's why we go for stimulants. के मुझे और कोई तरीका नहीं पता ना अपने स्ट्रेस को खत्म करने का अपने वो जो चिंता है मेरे मन पे उसको खत्म करने का. I don't have a way. So I need something जो मेरे मन और बुद्धि को उस सिचुएशन से which is on my mind उससे वो परे कर दे. So a 3-hour movie is a good thing. 3 घंटे वो बात मेरे मन पर नहीं आती.
1: हाँ.
0: और वो दूसरी चीज मुझ पर हावी कर जाती है. एंड देन वी से दिस इज एंटरटेनमेंट. हम इसको एंटरटेनमेंट कहते हैं. क्यों एंटरटेनमेंट. क्योंकि 3 घंटे
1: मैं कुछ नहीं क्रिएट कर रहा.
0: मुझे कोई टेंशन नहीं थी मुझे कोई स्ट्रेस. लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड दैट आफ्टर 3 आवर्स
1: अगेन दैट द होल थिंग विल कम बैक एंड देन उसके बाद मेरी अपनी क्रिएटिविटी और डल हो गई.
0: क्रिएटिविटी डल हो गई क्योंकि वो इमोशंस ने आपके ऊपर हावी हो गए. जैसे ड्रग्स के लिए हमें मालूम है कि ड्रग्स डैमेजिंग है वो हमें नंब कर देता है थोड़ी देर के लिए एकदम यू नो हमारी अपनी क्रिएटिविटी खत्म. सेम इज विद एनी ऑफ दीज थिंग्स. इट्स ओनली यू नो वी डोंट कम टू नो बिकॉज द लेवल इज प्रोबेबली नॉट दैट मच. तो कोई भी चीज हम अपनी परिस्थिति को भूलने के लिए जिस चीज की तरफ हम जाते हैं हम सोचते हैं इससे मुझे खुशी मिलेगी. एक्चुअली उससे खुशी नहीं मिल रही है वो सिर्फ थोड़ी देर मेरे माइंड और इंटेलेक्ट को ओवरपावर कर रहा है. अब होगा क्या बार बार करने से वो चीज धीरे धीरे मेरी आदत बनती जाएगी. एंड देन इट्स अ डिपेंडेंसी. वो मेरी क्रेविंग बन जाएगी कि उसके बिना आई एम नॉट एबल टू फील गुड.
1: आई स्टार्ट लुकिंग फॉर इट यू नो लाइक जैसे वो अस्थमा में जब अटैक पड़ता है तो आपको वो चाहिए होता है.
0: एब्सोल्युटली. लोग आज टेलीविजन सीरियल से अडिक्ट हो गए हैं. मतलब अगर एक दिन उनका वो सीरियल मिस हो गया या कुछ हो गया तो दे विल बी सो डिस्टर्ब. नाउ दिस इज एंटरटेनमेंट. हम एंटरटेनमेंट के लिए वो देख रहे हैं लेकिन आज हम उस पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि एक दिन नहीं देख पाए तो कहेंगे हमें अनइजी लग रहा है या मुझे तो देखना ही है. मैच आ रहा है. यू हैव टू सी हाउ पीपल बिकम. नाउ दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज हमने लगा कि ये चीजें हमें खुशी देती हैं. अब ये क्रेविंग बन गई आदत बन गई और स्टिम्युलेंट का धीरे धीरे क्या होता है थोड़े टाइम के बाद आपको वही लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन क्रिएट करने के लिए जो आज सपोज मैं 15 मिनट वीडियो गेम खेला तो मुझे एक हाई क्रिएट होता है ना वो अंदर. लेकिन वो 15 मिनट नहीं रहेगा लेवल.
1: वो फिर हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो मैं बहुत ज्यादा और देर तक
0: yes, तो फिर उसकी जैसे ड्रग की डोजेज एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आपको वो ड्रग उतने अमाउंट में असर नहीं करता. फिर आप ड्रग की डोजेज को बढ़ाते जाते हैं ताकि आपको वो सेम हाई फीलिंग आए. सेम विल बी एप्लीकेबल टू एनी स्टिम्युलेंट. किसी भी स्टिम्युलेंट के साथ आपको टाइम टू टाइम वो स्टिम्युलेंट की मात्रा पढ़ानी पड़ती है। आज आप 15 मिनट देख रहे हैं, कल आप 1 घंटा देखेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा 2 घंटे बीत जाएंगे, बिकॉज फिर आपको वो सेटिस्फेक्शन कम अमाउंट में नहीं मिलती है। सो द एडिक्शन जस्ट गोज ऑन बिल्डिंग अप। नाउ इट्स ओके एज फार एज द एडिक्शन इज देयर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये एडिक्शंस, ये हैबिट्स कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स पर इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हैबिट है, अब मुझे ये चाहिए। अगर मुझे नहीं मिला तो क्या होगा? अगर ये खत्म हो गया तो क्या होगा? अगर किसी ने मुझे ये नहीं दिया तो क्या होगा? तो समवेयर
1: इनसिक्योरिटी,
0: डिफरेंट थॉट पैटर्न्स, वो एक एडिक्शन को लेके मेरे डिफरेंट थॉट पैटर्न्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो वो स्टिम्युलेंट जो बाहर से आ रहा था, वॉज सपोज टू गिव मी अ गुड फीलिंग, वो सेंसेशन तो आ रही है, वो गुड फीलिंग सेंसेशन वाली तो क्रिएट कर रही है, लेकिन उसकी जो मेरी डिपेंडेंसी बन गई है, वो मेरे अंदर अब कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है। लेट्स से सिंपल थिंग लाइक मनी। मनी एक डिपेंडेंसी है कि मुझे धन चाहिए क्योंकि धन से खुशी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आई थॉट इट्स कमिंग लाइक दिस। अब फियर, मेरे पैसे को कुछ तो नहीं हो जाएगा, आगे ये बिजनेस करूंगा ये चलेगा? हाँ, तो नहीं चलेगा,
1: पैसा आएगा कि नहीं आएगा,
0: ये मेरे पैसे के रास्ते में रुके हुए हैं, इनकी वजह से मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स ऑफ एंगर, स्ट्रेस,
1: फ्रस्ट्रेशन,
0: ईगो, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ऑल बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कि कहीं मेरा ये स्टिम्युलेंट कम ना हो जाए, क्योंकि ये स्टिम्युलेंट मेरी खुशी है। तो अब क्या हुआ, वो स्टिम्युलेंट को पाने के लिए या उसको मेंटेन करके रखने के लिए मैंने इस प्रकार की थॉट्स क्रिएट करना शुरू किया। टेंशन, टेंशन किस बात की होती है? आज किसी को भी पूछो टेंशन किस बात की है? फियर, ये होगा या नहीं होगा, ठीक से होगा या नहीं होगा, ऑल रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू बिजनेस,
1: रिलेटेड टू रिलेशनशिप,
0: रिलेटेड टू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बहुत बड़ा एडिक्शन है,
1: बहुत एडिक्शन है, हाँ, वेरी ट्रू,
0: यस, रिलेशनशिप इज एन एडिक्शन, यस, अनलेस आई टॉक टू यू आई डू नॉट फील गुड, दिस इज एन एडिक्शन। ये स्टिम्युलेंट है ना, ये भी तो स्टिम्युलेंट है, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगेगा, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगेगा,
1: आपसे बात नहीं हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगा,
0: आज मेरा दिन अच्छा नहीं बीता,
1: मेरा सारा दिन खराब हो गया।
0: से अगेन डिपेंडेंसी, तो कहीं ना कहीं अगर मेरी आप पर डिपेंडेंसी हो जाए इन अ रिलेशनशिप, तो मेरी थॉट्स कैसे हो जाएंगे? कहीं मैंने आपको किसी और से ज्यादा बात करते हुए देख लिया, पोजेसिवनेस, कहीं आप मुझे मिले नहीं कुछ दिन, एंगर, सो मेनी थिंग्स।
1: बट वी आर ऑल एक्चुअली स्टक, हम किसी न किसी एडिक्शन में आज हम फंसे हुए हैं, और तभी तो फियर है।
0: तो तब वो सारी एडिक्शंस का मूल कारण क्या, मैं शरीर हूँ, आई एम द बॉडी, सो आई नीड दी स्टिम्युलेंस खुश रहने के लिए, मुझे इन चीजों की जरूरत है, ये चीजें ही खुशी देती हैं। Everyone just needs to prepare कि क्या क्या खुशी देता है, और आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, और वो सारी लिस्ट कहाँ है, यहाँ। तो somewhere इस लिस्ट के कारण जो मैंने ये negative thoughts create करने शुरू हुए, जैसे ये thoughts create हुए, इनका first impact किस पर पड़ा? मुझ पर, और फिर इस शरीर के ऊपर। अब मैंने एक एक thought, आज medical science भी हमें ये बताती है कि thoughts vibrations हैं, तो जो vibrations, जो thoughts हम create करते, पहले हमारे शरीर के एक एक अंग पर उसका असर पड़ता है। And that's why today the doctor says that the disease is psychosomatic. आपकी कोई भी बीमारी लेकर आप डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कहेंगे मेजोरिटी बीमारियां आज साइकोसोमैटिक है, साइकी से कनेक्टेड है, कि आपकी थिंकिंग की क्वालिटी राइट नहीं है, तो इस वजह से आपको ये बीमारी हो गई। तो था सारा किस चीज के लिए? For the health and the happiness of the body. लेकिन उस thought के साथ चले कि मैं शरीर हूँ, ये चाहिए ही, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? Fear create हुआ, और वो fear ने इस शरीर को बीमार कर दिया।
1: Oh my God! Like if we look at it, सारी जो मेरे stimulants थे, जो मुझे happiness supposedly दे रहे थे, कुछ कुछ देर के लिए ही, चाहे shopping दे रही थी, चाहे TV दे रहा था, चाहे chatting दे रही थी, उनके ना मिलने का fear ने मुझे बीमार करना शुरू कर दिया। एक्चुअली अगर हम
0: इट इज हैपनिंग दैट, उनके नाम मिलने का फियर, उनके नाम मिलने की टेंशन, किसी और को उनका जिम्मेदार पकड़ कर के इनकी वजह से नहीं मिल रहा गुस्सा, तो ये सारे जो हमने थॉट्स क्रिएट की, उन्होंने इस शरीर को बीमार कर दिया। अब जिस समय हमें ये समझ में आता कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, एक रियलाइजेशन, एक ट्रुथ पता चलने से पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है। एंड नाउ द फोकस बिकम्स आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई डू नॉट नीड इट फ्रॉम आउटसाइड। फीलिंग्स जो क्रिएट करनी है दे आर नॉट हियर, दीज आर सेंसेशंस। सेंसेशन और फीलिंग में अंतर होना चाहिए। टुडे टच इज अ वेरी बिग सेंसेशन एंड हम कहते हैं उससे आई फील वेरी गुड, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फीलिंग गुड इज नॉट हियर।
1: थेरेपीज,
0: यस,
1: we are
0: yes, it's okay. At see again at which level are we? Aap primary level par aap stimulant ko le rahe hain, lekin stimulant aapki thought process par kya effect kar raha, that to we'll have to understand. Sirf stimulant lete rahenge lekin idhar work nahi karenge to aap sirf addicted ho jayenge itni sari cheezon mein, and addiction can never be positive energy, kyunki addiction डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी हमेशा फियर क्रिएट करेगी। जिस दिन मैं किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, आई हैव स्टार्टेड माय फियर। एंड जैसे फियर स्टार्ट हुआ, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्टेड, इट विल अफेक्ट द बॉडी और वो कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेगी। तो इसलिए जिस समय समझ में आया कि मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, I am a soul, I am consciousness, I am a being. And most important, I am the creator of thoughts and feelings.
1: Actually, this is, you know, like I can create my own happiness.
0: Yeah, most important.
1: Again, yes, because ये सारी चीजें जो हैं, ये मुझे happiness के लिए ही मैं ढूंढ रहा हूँ।
0: And जब ये perspective ही shift हो जाता, कि happiness ढूंढनी नहीं है, शांति ढूंढनी नहीं है, मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, मैं हूँ ही आनंद स्वरूप आत्मा, तो पूरा फोकस क्या हुआ। अब क्या होगा, आपकी जो डिपेंडेंसी है या जो क्रेविंग है वो ऐसे नहीं कि एक दिन में चली जाएगी, क्योंकि इट्स अ हैबिट, यू नो, विच हैज बीन फॉर्म्ड मेनी मेनी इयर्स। लेकिन जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, हम अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग लाइक दिस। हैबिट जो बनी थी वो ऐसे बनी थी, हमारी क्रेविंग बाहर से आई, लेकिन बार बार करने के बाद वो हैबिट बन गई। अब हम इस थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे तो हैबिट अपने आप टूट जाएगी।
1: बट आई डोंट नीड दिस टू फील हैप्पी,
0: आई डोंट इवन नीड टू से दैट, अगेन इट्स अ नेगेटिव
1: थॉट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल मायसेल्फ
0: I am a happy soul already. And now repeatedly, again it's a repetition of thought in the consciousness, बार बार अब इसको habit बनाना है। जो thought हम बार बार create करते हैं वो हमारी आदत बन रही है, वो हमारा belief system बन रहा है। तो when I create this thought in meditation every day, and हर रोज उस consciousness के साथ हम जीवन की यात्रा में चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, याद रखेंगे I am a powerful soul, I don't need this person to feel good, to feel happy. I can give happiness, I can give goodness. तो जब मुझे ये awareness आ जाएगी तो मेरा thinking pattern में परिवर्तन आ जाएगा। See, परमात्मा आकर क्या करता है, he hits at the root. So he says, change your thinking pattern, everything else will automatically change. मुझे ये आदत छोड़नी है, ये आदत doesn't need to work like that.
1: See, I don't read novels anymore.
0: Yeah. But you didn't have to do it.
1: No,
0: see?
1: I was addicted to novels. Like, किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती थी, I used to pick up a novel and within an hour, एक घंटे के अंदर मैं वो किताब पढ़ लेती थी और वो प्रॉब्लम आगे चली जाती थी। But in like last one and a half years, my sister was asking me, मैंने एक भी नॉवल नहीं पढ़ा, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी।
0: लेकिन आपको कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं होगा कि एक्चुअली ये आदत छूट गई है। यू नो, वो आदत छोड़नी नहीं पड़ती है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो आदत कब छूट जाती है, क्योंकि डिपेंडेंसी छूट गई। डिपेंडेंसी क्यों छूट गई, क्योंकि यहाँ आत्मा ने राइट थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। पहले आत्मा क्या थॉट क्रिएट कर रही थी, ये करूंगी तो खुशी मिलेगी, तो करो, करते करते वो आदत बनी। अब आत्मा ने थॉट क्रिएट किया, मैं हूँ ही आनंद स्वरूप आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। Now when I start creating these thoughts, what are the vibrations? Positive, powerful. अब ये vibrations इस पूरे शरीर पे जाएंगे, और ये शरीर जो actually negative thinking से बीमार हो रहा था, अब ये right thinking से, powerful thinking से ठीक होता जाएगा। तो इसलिए एक जो रियलिटी है वो नहीं पता होने के कारण हम एक्चुअली बीमारी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि
1: मेजोरिटी में जो है वो जो एक जो नहीं था, जो गैप था वो फिल हो जाएगा,
0: वो फिल हो जाएगा और रियलिटी पता चल जाएगी. एंड देन वी आर एबल टू वर्क विद आवर बॉडी. क्योंकि ये नहीं है कि हम शरीर को इग्नोर करेंगे. हमारा शरीर ये हमारा रथ है, दिस इज आवर चैरियट, इट्स वेरी वैल्यूएबल. बट इसकी वेल बींग मेरे हाथ में है. जब तक मैं आत्मा राइट थॉट्स नहीं क्रिएट करती, आई विल नॉट बी एबल टू हैव अ हेल्दी बॉडी. So stimulants were taking me towards addiction, and addiction of any kind will create fear, and fear will create disease. The stimulants se hame aadat bani, craving bani, usse dar create hua, usse bimari aa gayi. Stimulants ki aadat khatam ho gayi kyunki atma ne right thought create kiya, right energy create ki, sharir dheere dheere healthy hone lag gaya. And that's when I'm able to use my physical resources in the right channel.
1: Very true. Thank you so much, Sister Shivani. आज जो पूरी हमने बातचीत की और जिन आदतों को या जिन स्टिमुलस को हम स्टिमुलेंट्स को हम ये मानने लगे थे कि वन दे आर द नीड ऑफ माई लाइफ, यू नो मैं उनके बिना नहीं जी सकता. दूसरा वही मुझे खुशी दे रही है. आई नीड देम टू फील हैप्पी. कहीं ना कहीं उस पूरे थॉट प्रोसेस, उस मकड़ जाल से हम बाहर निकल सकते हैं. यू नो समवेयर वो जो एडिक्शन का एक पूरा विशेष सर्कल है जो हमें खुद रियलाइज ही नहीं हो पाता. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है जो आज की इस बातचीत से जुड़ा हो, पूरी श्रृंखला से जुड़ा हो, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-666-555, 0999-799-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में बहुत सी बातें जो नई हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट करके देखें और जिन स्टिमुलेंट्स की आज हमने बात की है वो जरा देखने की कोशिश तो करें, अवेयर तो हो कि हम किन किन बातों को स्टिमुलेंट्स मान रहे हैं और फिर उन पर काम करें. तो आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें.

पुणे की आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
3: करायचं।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
2: मनात पीठ वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकत। त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
6: पहला नशा पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
7: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
8: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। खुद को पहचानने की इस जद्दोजहद में कई मुकाम हमने तय किए हैं। एक बात जो सामने आई है वो ये कि जिस तरह की जिंदगी आज के इस भागते दौड़ते युग में हम जी रहे हैं, उसमें कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां हमने खुद ही जनरेट कर ली हैं। सॉल्यूशंस भी हमें खुद ही तलाशने पड़ेंगे। ऐसे में एक बीमारी जिससे हम में से हर एक को दो चार होना पड़ता है कभी ना कभी, वो है डिप्रेशन। क्या है एग्जैक्टली डिप्रेशन, ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं और ये भी जान गए हैं कि डिप्रेशन को दूर करना हमारे अपने ही बस में भी है, लेकिन कई बार हमें प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है। किस तरह के डिप्रेशन आ सकते हैं हमारी जिंदगी में और कौन सा वो वक्त होता है, कौन सा वो मुकाम होता है जब हमें एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम। और नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
9: ओम शांति।
8: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आज पहले आपसे शुरू करते हैं कि डिप्रेशन के हर एस्पेक्ट को हमने जाना है अच्छी तरह से कि डिप्रेशन क्या है, जिंदगी के किस फेज में हमें समझ में आ जाता है कि डिप्रेशन है। यहाँ पे जब थोड़ी थोड़ी देर खुशी, थोड़ी थोड़ी देर गम होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। जो जर्नी हम इंटरनल जर्नी की बात करते आ रहे हैं पूरी इस श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें एक एस्पेक्ट तो ये आता है कि खुद के बारे में अवेयर होके हम ये जान लें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो हमें परेशान करते हैं और हमें उनसे दूर होना है। जो डिप्रेशन है, जो कभी कभी गम तक हम पहुंचते हैं, कुछ देर का गम हमें आता है, उसमें क्या ऐसी बातें खुद से करनी है हमें, जो खुद स्व काउंसलिंग की बात करते हैं, अपने आप से बात करने की बात, सेल्फ काउंसलिंग की बात करते हैं, कि हम उस वो चार घंटे के वक्फे को निकाल पाएं और वो जो चार घंटे खुशी के आएंगे वो ज्यादा बेहतर हो।
9: सेल्फ काउंसलिंग अर्थात अपनी, जब हम पहचान लेते हैं कि कौन सी बात है जो उस चीज को ट्रिगर कर रही है, तो हम उसका सोल्यूशन, जैसे दूसरों को सोल्यूशन देते हैं वैसे खुद को सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनको पहचानना, मेरे अंदर कौन सी शक्तियां हैं उनको पहचानना. ज्यादातर क्या होता है, हम सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं परिस्थिति को सामना करने की शक्ति नहीं है. या किसी ने कुछ कह दिया या मेरे जीवन में कोई घटना घटी, मुझे मेरे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर एक राइट डिसीशन लेने की पावर नहीं है. तो ये जो सारी पावर्स हैं, ये हम फील करते हैं कि हमारे अंदर नहीं है और वो खालीपन आना शुरू कर देते हैं. राजयोग जब हम करना शुरू करते हैं तो ये पावर्स एक नेचुरल रूप में इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी पावर्स हमारे अंदर हैं. You know, they don't have to be brought from anywhere outside. सहन शक्ति है, सिर्फ कभी कभी वो हम उसको यूज नहीं करते हैं. तो उसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे उसको यूज करते जाएंगे वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कोई भी परिस्थिति और कोई भी व्यक्ति मेरी मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता.
8: लेकिन वही आपने कहा कि सेल्फ काउंसलिंग जो
9: हाँ, तो जैसे अगर सपोज आपसे मेरी कोई बात हुई और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, अब मेरी वो गम वाले फेज में मैं चली गई क्योंकि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरी, जो हमने कहा कि जो मेरी अपनी बनाई हुई इमेज है उसको हर्ट हुआ. देखो हर्ट हम कब होते हैं, मैंने अपने बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बनाई है, आपने कुछ ऐसे कह दिया जो वो इमेज मेरी बनाई हुई इमेज के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए आपके बोल मुझे तकलीफ देना शुरू कर देते हैं. तो इसमें अब सेल्फ काउंसलिंग यही होगी कि सबसे पहले तो मेरी मन की स्थिति का मास्टर मैं खुद हूँ. अगर मैंने अपनी कोई इमेज बनाई है तो अच्छी इमेज अगर बनाई है तो सबसे बड़ी पावर तो यह है कि नोबडी कैन कंट्रोल में. दूसरा, अपने आप से ये बात करना शुरू करें कि असलियत क्या है, जो मैंने सोचा या जो आप कह रहे हैं, यू नो. एंड सेकेंड, ट्राई एंड टॉक टू माई सेल्फ के ओके, दिस इज वॉट यू फील, मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर नॉट, ईदर वेज लेट मी चेक माई सेल्फ. अगर आप सही हैं तो मैं अपने आप को उस अनुसार चेंज कर लूं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने जो कहा है
8: उसका कोई मायने नहीं
9: है.
8: और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही भी हैं तो आप अपने आप को, मैं अपने आप को मार नहीं दूंगा कि मैं चेंज कर सकता
9: हूं. बिल्कुल, तो बहुत इजी है. लेकिन अगर हम, हमारे को प्रॉब्लम उस बात से नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम ये ज्यादा होती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा,
8: मेरी इमेज जो मैंने बनाई हुई थी
9: उससे वो, तो वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ जाता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा, और वो चीज हम बार बार अपने आप को फिर कहते रहते हैं. तो ये फिर हम उस टाइम परेशानी के पीरियड में गुजर रहे हैं, तो उस टाइम कोई और मदद नहीं कर सकेगा. आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ, उनकी जो राय थी वो उन्होंने कही, अब मुझे उसको अपने इमेज के साथ
8: चेक करना चाहती हूँ आपसे कि जब हम इस एस्पेक्ट पे हैं कि जब मैं उस डिप्रेशन के फेस में जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए भी, क्या ये सेल्फ काउंसलिंग
9: Does it really help?
8: क्या हम बात कर सकते हैं, उस फेज में होते हैं कि हम बात कर पाए?
9: हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे ही पता है कि मुझे कौन सी बात दर्द कर रही है.
3: शिवानी बेन ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, अदरवाइज सेड, सभी को याद रखनी चाहिए बात. कहते हैं nobody can make you depressed without your permission.
8: We gave him the permission. We gave him or her the permission.
3: So don't give permission to anybody.
8: बिल्कुल.
9: So if I have the power, why do I give that power away to somebody else?
3: तो उन्होंने बात की ना सारे पावर्स की, उसमें सबसे बड़ा है पावर ऑफ साइलेंस. यू शुड लर्न टू गो इन साइलेंस. साइलेंस में गए तो ऑटोमेटिक परखने की शक्ति आएगी,
8: खुद से बात करने का वक्त,
3: सहन करने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी.
8: तो अब डॉक्टर साहब, हम उस बात पर आते हैं कि ये तो बात है कि जब मैं उस फेज में आ गया कि मैं उतनी देर के लिए तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ, खुद से काउंसलिंग, खुद से बातचीत करके कहीं ना कहीं उस एहसास को मैं हटा सकता हूँ. अब बात करते हैं जो इससे परे जा चुके हैं, यू नो, हम थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं कि डिप्रेशन जो है वो सीप इन कर गया है. आपने पिछली बार हमने बताया था कई तरह के होते हैं डिप्रेशन. आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि क्या, कौन कौन सी वो तरीके, कौन कौन से वो डिप्रेशन कहे जाते हैं जिनके कारण शायद अलग अलग होते होंगे और उनके सिम्टम्स शायद अलग अलग होते हों. तो किस तरह के डिप्रेशन?
3: कई प्रकार से डिप्रेशन को डिवाइड करते हैं. एक तो जिसको कहा गया रिएक्टिव डिप्रेशन, मतलब कोई ना कोई परिस्थिति आती है उसके रिएक्शन में आप डिप्रेस्ड होते हैं कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया तो डिप्रेस्ड हुए, किसका देहांत हो गया तो आप
8: डेथ इज अ मेजर थिंग.
3: फिर दूसरा एक है जिसको कहा एंडोजेनस डिप्रेशन. एंडोजेनस डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा ही डीप होता है, जो केमिकल्स के कारण है कि कोई बाह्य परिस्थिति ऐसी नहीं परंतु फिर भी अचानक व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है, दैट इज एंडोजेनस डिप्रेशन. और एक है प्रकार जिसको कहा साइकोटिक डिप्रेशन, विच इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, इसमें व्यक्ति पागल जैसी हरकतें भी कर सकता है, वो डिप्रेस्ड है लेकिन साथ साथ में साइकोसिस भी है उसे।
8: अच्छा, तो सारे जो डिप्रेशन हैं वो साइकेट्रिक नहीं होते हैं?
3: नहीं, साइकेट्रिक होंगे लेकिन साइकोसिस जिसको कहा, जैसे साइकेट्री में दो प्रकार की बीमारियां, एक तो न्यूरोसिस और दूसरी है साइकोसिस।
8: ओके,
3: न्यूरोसिस ऐसी बीमारियां जो माइल्ड फॉर्म ऑफ बीमारी भी कहेंगे, व्यक्ति खुद रियलाइज करता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइकोसिस ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पेशेंट स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है,
8: एहसास ही नहीं होता।
3: हाँ, वो तो कहेगा आप सब पागल है, तुम ट्रीटमेंट कराओ। इवन डॉक्टर के पास भी जाके पूछेंगे ना क्या तकलीफ है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, इनको प्रॉब्लम है ना, उनका इलाज करो आप। तो जो जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन है साइकोटिक डिप्रेशन,
8: जो कि वायलेंट भी हो सकता है, हमने पिछली बार बात की थी, या फिर सुसाइडिकल भी जा सकते हैं।
3: सुसाइडल तो रिएक्टिव डिप्रेशन में भी पॉसिबल है, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में पागल जैसी हरकतें करेगा।
8: इन तीन को आप हमने डिफाइन किया, आपने बताया हमें कि किस तरह के जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो डिप्रेशन है। एक मैं यहाँ से बात आपसे, एक्चुअली हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सिस्टर शिवानी, आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि आज जब भी हम किसी मानसिक परेशानी की बात करते हैं, मानसिक बीमारी की बात करते हैं, इनफैक्ट आजकल तो इतनी ज्यादा उसके ऊपर बातचीत की जाती है, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, पहली चीज हर बीमारी का नाम डिप्रेशन दे दिया जाता है। व्हाई, आई एम से लाइक, क्या हर जो मानसिक परेशानी है वो डिप्रेशन से उपजी है?
3: बिल्कुल नहीं, कॉमनेस्ट है इसके लिए डिप्रेशन का, बिकॉज डिप्रेशन इज सो कॉमन, और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि फोबिया आज बहुत बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चीजों का लोगों को डर लगता है, पानी का डर लगता है, घर से बाहर जाने का डर लगता है, फोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे और एक बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सन, कि एक चीज व्यक्ति बार बार करता है, कि मैंने 100 बार हाथ धुलाई करेगा,
8: अपना वो देखेंगे कि ताला लगाया, हाँ, कि हाँ, बार बार देखते हैं वो।
3: कई बार कुछ रिचुअल्स भी होते, डॉक्टर मेरे पास आए थे, चौराहे पे और ऐसे स्पेसिफिक उसकी विधि, तो चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक उसको सेटिस्फेक्शन है, वो आगे बढ़ेंगे नहीं। कहते क्लिनिक में जाने को मुझे 3 घंटे लग जाते, एक बार ये ऑब्सेशन बुद्धि में आ गया फिर मैं आगे बढ़ता ही नहीं। ऐसी एंग्जाइटी एक बहुत बड़ी और बीमारी है, जो डिप्रेशन से बिल्कुल भिन्न है, उसके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और जो है वो है साइकोटिक बीमारियां, कि जिसमें सिज़ोफ्रेनिया हो गया, ऐसे और एक है मैनिक डिप्रेशन।
8: तो ये इट मीन्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिप्रेशन,
3: दे आर नॉट पार्ट ऑफ
8: डिप्रेशन, कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर होल ट्रीटमेंट या पूरा प्रोसेस, बट दे आर नॉट डिप्रेशन।
3: या तो ऐसा कहेंगे कि भी और बीमारियों के साथ साथ भी डिप्रेशन हो सकता है, परंतु ये सब डिफरेंट एंटिटीज है कि जिनका हम इलाज, जैसे मैनिक डिप्रेशन कहा, वो अलग प्रकार की बीमारी है, जहाँ कुछ समय तो व्यक्ति एक्साइटमेंट में जाता है, 1 दिन 5 दिन 1 मास, और फिर कुछ समय वो डिप्रेशन में जाएगा, या साइकिल उसका चलता रहेगा। उस समय बहुत खर्चा करेगा, बहुत बातें करेगा, गुस्सा भी कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, फिर कभी ना कभी उसे डिप्रेशन भी आता है, थोड़ा समय वो उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, तब ठीक से इलाज हो सकता है।
8: तो यहाँ तो अभी हम 3 तरह के जो डिप्रेशन की आपने बात की, रिएक्टिव डिप्रेशन और आपने
3: एंडोजेनस
8: डिप्रेशन,
3: साइकोटिक डिप्रेशन।
8: एंडोजेनस डिप्रेशन में क्या था, रिएक्टिव तो ये था कि किसी रिएक्शन कर रहे हैं।
3: एंडोजेनस डिप्रेशन में केमिकल का इंबैलेंस है, जीन्स के कारण हो सकता है, और भी कोई कारण पॉसिबल है कि बाहरी कोई परिस्थिति नहीं। व्यक्ति भी कहता है कि मुझे कोई ऐसे विचार भी नहीं आए, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मैं डिप्रेस्ड हो गया।

0: साइकोटिक डिप्रेशन में नहीं होगा इवन मैं तो ये कहता हूँ साइकोटिक डिप्रेशन में मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए, भले उनको हेल्प होती है, ऐसी भी रिसर्च स्टडीज हुई है कि साइकोटिक डिप्रेशन में भी मेडिटेशन मदद करता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं सिखाइए। क्यों? क्योंकि समझो कि आप कोई ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे गए, आपको साइकोटिक डिप्रेशन है, तो बहनों को तो पता नहीं है पूरा क्या है, इसलिए वो तो मेडिटेशन ही सिखाएंगे, कभी ये बढ़ भी सकता है। इसमें यह भी होता है कि वो जो डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस है वह जो व्यक्ति सिखा रहा है उसके प्रति हो जाए, कि नहीं यही मुझे परेशान कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी वाले मेरे पीछे लगे हैं। ऐसे भी लोग तो सच मान लेते हैं कि भी सचमुच ऐसा हुआ होगा, बट लेकिन उसका वह डिल्यूजन है। ये भी हो सकता है कि मैं कृष्णा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो इसके कारण ये जो इस प्रकार का साइकोटिक डिप्रेशन, उसमें मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने बात की थी जो मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, यू नो, जो लक्षण दिखने लगते हैं, तो कुछ फिजिकल लक्षण भी होते हैं जब डिप्रेशन हो रहा होता है?
0: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और ये जानना चाहिए सच मुझ, ये तकलीफ भी हो रही है क्योंकि फैमिली फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग है उसमें भी 30-40% को डिप्रेशन है। इवन एमडी फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं, कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन एक्चुअली उन्हें डिप्रेशन है। स्टडी भी हुई है, प्रॉपर कहीं टेस्ट आती है साइकोलॉजी में, जैसे रोशाक टेस्ट है, 16PF की, ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसके द्वारा हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होती है ऐसे ही ये साइकोलॉजिकल टूल्स है। वह जो फिजिशियन के पास जा रहे थे लोग, उन लोगों को ये साइकोलॉजिकल टूल्स दिए गए और पता चला कि बड़ी संख्या में 25-30% पेशेंट्स हु आर विजिटिंग अ एमडी फिजिशियन आर एक्चुअली डिप्रेस्ड।
1: ओहो, तो मतलब ये फिजिकल एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं आप, दे कैन बी ड्यू टू डिप्रेशन,
0: दे आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। नहीं, वो डिप्रेशन का एक पार्ट है। उन्हें वो फिजिकल सिम्टम्स भी हो रहे, भी पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कोई तकलीफ है, लेकिन साथ साथ में डिप्रेशन भी है।
1: तो अगर
0: जो फिजिशियन को समझ में नहीं आता है,
1: डिप्रेशन दूर कर पाएंगे तो क्या वो सिम्टम्स
0: भी ठीक हो जाए? हाँ, अगर डिप्रेशन आपने दूर कर दिया तो वह जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, या तो उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी रिलीफ कर देंगे।
1: तो फिर सबसे पहली चीज यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन की डिप्रेशन है।
2: नहीं, बीच में आपको याद हो कि आया था कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों को
1: पेट में दर्द
2: होने लगा है और उसमें अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारे डायग्नोस भी कराए, लेकिन कुछ फिजिकल एलिमेंट ही नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी वो दर्द नहीं ठीक हो रहा, तो देन इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। लेकिन हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पर इतना ध्यान देते हैं ना, एक्सटर्नल, तो इंटरनल एस्पेक्ट पर न ध्यान देने के कारण उसको जड़ से उस प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पाते।
0: फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज आर इंटरलिंक्ड, जैसे ना हाइपोथायरॉयडिज्म एक तकलीफ है जिसमें थायराइड का लेवल कम है, इट कैन बी लिंक्ड विद डिप्रेशन, इधर वे इज पॉसिबल।
1: डिप्रेशन कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म,
0: हाइपोथायरॉयडिज्म आल्सो कैन कॉज डिप्रेसिव सिम्टम्स
1: बिकॉज इट विल बी सेकंड वन, जो केमिकल चेंज हो रहा है।
0: केमिकल, इवन हाइपोथायरॉयड के सिम्टम्स भी ऐसे ही है, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ कम करने का नहीं होगा मन, इवन रिफ्लेक्सेस आर वेरी स्लो, तो वो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हो सकती।
1: और आपने कहा कि जो पहले दो तरह के, जैसे रिएक्टिव डिप्रेशन और जो दूसरी डिप्रेशन की आपने बात की जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम सेल्फ काउंसलिंग से दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एम, जब हम उसकी तरफ पहुंचते हैं, जब भी इस कार्यक्रम में भी बात कर रहे हैं, कि मकसद हमारा यही है कि हम सोल्यूशंस जरूर तलाशें। और सोल्यूशंस अगर हम खुद की पहचान के दौरान ही तलाश लें, जो सफर पे हम हैं, तो क्या है वो सोल्यूशंस,
0: जो सेल्फ काउंसिलिंग के सॉल्यूशन। अच्छा, एक तो कि सेल्फ काउंसिलिंग से, या तो कहेंगे कि मेडिटेशन से, आप अपने आप को सही रूप से पहचान पाते, अपने सिम्टम्स को जो है, तो अधिकतर व्यक्ति अपने सिम्टम्स को ही पहचान नहीं पाता है। और अगर आप अपने सिम्टम्स को ठीक से पहचानने लगे तो थोड़ा भी डिप्रेशन शुरू होगा पता चल जाएगा, और फिर उसके लिए कोई कदम उठाना भी संभव है। आमतौर पर जब काफी डिप्रेशन बढ़ जाए तभी व्यक्ति को पता चलता है।
1: कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में रह पाना, सिस्टर शिवानी, कि कुछ देर के लिए तो मैं खुद से बातचीत करके अपने आप को उस स्टेट से बाहर ला सकती हूँ, लेकिन कई बार फिर ये लगने लग जाता है कि क्या मैं झूठ तो, मतलब मैं क्या जिंदगी जी रही हूँ। ये बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल अब मन में आता है, जब when we've been talking about कि अपने आप से बात की जाए, सेल्फ काउंसलिंग की बात की जाए, कई बार क्योंकि सब चीजें बेमानी लग रही होती है तो खुद से बात करना भी बेमानी लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या चीज है। लेकिन कितनी देर तक वो उस स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि

0: हर लम्हा हर क्षण उस स्टेट में रह पाना, जैसे हमने पहले बात की थी, दैट इज द यू नो द बेस्ट. लेकिन वो नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा, अभी अभी कंडीशनिंग हो सकती है, लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं अभी आज के इस वक्त में नहीं है. तो कैसे हम अपने आप को हर पल समझा सकते हैं?
1: हर पल समझाना नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ये सिर्फ एक शुरू में थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है. जैसे आज नेगेटिव सोचना या परेशान रहना ये बहुत नेचुरल हो गया है, उसी तरह खुश रहना बहुत नेचुरल होगा. इट्स नॉट दैट लाइफ लॉन्ग आप ये करते रहेंगे कि बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा. कुछ एक दिन के लिए या कुछ एक मास के लिए कहें, ये एक जर्नी पे आप चलते हैं, जहां परिस्थिति आती है आप परेशान होते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को उससे निकालते हैं. 2, 4, 8, 10 बार आप जब इस तरह से करते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी. आप अपसेट होंगे, तुरंत आप कहेंगे नो इट्स इन माई कंट्रोल, चलो 5 मिनट्स एंड बैक. सो द टाइम ड्यूरेशन की हम कितनी देर वो डाउन,
0: 4 घंटे के बजाय
1: इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. पहले वो 4 घंटे था, अब वो थोड़ा और कम होता जाएगा, एंड धीरे धीरे वील रीच अ स्टेज, कुछ बात आई, आप अपसेट हुए, क्विक आप वापस आ जाएंगे, एंड धीरे धीरे स्टेज आएगी कि आप अपसेट नहीं होंगे.
2: राजयोग में जो मेरा अपना अनुभव है कि इसमें स्पेशल बहुत बैठने की आवश्यकता नहीं है. कई बार और जो टेक्निक्स होती है जिसमें आपको स्पेशली बैठना पड़ता है, 20 मिनट ध्यान किया फिर शांत लगने लगा, राजयोग की विधि ऐसी है कि आप चलते फिरते भी कर सकते. जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परंतु भी मैंने ऐसे इंटरव्यू तो ढेर सारे दिए, नॉलेज इज देयर, मुझे भी सोचने की आवश्यकता नहीं है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. तो जब आपसे बात कर रहा हूँ तभी मैं ये अवेयरनेस ला सकता हूँ कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम पीसफुल और मैं आपको अपने विचार बता रहा हूँ. तो देन इवन व्हाइल टॉकिंग आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेज. मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं आप मेडिटेटिव स्टेज में हो सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं वो स्टेज आपकी बन सकती है. तो शिवानी बेन ने बिल्कुल राइट कहा कि वो जो रूट जब स्टार्ट हो रहा है देयर इटसेल्फ यू कैन कट इट ऑफ.
0: तो ये हमने पहले भी बात ये की थी कि ये जो पूरा अवेयरनेस है ये हम आज इतनी देर बाद आकर हम जानने की कोशिश करते हैं. द जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम एट अ वेरी यंग स्टेज यू नो, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्वेश्चनिंग यू नो, नॉट रियलाइजिंग. अगर वो 5वीं का बच्चा या 6ठी का बच्चा भी काउंसलर के पास जा रहा है, अगर ये अवेयरनेस उसके पास ही आ जाए वहां से, तो ये कितना जरूरी है, कहाँ कैसे किया जा सकता है?
1: जितना आजकल जैसे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, लेकिन काउंसलर्स भी यही ध्यान रखें कि वो उस इंडिविजुअल को, उस बच्चे को इनर पर लेकर जाएं, यू नो, वो भी कहीं सोल्यूशन आउटर ही ना देना शुरू कर दे कि ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं आप इस तरह से बिहेव करो. नॉर्मली हम जो चेंज लाने की कोशिश करते हैं वो बिहेवियरल लेवल पर बहुत ज्यादा होता है. आप इस तरह नहीं, आप अपने व्यवहार को परिवर्तन करो, सोच को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहेवियरल चेंज बहुत टेम्पररी होता है. फिर कोई और थोड़ी बड़ी परिस्थिति आ गई, अगेन द बिहेवियर विल चेंज. तो बिहेवियर विल कीप चेंजिंग, वो फ्लक्चुएशन से गुजरता ही जाएगा, लेकिन अगर एक परमानेंट बिहेवियर में चेंज लाना है तो द सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी द थॉट लेवल चेंज, जिससे एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा. फिर कोई भी बात आपको उस तरह के बिहेवियर पर लेकर नहीं जाएगी. सो द काउंसलर हैज टू टेक केयर कि यू आर चेंजिंग द एंटायर वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, नॉट जस्ट द बिहेवियर.
0: एंड दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट एक्चुअली.
2: आई थिंक स्टिल लाइक जब ये तो कहते हैं पांचवी, मैं तो समझता हूँ पेरेंट्स आर बेस्ट काउंसिलर्स. और बच्चा 2 साल का है ना तब ही स्टार्ट हो, इट्स नॉट एक्चुअल काउंसिलिंग. कहा गया बच्चों को देखा है कि भी बच्चे है ना टीचिंग से नहीं सीखते, दे डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू. एक बार मैं भी अपनी एनालिसिस कर रहा था कि ऐसे स्पिरिचुअल कैसे बने, नो व्हाट हैपेंड इन लाइफ, लाइक माय पेरेंट्स वर नॉट सो स्पिरिचुअल, फिर भी ये कैसे बात आई. तो जब सोचते तो मुझे पता चला कि जब हम छोटे थे तो मेरे नाना, हम गांव जाते थे, गुजरात में एक छोटा सा गांव है, वैकेशन में 2-2.5 मास जाते थे, और मेरे जो नाना थे वो 2-3 घंटे तक कुछ पूजा पाठ अपना करते थे, हम लोग भी साथ में बैठ करके एवरीथिंग वी यूज टू डू. And I thought that must be the seed.
0: Somewhere deep within
2: वो seed था सचमुच की जो आगे चल कर के वो सचमुच full blown phase में आया. तो parents को भी यही करना है.
0: बिल्कुल
2: गलती ये करते हैं, हमारे पास भी कहते हैं कि बच्चों को ले जाओ सेंटर पे, हमको नहीं आना है. And unless you do, children will never
0: will
2: practice
0: not do.
2: That.
0: Yeah.
1: And it won't have its effect,
2: effect
1: also.
2: As well.
1: Because then you are creating a wrong thought pattern. So agar aap bachcho ko right thought pattern create, you know, sikha bhi rahe hain, unless aap khud practice kar rahe hain, वो जो संस्कार है वो चेंज नहीं होंगे.
0: वो बच्चा तो फिर अपनी सही बात बोले लग जाएगा.
1: एक्चुअली बहुत ज्यादा बच्चे का थॉट पैटर्न हम ही बनाते हैं. यू नो, इवन ये कहना वहां मत जाना, वहां भूत है, ये फियर क्रिएट करना, ये हमने ही तो क्रिएट किया. बच्चा चल रहा है, इतना छोटा सा, उसको टेबल लग गई. अब बच्चे को समझाने की बजाय कि आपकी गलती थी, हम टेबल को मार देते हैं. दिस इज ब्लेम कल्चर. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर टॉट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज द टेबल्स फॉल्ट. तो वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लेकिन ये सारे थॉट पैटर्न्स हम छोटे से उनके अंदर डाल रहे हैं. इंस्टेड यू नो राइट सोर्स, क्योंकि ईजी वे आउट, बजाय कोई समझाना कि बाहर अंधेरा है या क्या, नहीं बाहर भूत है, बाहर मत जाना. तो ईजी वे आउट विल नॉट वर्क.
0: भूत आ जाएगा, यू नो सो जाओ, और इस तरह से सुलाने के लिए
1: तो ये
0: दूध पी लो, ये इस तरह से, यस डेफिनेटली.
1: ये सारी छोटी छोटी चीजें जो लॉन्ग टर्म में हमारे थॉट पैटर्न को फिर डिटर्मिन कर देंगे.
0: और कहीं ना कहीं जब फिर वो जो अचीवमेंट की बात है, एक अगेन अनदर टाइप ऑफ डिप्रेशन. एक्चुअली अभी तो हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी. अचीवर्स, जो अचीव करने की एक लालसा कि मुझे वहीं पहुंचना है और नहीं पहुंच पाते, वो जो डिप्रेशन है, चाहे वो पीयर प्रेशर से है, जो सुसाइड्स इतनी ज्यादा रिजल्ट्स को लेके होती हैं कि मेरे में कैपेसिटी है या नहीं, मुझ में क्षमता है या नहीं, लेकिन अचीव वो करना है, वो जो मेजर डिप्रेशन जिसे आज का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा रूबरू हो रहा है. अगली बार हम पूरे, हमारे पास बहुत से ईमेल्स भी आए हैं सिस्टर शिवानी, उन पे बात करेंगे. और ये कि वो अचीव अगर नहीं कर पाए तो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है. डॉक्टर गिरीश पटेल, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए, थैंक यू सो मच. एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत में जो बात सामने आई वो ये कि डिप्रेशन के कई फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं. तो जरूरत ये है कि ना सिर्फ हमारे मन में क्या चल रहा है, बल्कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारे फिजिकल सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, क्या हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए. और वहीं एक पॉज लेकर, एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से बात करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तुझे क्या चाहिए जिंदगी. ये हर बार हम कहते हैं, तो उस जिंदगी को तलाशना है, अपने अंदर की इस जर्नी, इस सफर को तय करना है, और ये जानना है कि किस तरह से एक बेहतर, ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहरी जिंदगी को भी हम जी पाएंगे. आपके पास भी जरूर कोई ना कोई सवाल होगा, तो आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com.
3: नमस्कार, मी मोनाली सावगत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत।
3: रेडियो मधुबन में आप सब जुड़े हुए हैं आरजे शांतनु के साथ। नमस्कार साथियों, मैं आज फिर से आपके सामने आया हूँ यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक नई हस्ती के साथ। एक ऐसी हस्ती जो भारत को न केवल अपने में समाये हुए है, लेकिन भारत में जिनकी आवाज बिखरी हुई है। एक ऐसी बेटी भारत की जिसने न केवल अपना नाम भारत के साथ अमर किया, लेकिन भारत की कई कई कई बेटियों को आवाज दी है। जब मैं इनका नाम कहूंगा साथियों, आप कहेंगे अरे इनके बारे में तो हमें पता है, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब ये व्यक्ति गुमनाम थे और ये अपने काम में बहुत मशगूल थे। दूसरों को सामने लाना मीडिया पे, ये इनका काम था। आज मीडिया इनके काम को परिचय देती है, आज मीडिया इनको पहचानती है। हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज मिलने जा रहे हैं साथियों, जिन्होंने न केवल समाज के बच्चों को बल्कि बुजुर्गों को भी कई ऐसी गहन बातों से रूबरू कराया है, जो केवल हम न केवल भूल गए थे लेकिन उनको भूलने की वजह से अपनी दिशा को भूल चुके थे, दशा को भी भूल चुके थे। आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेसमी वर्कशॉप के मैनेजिंग डायरेक्टर, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सोनाली खान जी। सोनाली खान जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी।
4: शांतनु भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरह से मेरी परिचय दी। मुझे ये सुन के कैसा लग रहा है कि मतलब ऐसे मैं भी हूँ। मतलब काम में हम इतने मशगूल रहते हैं अपने बारे में, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं, तो ये सुन के अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा हम्बल भी लग रहा है
3: जी। आई थिंक नम्रता जो है वो गुण है गुणियों का, और आप जैसे गुणी व्यक्ति को जब भी हम मिलते हैं, हमने देखा है कि नम्रता एक ऐसा गहना है जो आप हमेशा पहने रहते हैं, और ये बहुत सीखने की बात है साथियों। आज के चर्चा में भी हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो है अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से न केवल आगे बढ़ सकता है लेकिन कईयों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। सोनाली जी, आपकी जर्नी कुछ ऐसी ही रही। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जब मोस्ट हेल्पिंग किड का सर्टिफिकेट मिला स्कूल में, तो मैं बस सोचती रही इसका क्या फायदा है। तो आज आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
4: हाँ, जैसे शांतनु भाई आपने छोटे में सबको कुछ और लाइक रेस में पहला मिल रहा है या ग्रेड पहला, यू नो, क्लास में कोई फर्स्ट प्राइज मिला है कोई सब्जेक्ट में, तो मतलब सब उसको वाह वाह देते हैं, और ये मुझे हेल्पफुल चाइल्ड का मिला था, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया और मुझे इतना कुछ ये खास भी नहीं लगा कि क्या है। तो मैं आज जब उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो एक मेरे लिए एक पथ प्रदर्शक ही था कि ऐसा ही, मतलब मैंने जर्नलिज्म का काम किया, मैंने बहुत कुछ किया, पर जब मैं ऐसे अपने ऐसे एक जीवन के एक ऐसे मोड़ पे पहुंची जहाँ मैं एक संस्था में काम करना, मैं महिलाओं के लिए काम करना मैंने शुरू किया, तो मैंने ये सोच के अच्छा अच्छा ठीक है मैं करती हूँ इसको, अगर ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, है ना, कोशिश तो कर रही हूँ मैं। पर जब मैंने जब वो काम शुरू किया तो मुझे उसमें इतना जोश मिला, मुझे इतना उसमें एक दिशा मिली, जो मैं अभी सोचती हूँ कि शायद वो जो पहला पुरस्कार था वही एक मेरे लिए एक पथ प्रदर्शक था जो मैंने शायद पहचाना नहीं, और अब जाके मैं ये काम में जुड़ी हूँ। पर एक तरह से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो जिंदगी के जितने जो मैं कहती हूँ एक तरह से जो हम जिस तरह से झेलते हैं उसको, खुशियां भी गम भी, वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं आज वहां तक पहुंचूं, जिससे मैं ये काम को मैं एक अपने इस तरह से करूं जिसमें मेरा जो एक जो जीवन का जो एक्सपीरियंस है या जो जीवन में मैंने सीखा है, जो दुख सुख सब मिला है मुझे, वो ही लेके मैं आगे बढ़ पाऊं। तो वो मुझे करना जरूरी था और फिर ही मैं इस मोड़ पे आई जहाँ पे मैं ये काम अब कर पाती।
3: सोनाली जी, बचपन में ऐसा क्या किया था आपने कि आपके शिक्षकों ने पहचाना कि इस बच्चे को हमें मोस्ट हेल्पिंग चाइल्ड का खिताब देना चाहिए?
4: मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी। शायद मैंने बच्चों को क्लासरूम में मदद किया या कोई गिर गया था उसको उठाया या किसी को मैंने मतलब कोई कहीं जाना था उसको ले गई, मतलब छोटी छोटी चीजें थी। ये हेल्पफुल चाइल्ड का अवार्ड कोई एक खास चीज के लिए नहीं मिलता, जैसे कोई ब्रेवरी अवार्ड है, जैसे हमारे देश में कोई एक बड़ा काम किया है उसी के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये रोज की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसमें शायद इन्होंने मुझे ये पहचाना कि एक कोई बड़ा काम नहीं था ये, मतलब ऐसा अवार्ड होता है जो शायद पूरा साल वो बच्चे को देखते हैं कि बच्चा कैसा क्या कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे मिला था। तो ये कोई एक बड़ी चीज नहीं थी, छोटी छोटी चीजें थी शायद, अब मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है।
3: एक्चुअली मुझे आपके इस बात से ये समझ में आता है और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों को भी ये चीज समझ में आ रहा है कि आप पे हमेशा किसी न किसी की नजर है और जो हम कर रहे हैं वो कोई ना कोई सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको जहन में रख रहा है और ध्यान में रख रहा है, और क्या पता कब वो बात हमको एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं पता कि जब वो अपने साथियों को मदद कर रहा है कक्षा में तो शायद उसके टीचर्स उसको देख रहे हैं या कोई और उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर हम में से हर कोई इस चीज को ध्यान कर ले कि भाई एवरीडे लाइफ, रोज की जो हमारी दिनचर्या है जीवन की, अगर उस पे हमारा गौर रहे तो क्या पता देयर इज समवन हु इज वॉचिंग इट, और क्या पता इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू शिफ्ट माई लाइफ। तो
4: शांतनु भाई, एक जो अभी जो आप ये कह रहे थे ना, जो ये सुन के मुझे भी अभी ऐसा ही लगा कि एक मुझे एक कहावत की याद आ रही है कि आप ऐसा काम मत करो जो आप किसी के सामने कर नहीं सकते।
3: बहुत बढ़िया जी।
4: तो मतलब आपके ऊपर जो नजर की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा ऐसा करो जिससे आपको शर्मिंदा ना होना, है ना
3: जी? बिल्कुल। तो सोनाली जी, मुझे यहाँ पर आगे की आपकी जर्नी के साथ जोड़ना है जहाँ पर आप एज अ जर्नलिस्ट काम करना शुरू करते हैं इतनी सारी विधाओं में, और आप शुरू से बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं, लेकिन जर्नलिज्म ने क्यों आपको अपनी तरफ खींच लिया?
4: शांतनु भाई, एक चीज में बड़ा मजाक कहूंगी, मेरे ना मुझे लॉयर बनना था, मुझे जर्नलिस्ट नहीं बनना था। तो मैं बचपन से जब आप लोग एसेज लिखते हैं स्कूल में क्लासरूम में, वो ना ऐसे लिखने बोलते हैं, तो मैं लिखती थी मुझे बड़े होके लॉयर ही बनना है, और मैं उसी का मेरे दादाजी वो भी लॉयर ही थे, तो बड़ा शौक था कि लॉयर बनेंगे। पर पता नहीं जिंदगी का मोड़ किस तरह ले गया मुझे कि जाके मैंने जर्नलिज्म किया। और एक दिन मैं ऐसे दोस्तों से बात कर रही थी कि करना है कुछ, अभी पॉलिटिकल साइंस में एमए भी कर लिया था, तो मैंने सोचा कुछ करना है, और मेरे पढ़ाने का मन नहीं था, मुझे टीचिंग करने का मन नहीं था। तो उन्होंने कहा देखो एक मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये टेलीविजन जर्नलिस्ट की नौकरी है, करना चाहोगी, अच्छा लिखती हो, आ जाओ। मैंने कहा चलो देख लेते हैं कैसा है, कभी किया नहीं था। तो वहाँ पहुँच गए और उसके बाद दिल लगा के काम किया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी, हर दिन एक नया मोड़, और लोगों से मिलना, ऐसा एक जोश था कि रोज एक नया न्यूज निकालना, उसका पूरा विचरण देना, एनालिसिस करना, और एक तरह से दिमाग भी चलता है कि आज जो अगर मैं कहूँ मेरा एक तरह से एक एनालिटिकल स्किल है, मतलब एक सोचने का तरीका है जो लॉजिकल है ना शांतनु भाई, वो शायद उसी में मेरी ट्रेनिंग। तो चाहे वो बिजनेस जर्नलिज्म के या एक तरह का मतलब काम था, पर जो एक सोचने का तरीका, एक लॉजिकल माइंड, टाइम से काम करना, क्योंकि मतलब एक चीज मुझे उसमें बड़ा लगता था कि हर वक्त टीवी पे कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है कि काला है ना, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, तो टाइम से आपको खत्म करना पड़ेगा था। तो ये सारी चीजें मतलब वहीं से मतलब एक ट्रेनिंग जैसी थी, तो कि उसको निरंतर काम करना है, टाइम से करना है, पूरे जोश से करना है, पूरे दिमाग से करना है, तो नहीं तो आपका न्यूज भी गलत निकलेगा, आपका काम भी सही नहीं होगा, आप उस मतलब और पूरे शरीर के एनर्जी से करना, कि पूरे दिन भाग दौड़ था, ऐसा नहीं है कि हम एक कंप्यूटर पे बैठे हैं
3: जी।
4: तो ये सारी चीजें एक तरह से मैं अब सोचती हूँ, अब तो एक संस्था भी चलाती हूँ, तो वहां मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो एक जबरदस्त ट्रेनिंग थी।
3: मुझे एक चीज यहाँ पर जानने का मन कर रहा है कि आपको कभी ऐसा पीछे मुड़ करके लगता नहीं है कि वकील ही बनते तो अच्छा था, इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत है।
4: एक मुझे, मैं बहुत सोच रही थी एक दिन, और किसी से बात हो रही थी, ये कहा मेरा मन बहुत था वकील बनने के लिए, देखो मैं कहां ये एनजीओ में और कहां काम कर रही हूँ, इसमें कोई कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई एक दूसरे से जुड़े नहीं है। तो उसी ने मुझे कहा कि उसमें भी हम समाज के लिए काम करते हैं, जस्टिस के लिए काम करते हैं, है ना,
3: न्याय के लिए।
4: तुम एक तरह से वही कर रही है ना, तुम कोई दलील नहीं कर रही हो, तुम कोर्ट में नहीं हो, पर अगर समाज को ही तुम एक कोर्ट बना दो और उसमें तुम एक तरह से उसी जस्टिस के लिए काम करते, तो तब मुझे लगा कि शायद हाँ इसमें कनेक्शन है।
3: इसका मतलब न्याय हर फील्ड में है और हर फील्ड में उसका खनन हो भी रहा है, इसलिए हर फील्ड में एक व्यक्ति को सोनाली खान जैसा बनना पड़ेगा, ताकि हर फील्ड में हम न्याय को वो दर्जा, वो स्थान दे सके जो उसके लिए यथोचित है। लेकिन सोनाली जी, जब आप इस तरीके के मुहिम से जुड़ते हैं जहां पर चारों तरफ आपको एक नेगेटिव एनर्जी का फोर्स दिख रहा है, जहां पर आप अकेले कैंडल लेकर के चल रहे हैं, उसके लौ को आपको बुझने नहीं देना है और आप चाहते हैं कि ये कैंडल कईयों के कैंडल को जलाए, तो उस टाइम पे ये जो हवाएं चल रही होती हैं जो आपके अगेंस्ट होती है, उनसे लड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत कौन सी थी आपके अंदर?
4: मुझे कई लोगों की बातें याद आ रही हैं, जैसे जैसे आप मुझे बोलते हो ना, कि कोई मुझे एक फ्रेंड थी, वो अमेरिकन थी, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि हम लोग को हर तरह से एक पुशडाउन होता है ना, कि आपको नीचे धकेल दिया जाता है या आपको पीछे धकेल दिया जाता है, आप कोशिश तो जारी रहती है, तो वो जो वापस आके लड़ने की जो शक्ति है वो अंदर से आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहती थी तुम्हें ये शक्ति पता नहीं कहाँ से आती है, हर चीज नेगेटिव है या प्रॉब्लम आता है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं परफेक्ट हूँ या मेरे में सारे गुण है, मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं सही काम हर चीज सही करती हूँ, कोशिश तो है, पर बहुत सारी ऐसे समस्याएं आती है जो जूझने में काफी मतलब हताश कर देती है। तो वो कहती थी कि तुम ये क्या है जो हर बार तुम जैसे वो बॉल होता है ना, फट से वापस आ जाता है, ये क्या है, पता नहीं ये कहाँ से आता है शांतनु का, ये मैं खुद भी नहीं समझती हूँ, कितने मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती हैं, नेगेटिव एनर्जी आता है, पता अंदर से ही कुछ, जब मैं सुबह उठती हूँ या इसके बारे में सोचती हूँ, पता कहते नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके खुद को मैंने सोचने से लगता है कि नहीं ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, तो कहाँ से आता है मुझे कुछ पता नहीं, पर है,
3: बिल्कुल है, और ये चीज तो हम सबको पता भी है, बस ये जानने की कोशिश थी कि व्हाट इज योर सपोर्ट सिस्टम, आपका आधार क्या है। कईयों के लिए वो आधार जो होता है उनकी विद्या होती है, उनकी पढ़ाई होती है, कईयों के लिए वो आधार उनका लक्ष्य होता है, कईयों के लिए वो आधार उनका फैमिली होता है, कईयों के लिए वो आधार उनके दोस्त या कुछ भी एक आधार हो सकता है, किसी के लिए खुदा, ऊपर वाला, ईश्वर, किसी के लिए लोगों की शक्लें। जैसे मैं कईयों को जानता हूँ जो कहते हैं कि जब मैं अपने वर्क स्टेशन पे पहुंचता हूँ और जब वहां पर मैं बुजुर्गों की शक्ल देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं मेरे को और कंटिन्यू करना चाहिए। तो ऐसे आपका आधार सिस्टम क्या है?
4: मैं ये सारी चीजें भी कह सकती हूँ कि हाँ मेरा परिवार है, मेरे बच्चे है, मेरे पिताजी, माता जी, हाँ ये सही है कि आधार होता है इंसान का, कि मतलब हम उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, सपोर्ट मिलता है, जो हमें कहते हैं एक तरह से हमें गोद में लेके वो उन सबकी भावनाएं, उन सबका प्यार, कि आपके तरफ वो देखते हैं कि आप भी कुछ कर रहे हैं, उनका जो एक आपके प्रति उनकी जो इच्छाएं हैं कि आप कुछ करके दिखाएंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को आगे ले जाता है। पर मैं कभी भी ऐसे भी सोचती हूँ कभी बैठे बैठे कि मैं ये करती क्यों हूँ, है ना, मुझे क्या धक्का देता है, क्या आपसे कोई मुझे पहचानेगा, अवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, पहचान मिलेगी, ये भी अच्छा लगता है, इंसान है आखिर। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन मेरे पास काम नहीं है वो उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता।
3: बिल्कुल।
4: तो फिर अगर कोई कर्म नहीं है, कुछ जो जोश मुझे काम से मिलता है, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं कैसे बैठी हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ या ऐसे ही कुछ कर रही हूँ। तो जब काम होता है तो बहुत जोश आता है। तो एक तरह से सबका प्यार, सबका आशीर्वाद वो तो साथ में ही है, पर इसी तरह से मैं सोचती हूँ कि जिस दिन काम नहीं है उस दिन मैं भी नहीं।
3: तो इसका मतलब आप कर्म को ही अपना आधार मानते हैं
4: एक तरह से? हाँ।
3: और जब कोई व्यक्ति सतत कर्म करने में जुटा हुआ होता है तो उसका फल भी उसके पास आता रहता है। और जैसे कि आपने कहा कि सहयोग, लोगों का आपके प्रति समझ, साथ ही साथ जो रिकॉग्निशन है, जो पुरस्कार है, ये सब कुछ फिर धीरे धीरे आने लगता है। और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये बात समझा देता है कि आप जो कर रहे हो राइट है और आगे करते भी रहो। और इसी सिलसिले में फिर आपको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। भारत ने आप में वो चीज देखा जो भारत को लगा कि भाई ये मेरी बेटी है। बेटी तो हर कोई है, बच्चे तो सभी हैं भारत के, लेकिन फिर भी जो उस वर्ष जिन लोगों में भारत ने देखा कि भाई ये है वो मेरी बेटी जिसने मुझे वो स्वरूप या मेरा वो परिभाषा को सार्थक किया है जिसकी वजह से मैं यशस्वी हूँ, तो जब आपको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया तब का मैं आपसे आपका अनुभव सुनना चाहूंगा कि क्या था वो फीलिंग, कैसा लगा आपको, और वॉज इट लाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को दे दिया जाता तो कहते भाई तुम्हारे लिए इतना ही है, सो और वॉज इट कि नहीं मुझे तो अब और करना है, क्या था आपके अंदर चल रहा उस समय?
4: एक तो दो चीजें थी इसमें। एक तो जो राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना, वो अशोका हॉल में खड़ा होना, जो कभी हम गए नहीं थे, बाहर से देखा था, हम दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ से गाड़ी से हम निकल जाते हैं, और हमारे जब गणतंत्रता दिवस होती है तो पूरा पीछे रहता है वो। तो मैं जो कह रही थी कि वो अशोका हॉल में खड़ा होना, वहाँ पे राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना, वो एक और ही चीज़ है। मतलब उसमें आप, मैं क्या कहूँ, हम लोग को बिठाया गया था और वो ना पूरा मिलिट्री आर्मी में वो लोग मैनेज करते हैं। मतलब वो अगर आपको 8:10 बोले है ना, 8:10 तो 8:10 पे ही वो होगा, ऐसा उनका मतलब प्रिसिशन है। तो ठीक है, हमें बुलाया गया, वहां बिठाया गया, एक बार हमको बोला गया कि इधर ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी आएंगे, वो बिल्कुल बचेगा, उनको इतना मिनट लगेगा आने के लिए। हमने सोचा थे अच्छा अच्छा होता है ऐसे, पर ठीक उसी टाइम पे डुबुल बजा, राष्ट्रपति जी आए, और मतलब 10 मिनट का था तो 10 मिनट में ही खत्म हुआ। तो वहां बैठे मुझे लगा कि यही हमारा भारत है, यही हम इस दिशा में हमें जाना है। वहां राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, उसका फोटो मैं अभी भी रखती हूँ, उसको देखती हूँ, और एक तरह से ये भी लगता है उसके बाद की जिम्मेदारी भी सौंपा गया है कि आगे इसको करते जाना है ना, ये पुरस्कार इसी पे रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है। मतलब हम इंसान हैं, आगे पीछे तो होता है, ऊपर नीचे भी समस्याएं आती हैं, खुशियां आती हैं, पर आगे चलते जाना। और उसके बाद एक और चीज लगता है कि अब कोई पुरस्कार जरूरी भी नहीं है, अब ये मिल चुका है, इसके बाद अब कुछ मतलब और कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी भी मुझे एक पुरस्कार अभी किसी ने दिया, मुझे लगा अच्छा लगा, पर यही लगा कि भी ठीक है, ये नहीं है कि वो कुछ कम है, वो भी बड़ा बहुत बड़ा है। आपसे बात करना, आज भारत की बेटी की तरह आपने मुझे पहचाना, आज पहली बार ही कोई कह रहा है मुझे, आज तक किसी ने कहा नहीं है ना, डॉटर ऑफ इंडिया या भारत की बेटी है तो हम सब ही। तो जिस तरह से आपने मुझे ये एक पद जैसा ही दे दिया है, आज तक मुझे ऐसा किसी ने कहा नहीं, तो ये भी सुन के अच्छा तो लग रहा है, पर हाँ एक तरह से ये भी लग रहा है कि नहीं, कोशिश तो और भी करनी
3: जी
4: ये पदक मिलने के लिए।
3: तो जैसे आपने बताया कि एक तो पुरस्कार मिलता है उससे एक तृप्ति मिलती है, एक संतुष्टता होती है, पर साथ ही साथ एक हौसला भी मिलता है कि भाई अभी आगे और करना है, क्योंकि आपके जैसे ही कई लोग होंगे जो इस फील्ड पे सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा को करते हुए जब उनके बीच में से किसी को जब पुरस्कृत किया जाता है तो उनके अंदर भी हौसला आता है कि जो हम कर रहे हैं ये सच में भारत की आवश्यकता है, आवश्यकताओं में से एक है। तो श्रोता साथियों, मैं यहाँ पर बीच में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप सबने कई बार टीवी पर सुना होगा गली गली सिमसिम, गली गली सिमसिम। ये जो म्यूजिक है अपने आप में एक हॉन्टिंग म्यूजिक मैं कहूंगा, क्योंकि हम में से कोई इसके धुन को भूलता नहीं है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि गली गली सिमसिम कार्यक्रम के पीछे भी जो मास्टर माइंड कहेंगे वो हमारी सोनाली बहन ही है। तो सोनाली जी, गली गली सिमसिम कैसे शुरू हुआ?
4: तो मैं तो संस्था से 4 साल हुए जुड़ी हूँ, तो मैं इसका पूरा कोई क्रेडिट तो नहीं ले सकती। गली गली सिमसिम 10 साल से पहले से चल रहा है
3: जी।
4: तो मुझे ये एक तरह से सौंपा गया है कि इसको आगे लेके चलो, तो ये जिम्मेदारी अब मेरी है। शुरुआत तो मैंने नहीं की, पर जिन्होंने की है उनके हम आभारी हैं। कि मतलब ये 50 साल पहले ये संस्था बनी थी अमेरिका में, तब एक उनका जो एक सोच था कि जो बच्चे टीवी देखते और कुछ सीखते हैं, एक गाना अगर हमने कभी भी देखा वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम उसको भूलते नहीं। जिस तरह आपने गली गली सिमसिम का गाना बोला, या कोई भी उस टाइम तो नहीं था गली गली सिमसिम, कोई एड्स देखते थे बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बचपन के साबुन का एड, शैम्पू का एड,
3: जितारा का जलेबी वाला एड हमेशा याद रहता है
4: हाँ, निर्मा, बोलिन, इतने सारे। अब मैं आप बोलो, मैं भी आज उनके गाना आपके लिए सुना। तो बच्चे भूलते नहीं। उस सोच को लेके ये कार्यक्रम शुरू हुआ अमेरिका में कि बच्चों को टीवी के कार्यक्रम, गाने, खेल, ऐसा माहौल बनाए जिसमें बच्चे खुश हो और उसी से बच्चे और अच्छे से सीखेंगे। तो 50 साल पहले एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। अब हम आए हैं इस स्तर पे कि आज ऐसे हमें माहौल बनाना है बच्चों के लिए जिसमें बच्चे खुश हो और उसी से बच्चे और भी आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। और उनका जो पूरा परवरिश की बात हम करते हैं कि हर तरह से जो उनका चरित्र है वो बने, है ना। तो उसी पे हमारी जो संस्था है एसएसपी वर्कशॉप, उस पे हम फोकस करते हैं। तो जो ये जो पूरा कार्यक्रम है, और ये देश 150 देशों में फैला हुआ, हम इस तरह से बच्चों को, जो आपने भी कहा शुरू में कि किस तरह से बच्चों को वो अच्छे अच्छे वैल्यूज, अच्छे जो हम कहते हैं, जिस जो हमें दिशा दिखाए, जो हमें सही रास्ते पे ले जाए, वो वैल्यूज हम किस तरह से बच्चों को सिखाए। तो यही है सेसमे का संसार।
3: तो क्या मैं ऐसा आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको आज की डेट पे जो टेलीविजन पे या जो भी संचार माध्यम है, मीडियाज है, तो हाथ में आ गया है टेलीविजन, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके हाथ में एक मोबाइल है और उसपे यूट्यूब का टेलीविजन चल रहा है, क्या आपको लगता है हमारे पास ऐसे इनफ कंटेंट है या नहीं है या बहुत है जो कि हमारे देश को एक सही दिशा दे सके?
4: मैं ऐसा सवाल पूछा, कंटेंट तो बहुत है ना, हर प्रकार का कंटेंट है। अभी ये जो ओटीटी कहते हैं, नेटफ्लिक्स है, देश विदेश का जो प्रोग्राम्स है हमारे स्क्रीन पे आता है, बच्चे हर प्रकार के प्रोग्राम्स देखते हैं। तो जो बच्चों का दिमाग है वो ऐसा है कि हर चीज को जैसे वो ले लेता है, फटाफट सीखने की कोशिश करता है। बच्चों का जो हम कहते हैं
3: फ्रेश स्लेट है, कुछ भी अब्सॉर्ब करता है स्पॉन्ज की तरह,
4: स्पॉन्ज की तरह। पर एक इससे और भी बड़ी बात है कि जो पहले 5 साल है कोई भी मनुष्य के जिंदगी में, उस टाइम में जो दिमाग का जो बढ़ता है वो सबसे तेजी से विकसित होता है दिमाग इंसान का। तो उस टाइम में जितना भी आप डालो, आप 2-3 भाषाएं सिखा दो, कुछ भी सिखा दो, वो दिमाग ऐसे उसको, आपने सही कहा, स्पंज की तरह उसको चूस लेता है। आप यही सोचिए, जो बच्चा लेटा रहता है, फिर वो रेंगता है, फिर वो चलता है, जिसको बोलना नहीं आता है वो बोलने सीखता है। ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें बच्चे करते हैं इस 5 साल में। तो अगर हम इस उम्र में बच्चों को सही तरह से परवरिश करें, यानी कि उनको उन चीजों से एक्सपोज करें जिनसे उनका दिमाग बढ़े तेजी से, और वो सारी चीजें मिले जिनसे उनकी सीख बढ़े, तो आप ही सोचिए वो आगे चल के किस तरह से वो अपने को पूरी तरह से संपूर्ण बना सकते हैं। तो ये क्वालिटीज बच्चों में, हर बच्चे का क्वालिटी अलग रहता है, तो उसमें अगर हम उन बच्चों को सही परवरिश करें, उनमें सही उनको दिशा दिखाए, तो वो जो उनके अंदर है वो सही तरह से वो पनप सकेगा और वो आगे चल के ऐसे इंसान बनेंगे जो आप जो कहते हो अपने अपने देश के, अपने समाज के सही तरह से एक उससे जुड़ सके और एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी बन सके।
3: जी, बच्चों के लिए कंटेंट है बहुत सारे, लेकिन क्या बच्चे वहां तक पहुंचते हैं, या उन कंटेंट तक पहुंचने के पहले उनके सामने कुछ ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जो शायद उनके लिए नहीं बनाए गए? तो यहाँ पर आप, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट, आप इस फील्ड पे बहुत समय से काम कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा, फेस भी किया होगा, और उसको कुछ इसके बारे में आपके अंदर विचार सागर मंथन चलता ही रहता होगा कि जो चीज जिसके लिए बनी हुई है उसके पास तक पहुंचने के पहले अगर कुछ और चीज पहुंच रहा है तो कैसे इस चीज को सॉल्व किया जाए?
4: तो ये दुनिया बदल गई है शत्रु भाई। पहले हम लोग कहते थे कि बच्चों को स्क्रीन मत दो, ये मत करो, वो मत करो, हम रोक नहीं सकते। वो एक है जो एक धारा है जो चल चुकी है, उसके आगे कुछ रोक नहीं दे सकते हैं। तो हमारे पास एक ही चारा है कि हम जो जो माता पिता है या जो बड़े जन है उनको समझाए कि किस तरह से बच्चों को वही दिखाए, वही दे जो उनके उम्र के लिए ही थी। जो आजकल हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं
3: जी,
4: अब हम चाहे उससे हम कहना चाहे पता नहीं वो क्या चीज है, वो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ देश के लिए है, कोई संस्था के लिए है, कोई कंपनी के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी है। हमको अपना साइबर सिक्योरिटी सोचना पड़ेगा, हमारे बैंक अकाउंट का, हमारे फेसबुक पेज का। कोई आपके आता होगा कई दिन की कोई आपके दोस्त ने लिख दिया कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया है, अगर इससे आपको कोई ईमेल मिले या कुछ मिले इसको जवाब मत देना। तो आप ही सोचिए शांतनु भाई कि हम ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसको हम इसको अलग नहीं कर सकते, हमें इसको समझना पड़ेगा। तो यही है, चाहे आप माउंट आबू में हो, सिरोन रोड पे हो, आप चाहे वो मतलब ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ हम सोचे कि हमारा साइबर सिक्योरिटी से क्या लेना, पर नहीं, इसमें हम सबको ही इसमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बच्चों को ऐसी चीजें दिखाना चाहते हैं या ऐसी चीज से वो नहीं बच्चा देखे, तो हमें इससे बहुत उसको समझना पड़ेगा गौर से। और हमें एक तरह से हमारा काम है कि लोगों को सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फोन में भी होता है सेफ्टी लॉक, कई चीजें हम उसमें कर सकते हैं जिससे बच्चों को दूसरी चीजें ना दिख पाए, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा और ये हमें करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे ऐसी चीज देखेंगे जो उनके लिए सही नहीं है, उनका दिमाग का ऐसा विकास नहीं हुआ है कि उसको समझ सके और उसको सही तरह से वो भी समझे कि भाई ये हमारे लिए नहीं है। फिर हम भी बहुत चीजें देख लेते हैं पर हमें समझ आ जाता है कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, पर बच्चों में वो क्षमता अभी नहीं है, इसीलिए हमें और सतर्क रहना।
3: इसमें आपने दो बहुत मुख्य बातें कही कि पहले तो ये समझना है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ देश के लिए या संस्था के लिए नहीं, मेरे लिए है क्योंकि मुझसे ही देश है। और दूसरी चीज ये कि बड़ों को, मतलब अभिभावक को, पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे का विकास ऐसी चीजों से हो जिससे वो बच्चा शक्तिशाली बने, ना कि एडिक्टेड हो जाए या आधारित हो जाए, कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाए। फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता जो है, वो एक शक्ति है, लेकिन इस चीज का ध्यान पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं सुनाली जी, मुझे ऐसा लगता है इस चीज का ध्यान कंटेंट मेकर्स को भी रखना पड़ेगा कि क्या कंटेंट हम ऐसा क्रिएट करें जो कि बच्चों को भारत से जोड़े। आज जो कंटेंट है वो कहीं थोड़ा बहुत शायद भारत के नजदीक है, लेकिन भारत की जो भारतीयता है, जो भारत का वैल्यूज है, जो भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, मैं उसकी रूढ़िवादिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसके उन ग्लोरियस मोमेंट्स की, वो जो स्वर्णिम पल है भारत के, जो भारत को आज भी विश्व पे एक अलग अनोखा देश बना के रखती है, उनसे जोड़ने की जरूरत है। आप इस पे क्या सोचते हैं?
4: चांदन भाई, आपने सही ही कहा कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करना चाहिए है ना, हमें भी तो देश को विकसित करना है, कोटि कोटि लोग हैं उनको खिलाना है, साइंस का एक हद पद पे आगे चलना है। तो पर जो आप वैल्यू की बात करते हैं, जो एक तरह से हम लोग, हम बहुत इसके बारे में सोचते हैं कि मतलब जिस तरह से हम लोग कहते हैं सहानुभूति है या प्रेम है या ये जो भावनाएं हैं, ये ऐसी मूल भावनाएं हैं जो हमें इंसान बनाता है। पहले भारतीय होने से भी पहले हम इंसान, चाहे वो किसी देश के भी इंसान है ना, तो ये कौन से वैल्यूज हैं जो हमें इंसान बनाता है, अगर हम इनको ही समझे तो फिर हम भारत के बड़े आसानी से बच जाए।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात
4: है ना। और ये अगर इंसानियत को ही हम नहीं पहचानेंगे तो फिर हम भेदभाव भी करेंगे, ऊंचा नीचा भी देखेंगे, और लोगों को हम इस दृष्टि से देखेंगे कि वो हमसे नीचे हैं, हमसे अलग हैं तो इससे नीचे हैं, कोई और है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। पता नहीं आपने कहा कि मतलब ये तो बंगाली है या ये तो पंजाबी है, ये और देश के हैं, ये खाते कुछ और हैं, पर इससे तो इंसानियत से कुछ तो नहीं जुड़ा है। इंसानियत क्या है? तो अगर हम इंसानियत को ही अच्छे से समझे और उसके जो हम वैल्यूज की बात करते हैं जो हमें इंसान बनाता है, तो वही तो हम सब बोल रहे हैं उसके बारे में, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। तो हम अपना अंदर से सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, स्कूल टीचर हो, एनजीओ में काम कर रहे हैं, कोई मतलब कंपनी में, फैक्ट्री में काम करता है, पर इंसान तो हम सभी हैं, और खुश वही खुशी वही दुख हम सबको महसूस होता है। तो ये मेरा सोच है कि जहाँ जहाँ हम हैं, अगर हम अपना काम सही से करें और किसी का बुरा ना करें, तो वही हमें भारत के बारे।
3: मैं एक्चुअली आपसे यही सवाल पूछने वाला था कि भारतीयता एक्चुअली है क्या, और आपने उसका इतना बखूबी मेरे सवाल पूछने के पहले ही जवाब दे दिया कि भारतीयता अर्थात अपने मूल्यों को पकड़ के रखना, और वो मूल्य कौन से, जो हर एक को समदृष्टि से देखे, हर एक को समान समझे, खुद में और दूसरे में कोई फर्क न करे, जो चीज मुझे पता है मुझे सुख देगी सामने वाले को भी देगी तो उसके लिए कोई फर्क नहीं करे। ये भारत का जो मूल मंत्र है, जो भारत की मूल परिभाषा है, वो आपने बखूबी हम सब सबके सामने रखा।
4: आपने मेरे से अच्छे से समझाया, शायद मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही थी, पर आपने मेरी भावनाओं को इतने अच्छे से समझाया कि हाँ यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा सुख दुख है और इंसान चलता ही रहेगा, पर हमें यही समझना है कि हम एक ही हैं, एक जैसे ही हैं।
3: और बच्चों को सिखाते सिखाते बड़ों को भी सिखाना पड़ेगा, और ये आपने किया है, चाहे वो कितने ही आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स हैं या चाहे कितने ही आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक जो विशेष मुझे याद आता है, बेल बजाओ, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, घरेलू हिंसा के अगेंस्ट। घरेलू हिंसा एक शब्द लोगों को पता भी नहीं था, जबकि वो उसके शिकार थे। ऐसे समय में आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट किया बेल बजाओ, जिससे मैंने जो पहले कहा कि भारत की कई बेटियों को आवाज मिला, ये आइडिया कैसे आया आपके पास, क्या था इसके पीछे, आपने कुछ क्या आपने रूबरू कुछ अनुभव किए थे या क्या बना, कौन सी वो सीढ़ियां बनी जिसकी वजह से बेल बजाओ शुरू हुआ?
4: बेल बजाओ एक ऐसा, मैं क्या कहूँ, कैंपेन रहा है जो अपने में ही एक बड़ा कैंपेन बन गया। मतलब उसका जो आइडिया, उसका सोच जो था, हम जब इसको बना रहे थे तो पहले ऐसा नहीं था कि जो घरेलू हिंसा कम थी, मतलब उसको आप सही कह रहे हो, कोई पहचानता ही नहीं था, मतलब है पर उसको कोई सामने रह के भी उसको कोई देख नहीं रहा था, महिलाएं उसको भुगत रही थी पर उसके खिलाफ

0: तो हमने सोचा क्यों ना इसको अलग से ही करें कि महिला पुरुष दुश्मन नहीं है, हमें एक साथ ही काम करना है और पुरुष भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं। ये महिला का खुद का ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा जो घरेलू हिंसा है हमारा प्रॉब्लम है, हमें ही झेलना पड़ेगा, पुरुष हमें पीड़ित करते हैं तो हम बस उनके खिलाफ हैं। ये पूरा जो दृश्य है हमने इसको बदला कि महिला और पुरुष एक साथ ही जुटकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो बेल बजाओ ये ऐसा ही एक आवाज था कि पुरुषों को साथ लेकर हम ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, महिलाएं अकेली नहीं कर सकती। कई चीजें थी, हमने ये भी देखा कि जो लड़के जिनको बचपन में मारपीट की गई हो, उनसे दुर्व्यवहार किया गया हो, तो वो बड़े होकर वो भी हिंसक बनते हैं, ये रिसर्च ने दिखाया। तो लड़के भी बहुत तरह से इसमें सफर करते हैं, ना कि सिर्फ लड़कियां, ये एक था पॉइंट। तो हम किस तरह से लड़कों को पुरुषों को साथ लेके चले, वो भी एक तरह से पीड़ित हैं इससे, महिलाएं नहीं सिर्फ। तो जो हम पुरुषवादी समाज की बात करते हैं उसे पुरुष भी और महिलाएं भी पीड़ित हैं। तो यही विचार लेके हम आगे निकले थे और यही है बेल बचाओ का जो हम कहते हैं मूल बात। और जब वो जो कैंपेन बना उसमें जहां एक घटना घटी कि एक पुरुष एक महिला को हिंसा कर रहा है और एक पुरुष उसको रोक रहा है, तो यही उसका मान्य था कि पुरुष ही आगे बढ़ सकता है जब वो हिंसा को रोके और महिलाओं का साथ दे। पर ये मतलब नहीं है कि महिलाएं हिंसा नहीं रोक सकती हैं, वो भी रोक सकती हैं, पर अगर एक साथ हम रोके तो शायद समाज और जल्दी बढ़े इस दिशा में। तो ये मेरा एक बहुत, मतलब क्या कहूँ, ये मुझे भी इस कैंपेन ने बहुत इंस्पायर किया और इसके बारे में बहुत लिखा गया, देश विदेश में इसकी चर्चा भी हुई, चाइना, पेरू, पाकिस्तान, इसमें इसके वर्जन्स भी बने, क्योंकि किसी ने इस तरह से देखा नहीं था कि एक सामाजिक स्तर पे ऐसी बात हो। तो आज तक उसने मेरा अपना भी सोच का ढंग बदल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में जो हम कहते हैं सहानुभूति, सहानुभूति जो आप कहते हो या एम्पथी कहते हो, वो एक जो मनुष्य में होना चाहिए उसके बारे में वो बात हम कर रहे थे कि जब तक हम वो अपने में ना लाए कि अगर मैं नहीं समझूं कि आप पे क्या गुजर रहा है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं करूँ, तो एम्पथी की बात, सहानुभूति की बात जो हम कर रहे हैं, वहां से मेरे अपनी जो सोच की किस तरह से हम चाहे वो कैसा भी प्रॉब्लम उसको अगर हम झेलना चाहते हैं तो एक तरह से हमें इसको समझना पड़ेगा एक एम्पथी के तौर पे। और आज भी मैं कहती हूँ समाज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ एम्पथी या सहानुभूति की कमी।
1: इतने साफ शब्दों में आपने बता दिया कि समाज का सबसे बड़ा समस्या जो है वो सहानुभूति की कमी है, एक दूसरे को ना समझ पाना, एक दूसरे के दर्द से नहीं रिलेट कर पाना, ये कितनी बड़ी असक्षमता है लोगों के अंदर आज, और जिसकी वजह से ही जो है समाज का स्ट्रक्चर या घर का स्ट्रक्चर वो चेंज होने लगता है। अगर बचपन में बच्चों को सही व्यवहार नहीं दिया गया है तो वही बच्चे आगे चल करके व्यवहारहीन हो जाते हैं, कुशल व्यवहार नहीं कर पाते, परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक सुखी संसार जो बन सकता है और जो उसकी नींव है समझ, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, वो खत्म हो जाती है। और सोनाली जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं पे हो रहे अत्याचार का समाधान सिर्फ महिलाओं को नहीं करना है, पुरुषों को भी करना है। और पुरुष जो अत्याचार कर रहा है वो कोई शक्तिशाली नहीं है, वो एक्चुअली अंदर से बहुत बिगड़ा हुआ है, अंदर में उसके भी बहुत बड़ा एक अत्याचार का अंश है जो उसकी यादगार है या जो उसके बचपन में कभी उसके साथ हुआ होगा। तो देखने के लिए जो अत्याचार कर रहा है और जिसपे हो रहा है, दोनों ही पीड़ित हैं, और दोनों के प्रति हमारी सहानुभूति होगी तभी हम दोनों को सुधार पाएंगे या दोनों को मदद कर पाएंगे। मैंने आपके इंटरव्यूज को जब पढ़ा तो मुझे एक चीज आया कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं, मदद, सहयोग, सहायता, इन तीनों को आप कैसे रिलेट करते हैं?
0: तो आत्मनिर्भरता,
1: बिल्कुल,
0: आप जो भी करिए किसी को

0: उसको आत्मनिर्भर बनाए। आजकल वो बहुत बड़ा शब्द है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, पर ये एक सही ही बात है। किसी को आप मतलब आप चाहे उसको शिक्षा दीजिए, आप उसको अपना काम करने का तरीका सिखाइए, आप उसको पैसे दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, पर उसको आत्मनिर्भर। अब आप उसको मदद कहिए या सहयोग कहिए या सपोर्ट कहिए, पर दूसरी बात है कि इस ये करते हुए किसी को नीचा मत दिखा, है ना? क्योंकि एक तरह होता है कि मैं आपको मदद कर, मैं इतना बड़ा, मैंने आपकी की कुछ सेवा की, देखिए मैं कितना अच्छा, है ना? ये भी मत कर। तो इसलिए ये सहयोग, मदद, ये बड़े अच्छे शब्द हैं और आप इसको यूज करिए जैसे भी आपको करना है, पर उसका जो उसके पीछे जो आपका क्या कहूँ इंटेंशन है, आपका जो जहाँ आप इसको मतलब आप इसको समझते हैं कि किसी को मैं मदद कर रहा हूँ इससे कि मुझे फायदा होगा, या किसी को मैं मदद कर रहा हूँ फिर कली ये किस तरह से मैं कर रहा हूँ कि वो जाके अपने आप ही आत्मनिर्भर हो, इससे मेरा क्या लेना, मैंने जो करना था कर लिया, है ना? तो यही मैं कहना चाहूँ, मैं शब्द में नहीं भूलूंगी, क्योंकि शब्द हम इंसान हैं, हम शब्द से ही अपने को समझा सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से उन शब्दों का व्यवहार करें, वो शब्द हमें चोट भी पहुंच सकता है, शब्द में बहुत एक तरह से पावर है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी की मदद करें, किसी की का सहयोग करें, उसका उद्देश्य क्या है वो समझना चाहिए, वो आत्मनिर्भर हो, उसमें हमें कुछ मिल गया, एक पुरस्कार मिल गया, किसी ने हमें पहचाना, वो हमारा बोनस है, पर वो उद्देश्य नहीं। तो वो जैसे हम बचपन में फर्स्ट आना चाहते थे, सर्टिफिकेट मिलना है, मेडल मिलना है, वही उद्देश्य था, पर ये मदद कुछ और ही चीज है, ये सहयोग कुछ और ही चीज है, वो फर्स्ट आना नहीं है। तो यही एक मेरी सोच है।
1: बहुत सुंदर साथियों, आपने सुना होगा और मैं समझता हूँ ये बात आपके अंदर तक चली गई होगी कि चाहे हम किसी की मदद कर रहे हैं या उसको सहयोग दे रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, भावना उसके पीछे हमारी क्या है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। भावना क्या उसके पीछे वास्तव में उसको सहयोग करने की है या उसमें कुछ मेरा स्वार्थ मिक्स्ड है, तो ये भावना को हमको चेक करना पड़ेगा। और जो सोनाली जी ने बहुत क्लियर शब्दों में जैसे एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि ये दवाई है लेकिन साथ में ये करना जरूरी है, आप मदद भले करें लेकिन मदद के साथ साथ चेक करें कि भाई मेरे मदद के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो उद्देश्य ही हमें उद्यमी बनाता है, वो उद्देश्य ही हमें राइट रास्ते पे चलते रहना सिखाता है। सोनाली जी, आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है और बातें करते रहे, लेकिन मुझे भी पता है आपने अपने व्यस्त समय से बहुत व्यस्तताओं को रखते हुए भी ध्यान में आपने हमारे लिए समय निकाला, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा आपके साथ। रेडी फॉर इट?
0: रेडी।
1: तो एज यू नो रैपिड फायर राउंड है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक शब्द में या एक लाइन में ही उसका जवाब दे सकते हैं। सेवा क्या है?
0: अपने आप को देना।
1: वाओ। हिम्मत?
0: अंदर से आना।
1: उम्मीद किसे कहते हैं?
0: सुबह।
1: वेरी ब्यूटीफुल। शक्ति क्या है?
0: औरत।
1: भारत क्या है?
0: मेरा।
1: ओ सो स्वीट। एंड सोनाली कौन है?
0: आपके सामने जो है सो है।
1: पारदर्शिता। सोनाली जी के इस शब्द से कि वो है आपके सामने एक पारदर्शी व्यक्तित्व, जिसके स्वरूप में कभी वो दिखते हैं कभी भारत दिखता है, ऐसे यशस्वी भारत की यशस्वी बेटी सोनाली जी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे बीच हमारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कुछ सिखाने के लिए बहुत कम समय में, ये गुणी नम्र गुणी मैं फिर से कहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अंतनु भाई आपका भी बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे इतना पॉजिटिव एनर्जी दिया और इतना जोश दिया, आज इससे मैं बहुत कुछ खुद भी ले जा रही हूँ और अपने उन जो मैं प्रिंसिपल्स है या उन जिस दिशा में मुझे चलना है उसमें मुझे और भी एक तरह से मतलब जोश आया है आज आपसे बात करके, तो दोनों तरह से ही मतलब आपको भी कुछ मिला, मुझे भी बहुत कुछ मिला आज ये बात करके आपसे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सोनाली जी, उम्मीद करेंगे आप दोबारा हमारे श्रोता साथियों से जुड़े और ऐसे ही हम मिलते रहे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी, आपने मुझको बुलाया, थैंक यू।
1: साथियों, आपने सुना आज हमारे बीच यशस्वी भारत कार्यक्रम में भारत की एक यशस्वी बेटी सोनाली खान जी थे, जिन्होंने अपने छोटे बड़े पहलों से भारत की कई समस्याओं को सुधारने का, उनको समझाने का प्रयास किया है भारत को, जिसमें से एक विशेष था बेल बजाओ, घरेलू हिंसा। घर पे हिंसा ना केवल महिलाओं पे हो रहा होता है, लेकिन कई बार बच्चे भी उसका शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि वो उसे देख रहे होते हैं। आपके आसपास अगर कुछ ऐसा हो रहा है या आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है, आज एक दिन आप निश्चित करें कि इस चीज को मुझे समझना है, इसकी गहराइयों तक जाना है, और मुझे मेरे घर को सशक्त बनाना है, स्वच्छ बनाना है। और जब मेरा घर सुधर जाएगा तो मेरा देश, जो मेरा बड़ा घर है, उसे भी मैं सुधारने में बहुत सक्षम हो जाऊंगा। रेडियो मधुबन के साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। हम दोबारा मिलेंगे साथियों एक नए मेहमान के साथ। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आपका बार बार स्वागत करता रहूंगा। आरजे शांतनु, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: आरती ऐसे ही एक किनारे पे खड़ी थी, वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन।
2: नमस्कार, मैं हूं विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। आज मैं आत्मसम्मान पर अपने चिंतन की धारा आपसे शेयर करूंगा। आत्मसम्मान एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन को निखारता है। यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं के प्रति आदर और विश्वास रखना। यह न केवल दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है, बल्कि यह हमारे विचारों और निर्णयों में भी झलकता है। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानें। हमें यह समझना चाहिए कि हम पूर्ण नहीं हैं, परंतु हमारा आत्म मूल्य हमारी उपलब्धियों, प्रयासों और सकारात्मक दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। हमें अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और अपने मूल्यों को सहेज कर रखना चाहिए। आज के समय में जहां समाज में प्रतिस्पर्धा और तुलना का माहौल है, आत्मसम्मान को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। लेकिन यदि हम अपने आप पर विश्वास रखें और अपने अंदर की ताकत को पहचानें, तो हम किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान के साथ खड़े रह सकते हैं। संक्षेप में, आत्मसम्मान हमारे जीवन का आधार है। यह हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाता है। आत्मसम्मान के साथ जीने से हमें मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। हमें चाहिए कि हम न केवल अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखें, बल्कि दूसरों के आत्मसम्मान का भी सम्मान करें। यही सच्चे मानवीय मूल्यों का परिचायक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
4: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, then it's declining further, further, further. तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हृदय किया था गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार था।

0: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
1: ओम शांति।
0: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
1: थैंक यू।
0: लास्ट टाइम मैं आपसे एक बात कर रहा था, एक बहुत सुंदर बात आपने कही कि जब बच्चा रोता है तो अपने दर्द के लिए रोता है, भूख के लिए, पेट में दर्द के लिए, या नींद आ रही है तो रोता है, लेकिन वो ब्लेम नहीं करता।
1: बच्चा रोता है लेकिन वो ब्लेम नहीं करता, तो उसमें क्या होगा? वो रो रहा है लेकिन वो सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस की एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि ये रॉन्ग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए वो बच्चे के साथ की जो हमारी एनर्जी है वो हमेशा एक्सेप्टेंस की होती है। अब इसी तरह बच्चा भी कुछ भी करे, एक छोटा बच्चा कुछ भी करे, पेरेंट कभी छोटे बच्चे के लिए रॉन्ग नहीं कहता है। आधी रात को उठ जाए, सारी रात जागता रहे, कहेंगे नेचुरल है ना, नेचुरल है, बच्चा है तो करेगा ही। दिस एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये उस एज में कितनी प्यारी चलती है। लेकिन धीरे धीरे हम ये एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि वो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग से चलना शुरू हो जाए। एंड जब वो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट से नहीं चलेगा, तब हम उसके राइट्स को कई बार रॉन्ग कहना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम उसके राइट को रॉन्ग कहेंगे, वो हमारे राइट को रॉन्ग कहेगा, और फिर हम दोनों के बीच एक गैप आने लगेगा। एंड व्हाट इज वेरी सटल, जो हम नहीं रियलाइज करते, कि ये जो गैप है, दिस इज एनर्जी ऑफ डिसरिस्पेक्ट। यू नो, इफ आई क्रिएट दिस थॉट फॉर यू कि आप रॉन्ग हैं, आप रॉन्ग हैं, तो आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू। और जब दो आत्माओं के बीच रिस्पेक्ट की एनर्जी नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन, कोई भी कॉन्वर्सेशन, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी बात को रिजोल्व करना बहुत इजी है अगर रिस्पेक्ट इंटैक्ट है, तब हर बात सॉल्व हो जाएगी, हर बात का सोल्यूशन निकल आएगा। अब हम कहते हैं नहीं, रिस्पेक्ट तो है ना, आई रिस्पेक्ट माई वाइफ, आई रिस्पेक्ट माई चाइल्ड रिस्पेक्ट मी, बट नो, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग। उस क्षण वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग जब हम कह रहे हैं मैं राइट हूं, आप रॉन्ग हैं। आप देखो, एक छोटा बच्चा है, हमें अपनी हर बात बताता है, आके सब चीज, इवन छोटी छोटी चीज, लाइक आज टिफिन में मेरा फ्रेंड ये लेकर आया, आज टीचर ने ये बोला, आज क्लास में ये हुआ, वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। वो छोटा बच्चा आके, माँ सुन भी नहीं रही है तो भी वो अपनी सारी बात सुनाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, माँ मुस्कुराती जाएगी। इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, वो अपनी कई बातें हमसे छुपाना शुरू कर देता है, और फिर हम एक ऐसे स्टेज पर आते हैं जब पेरेंट बच्चे से पूछता है, आज क्या किया सारा दिन, कहाँ गए थे, किससे मिले।
0: बोलते नहीं है, आजकल बताते नहीं हो, क्या बात है,
1: अब ये क्या हुआ। वो ही पेरेंट, वो ही चाइल्ड, वो ही मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। वो बच्चा हर चीज बताता था, बताना चाहता था, बता के उसको अच्छा लगता था, बिकॉज यू लव टू शेयर विद योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। और वो ही बच्चा अब नहीं बताता, पूछने पर भी नहीं बताता, पहले बिना पूछे बताता था, अब तो पेरेंट बच्चे के गोल गोल घूमता है, कहाँ गए थे, क्या किया, उसके कमरे में उसके पीछे जाएंगे, क्या कर रहे हो। और बच्चा कहेगा, जाओ भी आप अपना काम करो, मेरा दरवाजा बंद करके जाओ बाहर। व्हाट हैज हैपेंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फिर नहीं तो हम इसको एक जस्टिफिकेशन दे देंगे एंड हम कहेंगे जेनरेशन गैप। देयर इज नो जेनरेशन गैप,
0: अंग्रेजी में कोई टर्म दे देंगे,
1: व्हिच इज, एंड ये देकर हम उस चीज को सॉल्व करने से पीछे हो जाते हैं। हम कहते हैं ये नेचुरल है,
0: इट इज नॉर्मल,
1: नॉर्मल। एंड जैसे ही नॉर्मल कहा, तो उसको ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या हो गया, क्यों वो बच्चा मुझे अपनी बातें नहीं बता रहा। क्योंकि अगर अभी भी हम उसको ठीक नहीं करेंगे, तो एज द चाइल्ड ग्रोज अप, वो अपनी बहुत सारी बातें बताना हमें बंद कर देगा। जब वो बच्चा इतना था, वो जो कुछ बताता था हम मुस्कुराते थे, मतलब हम उसकी हर बात को एक्सेप्ट करते थे, नहीं एक्सेप्ट भी करते थे, सुनते थे और मुस्कुराते थे, हम एक्सेप्ट करते थे, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, आज जो हुआ वो बहुत प्यारा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, अब अगर वो बच्चा कहे आज स्कूल से आके, आपको पता है हमने क्या किया, आज हम सब स्कूल बंक करके हम मूवी देखने गए, सी, अब ये रिएक्शन हो जाएगा, इतना प्यारा भी ओ नहीं होगा उस टाइम पे, उस टाइम इट विल बी अ लिटिल। वो जो मुस्कुराहट पहले आती थी उसकी शेयरिंग सुनने पर, वो मुस्कुराहट गायब हो गई और मुस्कुराहट की बजाय अब डांट भी आ जाएगी कि ये सिखाया तुमको, स्कूल इसलिए भेजता हूँ मैं, तुम्हारी इतनी महंगी फीस इसलिए भेजता हूँ, तुम बंक करके बहुत लंबा
0: पैसे कहाँ से लाए, कौन दोस्त है तुम्हारे आजकल।
1: तो बच्चा थोड़ा सा, फॉर देम जब ये पहले होना शुरू होता है, फॉर देम इट कम्स एज अ बिग शॉक। इनको क्या हो गया, ये तो मेरी हर बात सुनकर स्माइल करते थे, हंसते थे, आपस में डिस्कस भी करते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे, आज क्या हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद उस बच्चे ने आकर कहा, आज आपको पता है क्या हुआ, आज मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक सिगरेट ऑफर की, मैंने थोड़ी सी ट्राई की, घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ये जब दो बार, चार बार, छह बार होने लगा, तो बच्चे ने देखा अब कुछ चीजें बदल गई है, अब जब मैं शेयर करता हूँ ये खुश नहीं होते हैं। उसके लिए डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, अब बच्चे के लिए वो वाली एज में भी राइट था वो, और वो इस एज में भी जो कर रहा है उसके लिए वो राइट है, लेकिन उसको यहाँ से जो रिएक्शंस मिलने लगे हैं वो बदल चुके हैं। पहले एक्सेप्टेंस, हंसना, मुस्कुराना, और अब अप्रिसिएशन की बजाय रिजेक्शन, रेजिस्टेंस। जैसे पहले उसकी बातें घर में एक हंसी का टॉपिक और एक खुशी का टॉपिक बनती थी, अब उसकी बातें घर में एक चिंता का और एक गुस्से का टॉपिक बन जाती है ना, पूरी फैमिली डिस्कस करती है। इट्स नॉट जस्ट वन एंगर, इट्स अ डिस्कशन इन द हाउस। एंड फिर लेबल क्या लगेगा, बिगड़ गया है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, अब इसका हम क्या करें। जब ऐसी एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शन मिलेगा, तो वो बच्चा अब अपनी बातें बताना बंद कर देगा। हमें ये लगेगा कि उसने बताया, हमने डांटा, उसने बताना बंद कर दिया, हम सोचेंगे उसने करना बंद कर दिया। वो करना बंद नहीं करेगा, वो सिर्फ करके बताना बंद करेगा। वो बताया मैं मूवी गया, बंक किया, हमने डांट दिया, नेक्स्ट टाइम वो नहीं बताएगा।
0: अच्छा, मतलब अभी आजकल वो हमको नहीं बताता तो हम समझते हैं कि वो सुधर गया,
1: हमने कहा ना डिसिप्लिन कर दिया
0: डांट के।
1: उसने बताया मैंने उस दिन सिगरेट पी, हमने सबने जोर से डांट दिया, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चला, इसका मतलब उसने करना बंद कर दिया। उसने करना नहीं बंद किया, लेट अस ऑलवेज रिमेम्बर दिस, उसने सिर्फ करके बताना बंद कर दिया। और जब करके बताना बंद हो जाता है तब बातें थोड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। हमारे पास सारा दिन में कितनी ईमेल्स आती हैं, जो बच्चे अपनी छोटी बड़ी गलतियां, जो अब उनको लगता है कि वो गलती थी, जब कर रहे थे तो गलती नहीं लगे, लेकिन वो गलतियां अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, आस्किंग फॉर सोल्यूशन, लेकिन लास्ट लाइन उसमें ये होती है, प्लीज माई पेरेंट्स शुड नॉट कम टू नो दिस, प्लीज इसको टीवी पे नहीं डिस्कस करना क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि ये मेरी बात है। एंड दिस इज नॉट वेरी गुड न्यूज कि एक बच्चा अपने जीवन की प्रॉब्लम को लेकर अपने ही पेरेंट के पास नहीं जा पाता, स्ट्रेंजर्स के पास जा रहा है
0: और सीक्रेटली।
1: दिस इज नॉट नाइस। आज काउंसलर्स की क्यों जरूरत है, आज एक बच्चे को काउंसलर से क्यों बात करनी पड़ रही है, वो ही बात ना, उसकी जीवन की बात ही करता है ना वो काउंसलर से जाके, अपनी प्रॉब्लम ही बात करता है ना, मतलब पेरेंट से नहीं कर सकता, एक स्ट्रेंजर को पैसे देके वहां जाके बात करेंगे, क्या बात करनी है।
0: मैंने छोड़ा था अपने बेस्ट फ्रेंड से या अपने रिलेशनशिप्स में, जिसको मैं बोलता था बार बार, क्योंकि हर चीज में जब भी मैं उनको बताने गया तो मुझे टोकना शुरू हो गया। आजकल आप ऐसे करते हो बट आप ऐसे नेचुरली ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा, नेचुरली क्या सुनते नहीं थे, मुझे सिखाने लगते थे बार बार बार बार। मैंने बोला यार एक तो मैं दुखी हो कि आपके पास कुछ आपको सुनाने आ रहा हूँ और आप कम से कम सुन के कुछ मत बोलो, दूसरे दिन सिखाओ।
1: दिस इज सो ब्यूटिफुल, सी अंडरलाइन दिस, जब हम अपने मन की बात, अपनी प्रॉब्लम, इवन इफ वी आर रॉन्ग, लेकिन जब हम अपनी बात किसी को सुनाने जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
0: सुन तो लो।
1: और अगर वो मुझे टोकने लग जाए और मुझे गलत बोले तो आपने कहा फिर मैंने बताना
0: बंद कर दिया,
1: इसीलिए वो बच्चे ने बताना बंद कर दिया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। हम किसी से भी, इवन इस एज में, वाई एज अ चाइल्ड, किसी भी एज में हम किसको अपनी बात सुनाएंगे? जो हमारी बात को पहले सुनेंगे, फिर सुन के हमारे प्रति जजमेंटल नहीं हो जाएंगे, और हम जैसे हैं, जो हैं, हम उनको बात बताएंगे, वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, एक्सेप्ट करके फिर आराम से वो हो सकता है कि हमें राइट गाइड करने के लिए एक एडवाइस भी दे देंगे, और एडवाइस अच्छी लगेगी।
0: सिस्टर, एक गुरु थे जिनके पास मैं कभी कभी जाता था पहले, तो मैंने एक बोला कि मेरा बेटा आजकल एक गलत लड़की के साथ फंसा हुआ है, मुझे गुस्सा आता है, क्या करूं, दिस दैट, यहां तक बात थी। तो उनकी जो असिस्टेंट थी वो सुन रही थी। नेक्स्ट टाइम जब मैं बेटे के साथ गया तो द वे शी टॉक टू माई सन, एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम लाइफ में है। दैट इज वाई वी गो टू अ डॉक्टर प्रोफेशनल। सुनता है, सुनता है, सुनता है, वो सुनते सुनते आप खुद ही बोलते बोलते आप अपना ही सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम।
1: परफेक्ट।
0: मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि वी डोंट हैव टू टेल देम, वो खुद ही निकालते हैं क्वेश्चन।
1: परफेक्ट, परफेक्ट। इसका मतलब सामने वाले का रोल क्या है?
0: सुनना।
1: लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, नॉन जजमेंटल होकर सुनना। मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, सपोज मैं प्रैक्टिस कर लो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, कि अब कोई बात मेरे से शेयर करेंगे, आई विल नॉट इंटरफेयर। मैं इंटरफेयर इन द सेंस बीच में बात की, आई विल नॉट इंटरफेयर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बात को काटू भी नहीं, मैं उनको गलत भी नहीं बोलू, तो मैं सिर्फ सुनू। बिकॉज अ लॉट ऑफ अस आर डूइंग दिस आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि सिर्फ सुनना है। लेकिन सुनना सिर्फ यहाँ नहीं है, सुनना यहाँ है। और सुनना अगर है विद द राइट एनर्जी, मतलब सुनते हुए उनके प्रति कोई जजमेंटल थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं।
0: वो जो गुरु जिनको मैं अपने दिल की बात बोलता था, उन्होंने उसको भी प्योर आत्मा देखा, मुझे भी एक प्योर आत्मा देखा, मुझे भी एक बच्चा देखा, उसको भी एक बच्चा देखा। लेकिन थोड़े कच्चे पक्के उनके साथ वाले जो थे शिष्य या उनकी सर्विस सेवा करने वाले, वो जजमेंटल हो जाते थे। तो डिफरेंस वहीं दिखता था,
1: वहीं
0: गुरु क्या बिहेव करता है, ये कैसे बिहेव करते हैं।
1: अब
0: तो फिर हम जाके गुरु को बोलना छोड़ देते थे, क्योंकि वो सुनेगी कि मैं अभी तक ड्रिंक करता हूँ या अभी तक मेरी सिगरेट नहीं छूटी, तो फिर ये मुझे उस नजर से देखेगी। तो जजमेंटल
1: कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब जैसे आपने कहा कि उन महात्मा ने आपके प्रति भी जजमेंटल नहीं हुए, बच्चे के प्रति भी जजमेंटल नहीं हुए, तो आपको एनर्जी कैसी मिली?
0: प्यार की, बहुत प्यार।
1: तो बताने का मन करता है। इसी तरह जो वो महात्मा आपके लिए कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते।
0: करना तो चाहिए।
1: दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू, बिकॉज हम सबने अनुभव कर लिया है कि इक्वेशन कैसे वर्क करता है। हम सबको पता है कि कौन सी चीज एक कम्फर्टिंग एनर्जी क्रिएट करेगी और कौन सी चीज एक डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट कर देगी। काउंसलर क्या करता है? काउंसलर कोई जजमेंट नहीं क्रिएट करते हैं अंदर, क्योंकि एक उनकी अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट नहीं है ना। एक कोई आ रहा है अपनी प्रॉब्लम सुना रहे, फिर जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट आ रहे हैं, वो अपने, वो उसके प्रति जजमेंटल नहीं होते हैं। ये एक अभ्यास है। ये अभ्यास जितना हम करेंगे हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट। और ये अभ्यास करना बहुत इजी है, क्योंकि सामने वाली आत्मा अपने संस्कारों के वश कोई कर्म करके आई है, उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी, उसके संस्कारों के थ्रू बिल्कुल राइट है। तो क्योंकि वो बिल्कुल राइट है, तो उनके प्रति जजमेंटल होना, वो मेरे राइट से राइट नहीं है। हो सकता है ना वो मेरे राइट से राइट नहीं है, लेकिन वो अपने राइट से तो बिल्कुल राइट है। तो इसलिए जब सामने वाला बिल्कुल राइट है, अगर आप ये थॉट क्रिएट कर लें, आपकी एनर्जी फील चेंज हो जाएगी।
0: सिस्टर, जैसे वो हमारे गुरु थे, उन्होंने मुझे देखा एक प्योर आत्मा, एक छोटा बच्चा, मेरा शिष्य, ठीक है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद दिया। ये जो डॉक्टर है जिन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा इसके इतने घंटे हो गए, इसके मैंने पैसे लेने हैं, इसकी बात किसी और को बोली नहीं है, दिन में ऐसे 10 लोग आते हैं, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ये बात इसकी वाइफ को भी नहीं बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब मेरे बच्चे की बात होती है या मेरी बेटी या बेटे की, जहाँ रिलेशनशिप है, जहाँ अटैचमेंट है, वहाँ क्या करें हम?
1: जहाँ रिलेशनशिप है
0: वहाँ मैं गुरु नहीं बन सकता, ना उनका डॉक्टर बन सकता, मैं तो पिता हूँ।
1: बिल्कुल, और इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि मैं पिता हूँ तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि आई अंडरस्टैंड माय चाइल्ड।
0: पिता की ड्यूटी बिहेवियर क्या होना चाहिए,
1: पिता की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ड्यूटी, लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। एक पेरेंट की एक बच्चे के प्रति फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
0: प्यार,
1: दैट्स अंडरलाइन हो गया। एंड विच मीन्स के सामने आपका बच्चा कोई भी बात कह रहा है, कोई भी बात कर रहा है, आपकी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए,
0: अनकंडीशनल।
1: जैसे आप जजमेंटल हुए आपकी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड होगी, जैसे यू सेड यू कुड फील द डिफरेंस कि जो महात्मा है वो जजमेंटल नहीं है तो एनर्जी कैसी है, जो साथ में खड़े हैं वो सुनकर जजमेंटल है तो एनर्जी कैसे, उनके अंदर वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो अगर हम अपने बच्चे के प्रति जजमेंटल हुए तो हमारी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो गई, तो हमने अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने कहा एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की, फिर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली, वो गलत ना करे, उसको गलत को ठीक करना मेरी ड्यूटी है, उसको गलत से बचाना मेरी ड्यूटी है, उसके जीवन में कुछ गलत नहीं होना, वो सब ड्यूटी तो याद है,
0: आईना तो दिखाना चाहिए ना
1: उसको ठीक
0: यू आर रॉन्ग, ये गलत कर रहे हो तुम, इसका ये हो जाएगा रिजल्ट, पता नहीं तुम कहाँ क्यों कर रहे हो, पता नहीं क्या सिखाया।
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी लिस्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई फर्स्ट ड्यूटी टूवर्ड्स एनी सोल एंड ऑफकोर्स टूवर्ड्स चिल्ड्रन, सबसे पहले कि प्यार फ्लो करता रहे, फिर उसके बाद एडवाइस। इट डजंट मीन प्यार दे रहे हैं एडवाइस नहीं दे रहे,
0: कभी कभी बच्चे एडवाइस लेने आते भी
1: आते
0: नहीं,
1: भी नहीं।
0: सिर्फ सुनाना चाहते और बोलते भी सुन लो मुझे छोड़ दो, बस मुझे सुनाना है।
1: वो हमारे पास प्यार के लिए आते हैं, दुआओं के लिए आते हैं, हमारी गुड विशेज और ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं, वो हमारे पास अप्रूवल और अप्रिसिएशन के लिए आते हैं। हर आत्मा को, ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हर आत्मा को अप्रूवल और एक्सेप्टेंस चाहिए। और ये देखो आप हमें इस एज से सिखाया है कि बच्चा जो करता है अगर पेरेंट के चेहरे पर वो देखकर मुस्कुराहट आती है तो विच मीन्स द पेरेंट अप्रूव्स ऑफ द चाइल्ड एंड दैट मीन्स यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। एंड अगर आपने जो किया वो देखकर अगर पेरेंट के चेहरे पर मुस्कान की जगह कुछ और आ जाता है, बैड बॉय बैड गर्ल, ये उस एज से सिखाया था। तो विच मीन्स मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कि आई एम अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन फॉर मी, ये मैंने अपने बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिए, ये किस पर डिपेंडेंट थी, इफ पीपल अप्रूव ऑफ मी और डोंट अप्रूव ऑफ मी, क्योंकि मुझे इस एज से सिखाया था। एंड तो ये बिलीफ सिस्टम बना, इफ पीपल अप्रूव देन आई एम गुड, इफ पीपल डोंट अप्रूव देन आई एम नॉट गुड। This was true or not true, we don't know, but we believed this because वो conditioning वैसे बनी। अब इसमें भी people में सबसे important people कौन से, parents, partner, spouse, ये हमारे सबसे important

0: इम्पोर्टेंट हैं जिनका हमें अप्रूवल चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो अप्रूवल ही प्यार की निशानी है. अगर आप अप्रूव करते हैं यू लव में, हमारे लिए वो अप्रूवल ही हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है कि इफ माय पेरेंट अप्रूव्स ऑफ मी देन आई एम अ गुड पर्सन बिकॉज दैट इज व्हाट आई वाज टॉट एट दिस एज. अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और जैसे हमने अप्रूव करना बंद किया, रिजेक्ट किया, तब जो दूसरी थोड़ी सी रिस्की चीज हुई कि कुछ और लोग थे बाहर जिसको हम फ्रेंड्स कहेंगे जो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे. पेरेंट रिजेक्ट कर रहा था और फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर रहे थे. सोल को एक्सेप्टेंस चाहिए तो वो आत्मा किस तरफ जाएगी? वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाना शुरू करेगी. अब ये और रिस्की हो गया क्योंकि पहले तो फ्रेंड्स छोटी छोटी बातें बोल रहे थे, चलो आज कॉलेज बंक करके पिक्चर जाएंगे, कल चलो आज कुछ ये ट्राई करेंगे, तो वो बच्चे के लिए भी ठीक था, वो कर रहा था. धीरे धीरे फ्रेंड्स कुछ और करने के लिए भी कह सकते हैं जो बच्चा करना नहीं चाहता है. वो उसकी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग में भी रॉन्ग की साइड पर आ रहा है, लेकिन वो अपनी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग को भी चेंज करता है और जो उसके लिए रॉन्ग था वो भी करता है, सिर्फ ताकि वो अपने फ्रेंड्स का अप्रूवल और एक्सेप्टेंस खो नहीं दे. एंड इसको हम एक और फिर वर्ड देते हैं जिसको हम कहते हैं पीयर प्रेशर, कि अब तो वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में चला गया है, अब वो उनकी बात सुनता है. और जब वो पीयर प्रेशर में आ जाता है, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ दिस टुडे, कि एक क्लास में स्कूल में कुछ बच्चे कुछ करते हैं सिर्फ, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चे वो करने लग जाते हैं जस्ट सो दैट दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप. एंड बहुत सारे बच्चे अपनी बात सुनाते हैं आके कि इफ वी डोंट डू इट, यू नो, इफ वी डोंट डू व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग, तो फिर हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. तो सिर्फ वो एक्सेप्टेंस के लिए हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं. अब ये बच्चे को अगर हम देखें, उसको पेरेंट्स से रिजेक्शन मिला कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो. वो फ्रेंड से रिजेक्शन नहीं ले सकता कि वो भी बोलें कि तुम रॉन्ग हो, तो वो अकेला कहाँ फिर, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, तो फिर वो इस तरफ चला जाता है. अगर इस बच्चे को पेरेंट्स से हमेशा एक्सेप्टेंस मिले, ये बच्चा कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जो वो करना नहीं चाहता है. ये पेरेंट्स के लिए आज के समय में बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट मींस कि जो तुम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं, वो आपके पर्सपेक्टिव से, आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो अभी, वो बिल्कुल राइट है. दिस इज रिस्पेक्ट. अगर पेरेंट बच्चे को ये रिस्पेक्ट दे दे कि आप बिल्कुल राइट हो, तो बच्चा भी पेरेंट को क्या रिस्पेक्ट देगा? आप भी जो कह रहे हो, आप भी बिल्कुल राइट हो. हियर दिस इज इट. अब जब ये दो लोग नजदीक आ जाएंगे तब एडवाइस देने का टाइम आएगा. इधर होके तो एडवाइस वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट जहां बीच में है वहां अच्छी से अच्छी एडवाइस भी अच्छी नहीं लगेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी, सही नहीं लगेगी. ये गलत है, यू आर रॉन्ग, तो फिर आपकी हर बात भी तो मुझे रॉन्ग लगेगी. एंड इसीलिए आज बच्चे कहते हैं जैसे ही घर पहुंचो ये अपना शुरू हो जाते क्या क्या, तो हमारी अच्छी
1: और सुनाते भी नहीं ना, जैसे सुनाती बट ऐसा क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, तुमको वो बोलना चाहिए था, तुमको ऐसे करना चाहिए था. एक मैं किसी एक एक्टर की इंटरव्यू सुन रहा था, उसने इतना सुंदर कहा कि उसने बोला कि मेरी फिल्में फ्लॉप होती गई, तो लास्ट टू फिल्म जब बिल्कुल फ्लॉप हुई तो मैं पिताजी के पास गया, बोला कि बहुत दुखी था, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला देखो बेटा ये भी माइनस में गई फिल्म, ये भी माइनस में गई, दो माइनस मिलके अब प्लस हो जाएगा, तो चिंता नहीं कर, जा अभी कीप वर्किंग. तो उसको उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया होगा कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, प्रमोशन बराबर नहीं किया, रोल सुनाया नहीं, हमसे पूछा नहीं, कहानी सुनाई, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बहुत प्यार दिया, खिलाया पिलाया, बोला ठीक है बेटा आगे अच्छा हो जाएगा. उसके लिए उस समय उतनी ही जरूरत थी उसको,
0: क्योंकि
1: लेक्चर हम बाद में भी दे सकते हैं.
0: उस समय वो प्यार, वो एक्सेप्टेंस, वो हीलिंग का काम करता है, वो हीलिंग का काम करता है.

0: This is it.
1: I don't want you.
0: Which means your most precious advice also. क्योंकि पेरेंट एडवाइस अच्छी देंगे, राय अच्छी देंगे, लेकिन क्योंकि एनर्जी ठीक नहीं है, एनर्जी जजमेंटल और क्रिटिसिज्म की है, वो अच्छी से अच्छी एडवाइस भी कानों को उस टाइम अच्छी नहीं लगती है।
1: मेरी गुरु मुझे कहती थी, देश काल और पात्र देखकर बोलो बेटा, तुम जब चाहे जब एडवाइस दे रहे हो, पहले देश देखो कौन से देश में है, काल देखो समय इसका मूड कैसा है, इस समय इज ही रेडी टू एक्सेप्ट, या इस समय वो गुस्से में है या ठंडा है, फिर पात्र, पात्र मतलब
0: सामने वाला
1: की
0: बिल्कुल।
1: तो उनको बोलते थे कि पहले कुछ कोई तुम्हारे पास एडवाइस के लिए आता है, बहुत परेशान आता है, पहले पानी पिलाओ, फिर कुछ खिलाओ, फिर मीठा खिलाओ, उसको शांत करो, फिर उसकी बात सुनो, फिर देखो कि उस किस हालत में है सुनने लायक है, तो बाद में बोलो।
0: लेकिन इसमें भी जैसे आपने कहा कि चोट लेकर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर से एडवाइस नहीं चाहिए कि हमें गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। इवन दो दैट पर्सन कुड गिव मी द बेस्ट टिप दैट टाइम, और अगर मैं वो टिप को ले लूं, मेरे बहुत सारे काम अच्छे हो जाएंगे उसके बाद, मेरे को कभी चोट नहीं लगेगी उसके बाद, लेकिन वो उस टाइम ठीक नहीं है। उस टाइम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है चोट की हीलिंग, ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड विच मीन्स चोट की हीलिंग मीन्स अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कि तुमने जो किया, तुम्हारे से जो हो गया है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड ये बोलने में नहीं, ये अंदर सोचने में, ये थॉट में कि उस आत्मा ने जो भी किया वो अपने किसी सन्स, इवन इफ द चाइल्ड और द पर्सन कम्स एंड टेल्स यू द वर्स्ट थिंग यू हैव एवर हर्ड, द वर्स्ट, हम तो छोटी छोटी बातों में क्रिटिकल होते हैं ना, द वर्स्ट थिंग दैट वी एवर हर्ड, अगर हम वो सुनने के बाद भी ये स्थिति रख सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड कि आपने उस टाइम ऐसा किया, बिकॉज हर आत्मा अपने संस्कार और अपने कार्मिक अकाउंट लेकर आई है। कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण आत्मा वो करने के लिए एक यू नो एक फोर्सफुली, जैसे हम अपने कार्मिक अकाउंट के पास जाते हैं, मुझे जो एडवाइस देनी है वो आगे की चीज के लिए है कि इसके बाद, मतलब उसका नेक्स्ट कर्म। पास्ट कार्मिक अकाउंट ना उसके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में कैसे हो सकता है, वो तो उसके भी कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो उसका पास्ट कार्मिक अकाउंट है। हम सबके कंट्रोल में क्या है, नेक्स्ट कर्म, नेक्स्ट क्या करना है। हम क्रिटिकल किसके बारे में हो जाते हैं, जो पास्ट कर्म हो गया है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे ही हो, दिस इज पास्ट कर्म। तो वो क्रिटिसिज्म अगर हमने नहीं क्रिएट की, हमने अंडरस्टैंड किया, एम्पथाइज किया कि हाँ उसने ऐसा किया, तो हमने उसके दर्द को हील किया। जब वो पेन कंप्लीटली हील हो जाएगा, जो आपने कहा ना समय देखकर, वो पेन जब तक कंप्लीटली हील नहीं हो तब तक एडवाइस वर्क नहीं करेगी। तो पेन को हील करे, फिर समय आने पर जब वो पात्र खुद रेडी है एडवाइस लेने के लिए, तब अपनी राय बताई जाएगी।
1: बिल्कुल सही बात है सिस्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इससे कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड में।
0: थैंक यू, ओम शांति।
1: थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू।
2: इफ वी गेट हर्ट, लेट अस टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग द हर्ट। लेट अस नॉट ब्लेम अदर्स फॉर आवर पेन। वी कैनॉट लव पीपल होम वी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पेन। If we are not judgmental about the other person, and also do not hold them responsible for our emotions, then we are accepting them completely. When we accept them, we will get acceptance from them. This is respect and love. When someone shares their problem or mistakes with us, if we are judgmental, then we are rejecting them. Continuous rejection from us will stop them from sharing with us. Role of a parent or friend is to be a counselor, which means to be non-judgmental.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: आप स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ को चेक करो. जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, अर्थात जिनका 100% अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अटेंशन है, या केवल स्वयं को ही परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, उनका परमात्मा शिव बाप 100% जिम्मेवार है. और वो बच्चे बेफिक्र होकर पुरुषार्थ करें, ये ना सोचें कि अभी तक पुराने संस्कार आ रहे हैं या परिवर्तन नहीं हो रहा है. तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का अनायास और आश्चर्यजनक सूक्ष्म और स्थूल रीति परिवर्तन होगा. इसीलिए एक रस पुरुषार्थ करते रहो.

सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी

0: अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट सो देन इट्स माई चॉइस सो नाउ इट्स योर चॉइस आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो

0: अहो ऐकलत का रेडिओ पुणेरी।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
3: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खावो खास सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ रेडियो प्रोग्राम। तो आइए बात करते हैं आज रिश्तों के बारे में। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आज हमारे साथ पूजा है। इसके गाने जो है 50s एंड 60s के, वो भी अक्षर डी से शुरू होने वाले बहुत सारे गानों का कलेक्शन लेकर हमारे साथ हैं। तो पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अच्छा लगा आपने बहुत सारे 50s एंड 60s के कलेक्शन को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें आसानी होती है जब भी आप इस तरह के काम करते हैं, अच्छे कलेक्शन लेकर हमारे साथ आते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आइए, मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में एक कोई गजल आप जरूर याद कराइए, अनुराधा पौरवाल या किसी और का, जैसा भी आपको लगे, जो डी अक्षर से मिलता जुलता हो।
1: नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे वापस अपने शो में इनवाइट किया। और आज मैं जो अपना गाना लेके आई हूँ, वो पहला गाना है दोस्त मिलते हैं यहाँ दिल को दुखाने के लिए। ये गाना है अनुराधा जी ने बड़े ही सुंदर अपनी आवाज में बताया है। और उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा है कि जो हमारे दोस्त होते हैं वो मिल तो जाते हैं बड़े ही नसीबों से, और हम उन पे भरोसा भी करते हैं बहुत ज़्यादा, दिल से करते हैं, पर कोई वक्त या मोड़ ऐसा आता है कि जिसे हम सब कुछ अपना मान लेते हैं, उनकी उंगलियां जो होती है वो हमारे साइड उठ जाती है जब हम कभी मुसीबत में आते हैं। तो जरूरी नहीं है सारे दोस्त ही ऐसे हों, बस कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं पाते। तो ये गाना उनके लिए, ऐसे दोस्तों के लिए जो अपनी दोस्ती का मतलब नहीं समझ पाते। वो ये नहीं समझते कि दोस्त अगर हों तो कृष्ण और सुदामा जैसे हों, जिन्होंने ये नहीं देखा कि वो अमीर हैं या गरीब हैं। यहाँ दोस्ती तो दिल से की जाती है, जैसे कि कभी उसने भी हमें चाहत का पैगाम लिखा था, सब कुछ उसने अपना हमारे नाम लिखा था। सुना है आज उनको हमारे जिक्र से भी नफरत है, जिसने कभी अपने दिल पर हमारा नाम लिखा था।
2: दोस्त मिलते हैं यहाँ दिल को दुखाने के लिए।
0: तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गजल आपने याद किया है, दोस्त मिलते हैं यहाँ दिल को दुखाने के लिए। बहुत ही प्यारा सा सैड गजल है, आपको सुनाएंगे अभी अनुराधा पौरवाल की आवाज में, और इसे अलग ढंग से अनुराधा पौरवाल ने गाया है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में डी अक्षर वाला ये खूबसूरत गजल आपके नाम, आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। और पूजा हमारे साथ है, बहुत ही प्यारे कलेक्शन उनके पास है। तो आइए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ ज्यादा है आपसे, न सोचना कि भूल गए हम आपको, जिंदगी भर चाहेंगे ये वादा है आपसे। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीर आवाज। और पूजा बताइए, अब कौन सा गाना आपके पास है जो 50s और 60s का बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन में से एक है?
2: अब जो मेरा गाना है वो है दोस्ती के ऊपर है वो गाना, और उसकी बोल है दोस्त दोस्त ना रहा। ये जो गाना है ये तो आज के जो लोग हैं वो भी गाते हैं, बड़ा ही अच्छा गाना है और सबने सुना सुना है। ऐसा गाना है कि डायलॉग भी कोई कोई मारता है, दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा करके। तो ये गाने में इस तरह से भाव है कि जैसे कि अगर हम सब साथ में दोस्त होते हैं और हम यूं ही ऐसे बात करते करते कुछ हमें काम मनवाना होता है, अगर वो ना बोल देता है तो डायलॉग मारते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। और इस गाने में दोस्ती से ली गई है, तो सभी के दोस्त होते हैं। और दोस्ती के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी जैसे कि, धोखा ना देना कि तुझ पे एतबार बहुत है, ये दिल तेरी चाहत का तलबगार बहुत है, तेरी सुख ना दिखे तो दिखाई कुछ नहीं देता, हम क्या करें कि तुझसे हमें प्यार बहुत है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा।
1: ओके, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत गाना, मुकेश जी का गाया हुआ, संगीत शंकर जयकिशन का, संगम मूवी का ये गाना है, बहुत ही पॉपुलर मूवी थी ये, कहते हैं 1964 में रिलीज हुई थी और ये 4 से 5 घंटे का फिल्म बना था और इसमें 2 इंटरवल होते थे। तो आज तो शायद ऐसा सोच नहीं सकते हैं हम लोग कि एक फिल्म में 2 इंटरवल का, 1 इंटरवल भी नहीं होता है और इंटरवल भी बहुत कम 10 या 5 मिनट का होता है, और उस समय 5 या 10 मिनट का इंटरवल होता था, लेकिन 2 इंटरवल वाला ये फिल्म था संगम। बाद में इसको धीरे धीरे करके इसके कुछ कम किए गए टाइमिंग्स, कुछ शॉर्ट्स निकाल दिए गए, तो ऐसा ये इसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है, तो पूजा थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं इस गाने को, बहुत ही प्यारा सा सैड सॉन्ग आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। कहते हैं कुछ रिश्ते इस जहाँ में खास होते हैं, हवा के रुख से जिनके एहसास होते हैं। ये दिल की कोशिश नहीं तो और क्या है दोस्तों, दूर रहकर भी वो दिल के कितने पास होते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। पूजा, आप कौन सा एक मस्ती भरा बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाए, दो सैड सॉन्ग्स आपने सुनाए हैं।
2: ओके, तो सर अब जो मेरा अगला गाना है वो है डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। ये जो गाना है मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है इसमें, क्योंकि इस गाने में बारिश बारिश का सीन दिखाया गया, जो बारिश में एक अलग ही मजा होता है। हर किसी को, अगर किसी का नाचने का गाने का मन ना करे तो बारिश को देख के खुद का खुद मन उछलने लगता है और नाचने और गाने का मन करता है। जैसे कि शायरी बोल लेती हूँ थोड़ा सा। काटे नहीं कटते लंबे इंतजार के, नजरे बिछाए बैठे हैं रास्ते पे यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है उन्हें फलक से उतार के, लाया है उन्हें फलक से उतार के। थैंक यू सर।
3: डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा।
1: जी जी, बहुत ही प्यारा सा छलिया 1960 का ये गाना आपने याद कराया, अच्छा लगा हमें। कमर जलालाबादी का लिखा, मुकेश का गाया हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सवारा हुआ ये गीत। अभी आप सबके नाम बहुत ही प्यारा सा मस्ती भरा गीत। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने जो है आप सुनते हैं इसमें 50s एंड 60s के। कहते हैं जीवन के कुछ ऐसे मोड़ पे कभी कभी नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू आपने गिरा के हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया जिनको। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा, अब आपके पास कौन सा गाना है?
2: ओके सो सर, अब जो मेरा अगला गाना है वो है दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। इसके अंदर, इस गाने में दो बहुत ही प्यार करने वाले एक दूसरे से सच्चे दिल से और जिनकी आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ गई हो, लेकिन ये जो हमारा समाज है उन्हें ये सब करने नहीं देता और उन दोनों को अलग कर देता है। तो वो दो हंस थे जो एक दूसरे को इतनी बेपनाह मोहब्बत करते थे, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो गाने में यही है कि दो हंसों का जोड़ा अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है। ये यही सब इस गाने में बताया गया है सर। थैंक यू वेरी मच।
3: दो हंस

ओहो, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद दिलाया है 1961 का गंगा जमुना इस एल्बम से। शकील बजायू साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। आइए सुनते हैं इस गाने को, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज। पूजा, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, और आप कौन सा गीत आपके पास है?
1: दो सितारों का जमी पे है मिलन आज की रात, ये गाना शादी से रिलेटेड है। और इस गाने में जब एक पति और पत्नी की शादी हो जाती है तो उनके दिल में बहुत सारी उम्मीदें, मुस्कान और एक अलग सा ही चमक होती है, और उनमें लगन होती है आगे की ज़िंदगी को लेके। और वो जो उनके लिए जो दिन होता है वो बड़ा ही खास होता है वो दिन। जैसे कि फ़िलहाल में विराट कोहली जी और अनुष्का जी की शादी हुई है, तो अभी उनके लिए भी जो दिन है वो बहुत खास है। तो जैसे मैं थोड़ा सा बोला, सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, जितना देखोगे तुम्हें उतना ही प्यार।

0: दिल रहा है मचल। जब किसी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो उनकी भावनाएं जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं, उनका मन बेचैन रहता है और वो इस दुनिया में नहीं है ऐसा उन्हें लगता है, और उनका जो दिल है वो बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है, और जो उनका मन होता है मचलने लगता है, और वो जो प्यार करने वाले हैं वो प्यार की राहों में आगे बढ़ते हैं और प्रीत की छांव ढूंढते हैं। जैसे कि काश ख्वाहिशें पूरी हो इबादत के बगैर, वो आके गले लगा ले मेरी इजाजत के बगैर। थैंक यू।
1: दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल। दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल।
2: ओके ओके, दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल। क्या बात है, बेदर्द जमाना क्या जाने। इस मूवी का, ये 1959 का, भरत व्यास साहब का लिखा हुआ, लता रफी का गाया हुआ, कल्याण जी आनंद जी का गाना आपने याद कराया है। तो चलिए पूजा, हम सीधे गाने की ओर चलते हैं। रेडियो पुनेरी आवाज, खाबो खा सफर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज।

0: चाहिए आगे बढ़ते हैं खाबो खास सफर इस कार्यक्रम को आप सुना है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुना है। कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते रिश्ता निभाए करते हैं। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा चार लाइनें आपको हमने सुनाया है। आशा करता हूँ पूजा आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा गाना आपके पिटारे में है जो डी अक्षर से शुरू होता है?
1: ओके सर, अब जो मेरा गाना है वो है दुखी मन मेरा सुन मेरा कहना। ये गाना बहुत ही अच्छा, और इस गाने में अगर कोई भी अगर इसे गाता है तो दिल से ही गाएगा, और इसमें इस गाने को बड़े ही प्यार से और मन से गाया हुआ है, और इसमें बहुत ही सैडनेस सा फील है कि जब हमारा मन दुखी होता है तो कुछ सोच नहीं पाता। अगर हमारा मन यही चाहता है कि हम किसी अच्छी जगह पे या फिर हमें जो पसंद हो हम वही करें, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ या हालात ऐसे आ जाते हैं कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, जहाँ हम रहना चाहते हैं वहाँ नहीं रह पाते। फिर जैसे कि हाँ, शायरी से बोल देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। आप जब तक रहेंगे आँखों में नज़ारा बनकर, रोज आएंगे मेरी दुनिया में उजाला बनकर। आप जब तक रहेंगे आँखों में नज़ारा बनकर, रोज आएंगे मेरी दुनिया में उजाला बनकर। आगे का सुनिएगा सर, बहुत अच्छी लाइन है। हम तो बने ही थे तबाह होने के लिए, हम तो बने ही थे तबाह होने के लिए, तेरा छोड़ जाना तो महज बहाना बन गया था।

हो, फंतूस 1956 का ये गाना बहुत ही प्यारा सा, सचिन देव बर्मन का संगीत से सवारा हुआ, किशोर दा की आवाज में साई लुधियानवी का लिखा। ओके, बहुत ही प्यारा सा गाना है। तो आइए सीधे ही इस गाने को सुनते हैं और कहीं ना कहीं ये गाना आपके मन को, आपके दिल को छू जाएगा। सुन के देखिए, दिल से खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, अब आपके पास कौन सा एक नया गीत है जो डी अक्षर से शुरू होता है?
1: ओके सर, अब जो मेरा गाना है वो है दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मन की राय ले ली जाए। अगर हम अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लें तो ऐसे तो नहीं है कि वो हमारे पास आएगा और बोलेगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो जब भी हम उससे दुश्मनी भी करें या दोस्ती भी करें तो उससे पहले एक बार तो हम उससे पूछ ही लें या फिर पूछ सकते हैं कि आपको हमारी दोस्ती या दुश्मनी मंजूर है कि नहीं। और दोस्त तो हमेशा दोस्त नहीं होते, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले गाने में बोला था कि कभी कभी उंगलियाँ उठ जाती हैं। तो अगर वो हमारा दोस्त ही है तो हमें एक बार उसे राय ले लेनी चाहिए, और दुश्मन है तो फिर तो पूछने की बात ही नहीं है। जैसे कि यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, खिलते चमन में एक गुल हमारा हो, जब याद करें आप अपने दिल दिल से दोस्त को, उन नामों में एक नाम बस हमारा हो।

0: दोस्ती जब किसी से की जाए, बहुत ही प्यारा सा गीत रहा तेंदोरी का, जगजीत सिंह का गाया हुआ ये एक और बहुत ही प्यारा सा गजल आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेर आवाज 107.8 FM पर खाबोखा सफर, और कहते हैं वो दिल नहीं रहे वो जज्बे नहीं रहे, अपने भी इस दौर में अपने नहीं रहे, हालात जिंदगी पर गौर किया तो पाया, रिश्ते जुबा के रहे दिल के नहीं रहे। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, तो पूजा अब कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को?
1: ओके सो सर, फाइनली अभी मैं अपने आखिरी गाने पे पहुंची हूँ, तो जो मेरा आखिरी गाना है उस गाने की बोल है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, ये जो गाना है आप सोच सकते हो, ये जो गाना है दूर कोई गाए, मतलब भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है ये सॉन्ग, और इस गाने में भगवान श्री कृष्ण जी को छलिया कहा गया है, जो हमेशा गोपियों को छलते हैं, और इस गाने में गोपी लोगों ने ये उनके जो भाव हैं उस समय के वो बताया गया है, कि जो भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मुरली बजाते हैं तो सभी उसमें उनकी मुरली की धुन में दीवानी हो जाती हैं, और वो फिर सोचती है अपने मन में कि अगर कान्हा जी की मुरली नहीं बाजेगी तो फिर उनका क्या होगा, मतलब छलिया, कान्हा जी के बिना उनकी, अगर कान्हा जी नहीं होंगे तो उनकी मुरली भी नहीं बजेगी, और मुरली नहीं बजेगी तो फिर गोपियों का क्या होगा।

ओके, बैजू बावरा का, ठीक है, 1952 का ये गाना है, बहुत ही प्यारा सा, शकील बदायूं का लिखा, लता रफी का गाया और नौशाद साहब का संगीत से सजा गाना है। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और आज के लिए जो भी गाने हमने आपको सुनाए 50s एंड 60s के, पूजा ने बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आपको सुनाए, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे गाने। तो इसी के साथ मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत, कहते हैं न छुपाना कोई बात दिल में हो अगर, रखना थोड़ा भरोसा तुम हम पर, हम निभाएंगे हर रिश्ते को इस कदर कि आप न भूल पाएंगे हमें जिंदगी पर। इसी के साथ मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार, सलाम, नमस्ते, खम्मा गनीसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके

ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में, जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं करियर ऑप्शन में और आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं और उसमें ए टू जेड बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये करियर चुनने से आपके लिए क्या बेनिफिट होता है, आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं और इसमें कितनी पैकेजेस आपको मिलती है शुरुआत में और बाद में। इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। तो आज जीवन कौशल इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं वेब डेवलपर के रूप में करियर बनाएंगे। तो वेब डेवलपर क्या होता है, कैसे इसको कर सकते हैं और क्या क्या इसमें स्किल्स की जरूरत पड़ती है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। तो आज के समय में डिजिटल युग में वेब डेवलपर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्थायी जीवन कौशल है, करियर का विकल्प है और इंटरनेट की पहुंच गांव-गांव तक फैल रही है और ये व्यवसाय संस्था, स्टार्टअप, शिक्षा क्षेत्र या सरकारी विभाग को अपने कामकाज और सेवाओं को ऑनलाइन लाने के लिए वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे में वेब डेवलपर की जरूरत पड़ती है, इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक कौशल है जो वैश्विक स्तर पर अनगिनत अवसर प्रदान करता है। तो साथियों, आज हम लोग वेब डेवलपर के करियर, कौशल, नौकरी की संभावनाएं या फिर इसको सीखने की राह और भविष्य के अवसरों की विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। और बातें हो रही वेब डेवलपमेंट के बारे में, वेब डेवलपर के बारे में। जी हाँ, वेब डेवलपमेंट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। वेब डेवलपमेंट ये एक प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की योजना, डिजाइन, कोडिंग और मेंटेनेंस जो है वो शामिल होता है। इसके मुख्य तीन हिस्से में अगर देखा जाए, तीन हिस्से में अगर देख लें तो एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और तीसरा होता है फुल स्टॉक डेवलपमेंट। तो सबसे पहला आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में अगर बात करूं तो फ्रंट एंड का वो हिस्सा है जिसे यूजर वेबसाइट पर देखते हैं और जिसके साथ वे इंटर एक्ट करते हैं, यानी हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसके अंतर्गत ये टेक्निक सीखनी होती है, जैसे कि आप कंप्यूटर लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें, जब वेब की बात आती है तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको, जो आप वेबसाइट्स में यूज़ होता है। CSS कास्ट कैडिंग स्टाइल शीट्स होते हैं। तीसरी बात आती है जावास्क्रिप्ट और चौथा आता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, रिएक्ट, एंगुलर, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है UI UX नॉलेज। फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट को सुंदर, तेज और मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। और आप अगर वेब डेवलपर बनना ही चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल्स है जिसे आपको सीखना है, और आप अपने वेब डेवलपिंग कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको सिखाई भी जाती हैं। तो बात करते हैं एक और बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ पर हमने बातें की थी अभी थोड़ी देर पहले। ये होता है डेवलपमेंट वेबसाइट की सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप जिस भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उसके साथ में एक सर्वर जुड़ा हो, तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होता है बैक एंड डेवलपमेंट में। इसके अंतर्गत ये टेक्निक आती है, जैसे कि

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोड, पीएचपी, पाइथन, जावा, रूबी। दूसरा होता है डाटाबेस, MySQL, MySQL और MongoDB, PostgreSQL, SQL, API डेवलपमेंट, सर्वर मैनेजमेंट। तो इस तरह की जो लैंग्वेज प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें आपको बैकएंड में ज़रूरत पड़ते हैं, जो बैकएंड ऑफिसर होते हैं। बैकएंड डेवलपर यूज़र से प्राप्त डेटा को सुरक्षित तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं और पूरी वेबसाइट को काम करने योग्य भी बनाते हैं। जैसे समझो आप अपना वेबसाइट बना लिया और उसमें कुछ प्रोडक्ट आपने दे दिया और लोग आते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, उसका विवरण होता है, तो वो सारी चीज़ें अपने वेबसाइट पर डाल के रखी है। लेकिन वेबसाइट एक स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे वो स्क्रीन पे जो चीज़ें आप डाल रहे हो उसे सेव करके रखना और उसे उसी तरह से दिखाना जैसा आप चाहते हैं, तो वो सारा सिस्टम जो है वो बैकएंड सर्वर में सेव हो जाता है, डाटाबेस में सेव होता है। तो इसको कहते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। तो ये सर्वर से ही आपकी वेबसाइट कनेक्ट होती है, सर्वर में जो डाटा होगा वो वेबसाइट पे फ्लैश होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। चलिए एक और बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में विशेषज्ञ होते हैं। ये आज के समय में सबसे अधिक मांग वाला रोल है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा अच्छी तरह से जानकार है तो आपके लिए आज के समय में काफ़ी आपका मांग है, क्योंकि कंपनियों को ऐसा प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो पूरी वेबसाइट को अकेले संभाल सके। जब अकेले संभालना हो तो आपको फ्रंट एंड बैक एंड वाली दोनों बातें आपके जहन में आनी चाहिए, तब आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं वेब डेवलपर की और क्या क्या कौशल है जिसको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ टेक्निकल शब्द आपको मैं बताऊंगा जो आपके कोर्स में ज़रूर आती है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपर के बारे में। जी हाँ, वेब डेवलपर की क्या क्या मेन काम होते हैं वो हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं वेब डेवलपर बनने के लिए आवश्यक जो टेक्निक्स होती, कौशल होती, उसके बारे में। एक तो सबसे पहले आपको HTML, CSS, JavaScript की मजबूत समझ होनी चाहिए, इसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए। कम से कम एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आपको पूरी तरह से आनी चाहिए और एक बैकएंड भाषा भी आपको समझ में आना चाहिए। डाटाबेस का ज्ञान हो, गिट और गिटहब का उपयोग कैसे करें, API कैसे काम करती है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये सारी बातें आपके अच्छी तरह से आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ में ये हो गए हार्ड स्किल। इसके बाद सॉफ्ट स्किल में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, क्रिएटिव थिंकिंग, समय प्रबंधन, टीम के साथ काम करने की क्षमता और निरंतर सीखने की इच्छा।

क्योंकि यहाँ पर सब चीजें जो है ये निरंतर इसमें नवीनता आती रहती है, चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ते जाता है। पहले चीजें बड़ी हुआ करती थी, अब छोटी बहुत कॉम्पैक्ट में आने लगे हैं। इवन आप जो है कंप्यूटर को आप ले भी जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप है तो उसको लेकर जाते हैं तो आपका काम रुकता नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें जैसे बदलती जाती है, वैसे आपको भी इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करने में आपको सक्षमता हासिल करनी है। तो आइए, वेब डेवलपमेंट क्यों चुने, इसके फायदे क्या क्या है। एक तो हाई डिमांड पर है, भारत में और विदेश में भी वेब डेवलपर की भारी मांग होती है। हर संस्था को वेबसाइट की जरूरत पड़ती है और वेबसाइट को रन भी करना पड़ता है और उसके द्वारा लोगों को जोड़ना भी पड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत ही हाई प्रोफाइल वाला जॉब है, हाई डिमांड वाला। दूसरा है, एक अच्छा वेतन भी यहाँ पर मिलता है। एक फ्रेशर वेब डेवलपर भी 20 से 40 हजार रुपये मासिक कमा सकता है, अनुभव के बाद तो लाखों तक पहुँच सकते हैं आप। तीसरा है, फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम विकल्प भी इसमें है। आप घर बैठे दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। चौथा है, क्रिएटिव और इनोवेटिव करियर है। हर प्रोजेक्ट नया होता है जिससे सीखने का अवसर लगातार आपको मिलता रहता है। पांचवी बात, यहाँ पर वैश्विक अवसर होता है। वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आपकी कीमत बढ़ाती है। तो इसीलिए ये चीज जो है रुकने वाली नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली है और आपके लिए एक अच्छा विकल्प भी है। अगर आप रोज ड्यूटी पे जाना आना अच्छा नहीं लगता है तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है क्रिएटिव स्किल है जिसको आप अच्छे से सीख के अपने घर से ही इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है काम है, आपके अनुसार इसको बाइंडिंग कर सकते हैं आप काम पे जाना हो तो काम पे जा सकते हैं, नहीं तो घर बैठे भी आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं या दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगा, सीखने की राह हमेशा आपकी खुली होनी चाहिए। स्टेप ए, बेसिक से शुरू कर सकते हैं आप, HTML CSS के बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखे और फिर सादी वेबसाइट बनाए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं, सादी वेबसाइट। स्टेप दूसरा है, एडवांस जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क की तरफ काम करें, DOM ES6 फीचर सीखे, React.js या फिर एंगुलर में महारत हासिल करें। इसके बाद धीरे धीरे जब इन चीज़ों को आप सीखते हैं तो फिर आगे तीसरा स्टेप पे आप आ सकते हैं, बैकएंड सीखे, Node.js, Express.js या फिर SQL या MongoDB, ये भी एक बहुत बढ़िया बैकएंड के स्किल्स होते हैं जिसको आपको सीखना है। और चौथा है, गिट या GitHub सीखे, और फिर पांचवा है, प्रोजेक्ट बनाएं जैसे कि पर्सनल पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स वेबसाइट, लॉगिन प्लेटफॉर्म या चैट ऐप, या फिर इन सभी चीजों को करते करते आप जो है इंटर्नशिप या फ्रीलांसर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, जहां पर आप कम पैसे में सीखने के हिसाब से भी और आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से भी ये आप जरूर करें, जिससे आपकी जो है आय बढ़ेगी और आपको आइडिया भी आएगी और धीरे धीरे आप इनको प्रैक्टिकल में कैसे ये चीजें संभव है वो चीजें आपके अनुभव बढ़ाएगा, और एक बार अनुभव बढ़ जाता है तो आपका पे स्केल भी दुगना हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेब डेवलपिंग के बारे में। वेब डेवलपिंग करियर कैसे बना सकते हैं, इस करियर में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें हमने आपसे शेयर की। साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जितना आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना आप अच्छे से करेंगे, चीज़ें उतनी आपके पास आएंगी। वेब डेवलपर्स के लिए करियर विकल्प ये है कि एक वेब डेवलपर के रूप में आप कई भूमिकाओं में काम कर सकते हैं। एक है फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, तीसरा है फुल स्टैक डेवलपर, और फिर UI/UX डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, वर्डप्रेस डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मोबाइल ऐप डेवलपर, रिएक्ट नेटिव, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा जॉब स्किल्स है। दूसरी बात, यहाँ जैसे मैंने सैलरी के बारे में बताया, अगर विस्तार से बता दे आपको, तो यहाँ पर भारत में वेब डेवलपर का जो स्केल है वो है 20,000 से 40,000 महीना फ्रेशर। जैसे आप कोर्स कर लिया और आपको अभी आप सीख ही रहे हैं, तो अनुभव बढ़ाने के लिए फ्रेशर है आप, तो 20,000 से 40,000 महीना आप कमा सकते हैं। 2 या 3 साल का आपका अनुभव हो जाता है तो आप सीधा जो है डबल इनकम आपका शुरू हो जाता है, 50,000 to 80,000, 50,000 से 80,000 तक आपको महीना मिलता है। अगर आप धीरे धीरे 5 साल का अनुभव आपके पास है तो 1,00,000 से 2.5 लाख महीना आपको पेमेंट मिलता है। और फिर उसके बाद तो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। 5 साल के बाद जो है आप अपना ही एक सेटअप बना के फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं, जिसमें आप 10,00,000 से 20,00,000 तक का भी काम कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कितना आप कर सकते हैं। और फिर अगर आप विदेश में जाते हो तो फिर पेमेंट का आपका कई गुना बढ़ जाता है। US और यूरोप में वेतन इससे कई गुना ज़्यादा होगा ही, और ये भी पेमेंट मिलेगा तो इंडियन रुपीस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना आप कमा सकते हैं इसमें। और भविष्य में वेब डेवलपमेंट का महत्व क्या है, आज जो मांग है वो आगे भी ये रहने वाली है। भविष्य में AI, LOT, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा पर आधारित होगा, और इन सभी को वेब प्लेटफॉर्म पर चलाने की जरूरत होगी। वेब डेवलपर की मांग आने वाले 20 वर्षों में लगातार बढ़ने वाली है। AI आने के बाद भी वेब डेवलपर की जरूरत कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि AI टूल्स को चलाने के लिए भी वेबसाइट और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी चीज़ है तो उसको वेबसाइट पे चलाना ही है, तो वेबसाइट बनाने वालों का कभी भी रुकावट नहीं होता। और वेब डेवलपर बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर इसके बारे में बात करूं तो आप अपनी वेब डेवलपमेंट एजेंसी खोल सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन कोर्स चला सकते हैं, तीसरा यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, चौथा कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, और 5वां NGO, स्कूल, कॉलेज, स्टार्टअप सब के लिए डिजिटल सोल्यूशन आप दे सकते हैं। तो ये एक खास बात थी जो हमने आपको बताई। वेब डेवलपमेंट एक सुरक्षित, स्थायी, प्रगतिशील और उच्च आय वाला करियर है। आप चाहे छोटे शहर में रहते हो या बड़े महानगर में, यदि आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट है तो आप वेब डेवलपर बनकर अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। ये करियर सीखने वालों के लिए खुला है, चाहे आपकी उम्र 15 साल हो या फिर 45 साल। निरंतर सीखते रहें, प्रोजेक्ट बनाते रहे, और धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस जीवन कौशल कार्यक्रम में हमने बातें की वेब डेवलपमेंट के बारे में, वेब डेवलपर के बारे में। आशा करूंगा आपको हर बात समझ में आ गई होगी और आप इस कोर्स को आसानी से सीख सकते कर सकते हैं। किसी भी अच्छे कंप्यूटर जो है कॉलेज से आप इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, और वेबसाइट डेवलपर का जो अच्छा जो विकल्प है करियर के लिए है, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करके प्रैक्टिस करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता और पेड़ों का रंग लाल, पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

अच्छा सोचो, अरे सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा। तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई, चाय पीते पीते अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: बाजार, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय वेदांत, दृष्टि, आदित्य प्रकाश, पंकज, आकाश, सैंडी, यश, उन्नति.
2: आलू 10 किलो, प्याज 10 किलो, आलू
3: टमाटर 5 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए किलो, टमाटर टमाटर टमाटर,
2: मिर्ची 5 के, मिर्ची 5 के,
3: बैगन लो, बैगन बैगन बैगन, करेले करेले
4: 10 रुपए किलो लेना दे ले ब्रो. ना ना, 5 रुपए नहीं आए भैया.
5: भैया करेले कितने रुपए दे रही हो?
2: 20 रुपए.
6: मैं और मम्मी आकर हर मंगलवार को सारे हफ्ते की सब्जी ले लेते हैं. यहाँ ताजी भी है और सस्ती भी.
7: मेरी मम्मी आती तो सब्जी के लिए ही है, पर मेरी मौज हो जाती है. कभी कुछ ले लेता हूँ तो कभी कुछ.
8: मैं तो यूं ही बाजार की रौनक देखने के लिए आ जाता हूँ. कुछ खरीदना तो नहीं होता, बस सैर करके और नई नई चीजें देख के चला जाता हूँ.
9: ऐसा नया क्या है?
10: है क्यों नहीं, और कुछ नहीं तो वहाँ देखो ना, झाड़ू ही कितने प्रकार के हैं. एक फर्श साफ करने वाला, एक जाले साफ करने वाला, एक लंबे हैंडल वाला, एक प्लास्टिक के तीलों वाला.
11: हाँ, सबसे ज्यादा मजे तो खिलौना की दुकान पर आते हैं. हर बार उस भाई के पास कुछ नया होता है.
12: ये सब तो ठीक है, क्या तुम सबने देखा है, ऐसी सब्जियाँ भी इन बाजारों में मिलने लगी है जो विदेशी समझी जाती थी. ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और कई तरह के नए नए फल.
1: ऐसा लगता है अब ये भी अपने देश में ही पैदा कर ली जाती होंगी, वरना बाहर के देशों से मंगा कर बेचने से तो ये बहुत महंगी मिलेंगी.
13: भारत में सब कुछ हो सकता है.
6: वो देखो, वहाँ मसालों के ढेर लगे हुए हैं.
7: जब भी मैं मसाले देखता हूँ तो याद आता है कि अंग्रेज इन्हीं से आकर्षित होकर हमारे देश में व्यापारी बनकर आए थे,
10: खासकर काले मिर्च और इलायची.
11: ये हमारे दक्षिण भारत में केरला में कितने उगते हैं.
8: और इन्हीं के लालच में वे आए और राजा बनकर धीरे धीरे लगभग 200 साल तक राज कर गए.
9: 200 से भी ज्यादा.
10: कितनी मुश्किल से हमें हमारी स्वतंत्रता हासिल हुई.
1: असल में एक और बात भी तो हुई थी तब.
11: क्या?
1: इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन पश्चिमी देशों में. फिर इन्हें हमारे देश से कच्चा माल चाहिए था अपनी फैक्ट्रियों के लिए, और बाजार भी उन्हें बेचने के लिए.
10: यही पढ़ रहे हैं हम इतिहास में आजकल.
1: और फिर देश तो आजाद हो गया, पर हमारे सोचने का ढंग काफी देर तक जैसे गुलाम ही रहा. जैसे अंग्रेजी को अधिक सम्मान देना या पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित रहना.
6: एक और बात है दीदी, आजकल जो दिख रहा है ना, सब लोग दिखावा बहुत कर रहे हैं.
8: वो भी और कंप्यूटर और इंटरनेट से सारा संसार एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है,
9: और हम सब कुछ ज्यादा ही.
1: असल में अब सबकी नौकरियां अच्छी हो गई हैं, और अच्छे वेतन मिलने से पैसा लोगों के पास खुला हो गया है.
10: पापा कहते हैं शिक्षा स्तर अधिक ऊंचा नहीं हुआ है, जिससे लोग सही मायने में शिक्षित नहीं है, खास करके अपने संस्कारों में केवल पढ़े लिखे हैं.
11: फिर धन आने से दिखावे में पड़ गए हैं. अब कोई प्राइवेट त्योहार भी विज्ञापनों से कुछ और बन जाता है.
7: मतलब
11: कि दिखावे का एक साधन.
12: तुम्हारा मतलब है जैसे राखी पर पहले घर में भाई बहन आराम से मिलकर राखी बांध लेते थे, और माँ कुछ अच्छा सा बनाकर हले से मुंह मीठा करा देती थी.
6: आजकल तो कभी किसी चॉकलेट का विज्ञापन आता है, या गहनों का, या कपड़ों का, किसी मिठाई का, या फिर और किसी चीज का, जैसे प्रलोभन सा देते रहते हैं.
7: सब तरफ ड्रामा ज्यादा हो गया है.
8: हर त्योहार पर उन्हें दिखावे और अधिक खर्चा करके मनाने के लिए लोगों को उकसाया जाता है, जिससे वो भी ज्यादा खर्चा करें और अधिक चीजें खरीदें.
9: हाँ, ऐसा लगता है कि विज्ञापन नई चीजें खरीदने को उकसा रहे हैं, जबकि पुरानी बिल्कुल ठीक है अभी।
10: ये ज्यादातर फोन के लिए या कंप्यूटर के लिए या फिर फैशन के क्षेत्र में है।
11: हाँ, मेरे बड़े भाई को देखो, हर बार नए कपड़े खरीदता रहता है, कहता है पुरानों का फैशन चला गया।
12: घर से कितनी ही नई नई चीजें इसलिए फेंक देते हैं कि ये नया मॉडल बाजार में आ गया है।
6: और भाई ये सब क्या है, फ्रेंडशिप डे, मदर डे, फादर डे?
7: ये सब कार्ड की बिक्रिया बढ़ाने के तरीके हैं।
8: कुछ लोगों का व्यापार बढ़ता है और कुछ लोगों की टेंशन, जो खर्चा नहीं कर सकते बेचारे यूं ही परेशान हो जाते हैं।
9: उन्हें लगता है वो ये सब दिन नहीं मनाएंगे तो लोग उन्हें पिछड़ा कहेंगे।
10: तो खाने पीने में भी तो पहले भूख लगने पर माँ पर घर पर ही आलू के चिप्स बना देती थी। अब पैकेट के चिप्स इतने महंगे भी हैं और उनमें कितना नमक और प्रिजर्वेटिव होता है।
11: मेरी मम्मी तो सब अचार, चटनियाँ, जैम ये सब घर बनाती है।
9: मेरी भी।
11: अच्छा बस,
9: कितनी अच्छी बात है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है
12: और मोटापा भी नहीं आता।
6: और तो और घड़ी जैसी चीज जो हर एक को सिर्फ एक ही चाहिए होती है, उसके लिए भी कहते हैं हफ्ते के हर एक दिन के लिए एक नई होनी चाहिए।
7: कोई भी जन्मदिन हो या शादी या फिर कोई भी सालगिरह हो, महंगे उपहारों को देने की बात विज्ञापनों द्वारा ही तो लोगों तक पहुंचाई जाती है।
8: अच्छा, हमारा ये जो कल्चर है ना, मीठे से किसी अच्छे काम की शुरुआत होनी चाहिए, उस पर भी कई विज्ञापन द्वारा चॉकलेट बेची जा रही है।
9: हाँ, क्यों, गुड़ के टुकड़े से काम नहीं चलता, या चीनी ठीक नहीं, या माँ का हलवा ठीक नहीं? ये सब ठीक तो है दीदी, पर ये बाजार के नियमों के अनुसार बिकाऊ नहीं, इनसे कोई कमाई नहीं, इसीलिए कोई विज्ञापन नहीं।
8: चलो दीदी,
10: वहाँ छोले भटूरे बिक रहे हैं, खाते हैं।
9: ऐसे तो मैं देखती हूँ कि वह छोले भटूरे वाला काफी साफ सफाई का ध्यान रखता है, पर आजकल बरसात के दिन हैं।
11: हाँ दीदी, कितना भी ध्यान रखें कीटाणु आ ही जाते हैं।
12: अच्छा हम घर पर ही खाएं।
9: कल तुम सब मेरे घर आना, आज ही मैदे को दही से गूंद दूंगी और चने भिगा दूंगी, कल मजे से सब छोले भटूरे खाएंगे।
6: मैं मम्मी से हलवा बनवा लाऊंगी।
7: मैं सलाद कटवा लाऊंगा।
8: मेरी मम्मी ने आम का अचार डाला है, मैं वो लाऊंगा।
9: मेरी मम्मी काशी फल की सब्जी बनाती है, मैं वो लाऊंगा।
7: और मैं
9: बस, एक ही दिन में कितना खाओगे?
10: अच्छा मैं बस दही भल्ले।
11: मैं छाछ।
12: मैं
6: बस। ठीक है, अच्छा हुआ दीदी आपने आज ही इसका विज्ञापन कर दिया हमारे ग्रुप में।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दोस्तों, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: now I'm being assertive. So internal stability means, you know, no trace of anger. उसको जब पूरा खत्म होगा, internally बिल्कुल calm and in control है, लेकिन फिर भी आपको discipline करना, you know. And assertive जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, you know, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप full in control है. Anger में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
2: अला अला अला.

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद घ्या
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में हमने ये जाना कि हम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, रिलेशनशिप्स को एक नए नजरिए से देखा और फिर कई रोल्स जो हम हर रोज अदा करते हैं उनको कैसे हम हर बार चेंज कर सकते हैं वो हमारे अपने हाथ में है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और बात करते हैं रिसोर्सेस की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने तीन पड़ाव तो तय कर लिए इस पूरी श्रृंखला में और एक नई नजर से जो है हम पूरे ना सिर्फ स्व को बल्कि अब जब अपने आप को मैनेज करते हुए हमने अपने रिलेशनशिप्स में और बाहर देखा तो काफी सारे बदलाव दिखते हैं। आपने बात की थी कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं रिसोर्सेस यानी संसाधन, पर वो रिसोर्सेस क्या है?
1: ट्रू, बिकॉज ईच वन ऑफ अस, हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। यू नो, जो हम कई बार अपने आप को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और हम कहते हैं इनके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, वट एवर, एक्चुअली हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। अंतर किस में आ रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करते हैं, एंड दैट विल ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट इन माय लाइफ, कि मेरे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, लेकिन आपका उसको यूज करने का तरीका और मेरा उसको यूज करने का तरीका वो डिफरेंट हो जाएगा। अब हर एक के पास जो रिसोर्सेज हैं सेल्फ के, वो तीन लेवल पर होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, थ्री रिसोर्सेज जो हम सबके पास है। सो लेट्स से फिजिकल रिसोर्सेज, आज फिजिकल वेलबींग की जितनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, मतलब शायद पहले इतनी नहीं, अवेयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ, आप मैगजीन्स देख लो, न्यूज़पेपर, आई मीन एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वेलबींग, एंड येट एट द सेम टाइम इलनेस
0: बहुत ज्यादा है, वी आर ऑल फिजिकली इल, कोई ना कोई बीमारी कहीं ना कहीं,
1: समवेयर कहीं छोटी सी कुछ तो फिर भी एक यू नो कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज वी सॉ अर्लियर वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वहां शक्ति अपने आप जाएगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जबकि हम सब अपने शारीरिक स्वास्थ्य का इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, इतने कॉन्शियस हो गए हैं, फिर भी हेल्थ क्यों नहीं आ रही है, फिर भी हम क्यों हमारी बीमारी की यू नो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है जबकि हम ध्यान ज्यादा रख रहे हैं। पहले इट वॉज नॉट देयर, पीपल वर नॉट इवन सो अवेयर ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा डिस्कनेक्ट है, और वो सिंपल जो डिस्कनेक्ट है वो ये कि पहली बात मैं कौन हूं, इसी का जो आंसर था। सो व्हेन आई सॉ दैट आई एम द बॉडी, क्योंकि अभी तक तो हम इसी इल्यूजन में चल रहे थे कि मैं शरीर हूं, तो मैं अगर शरीर हूं तो मेरी जो फीलिंग्स हैं,

0: जो हम कहते हैं फीलिंग्स कौन सी आपकी, तो मेरी जो प्राइमरी फीलिंग्स है, मुख्य फीलिंग्स हैं जो मुझे अनुभव होती है, वो कौन सी होती थी?
1: शरीर को लेके या मुझे लेके कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट?
0: हाँ, तो वो कौन सी फीलिंग होती है? यू नो फीलिंग्स, जैसे आई वॉज डूइंग अ वर्कशॉप इन अ कंपनी एंड आई जस्ट आस्क्ड देम कि फीलिंग कहाँ क्रिएट होती है.
1: हार्ट
0: ना, उन्होंने कहा फीलिंग तो
1: बॉडी में होती है,
0: पूरी बॉडी में होती है.
1: व्हेन यू टच, यू नो दिस इज अ फीलिंग.
0: दिस इज अ फीलिंग. सी, सो मेजोरिटी, एंड वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दैट कि हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे कि फीलिंग कहाँ क्रिएट होती है. दे सेड कहाँ क्या क्रिएट होती है, पूरे शरीर में तो क्रिएट होती है, देखो हर जगह फीलिंग क्रिएट हो रही है. व्हाई? क्योंकि अवेयरनेस इतनी बॉडी के ऊपर है कि मैं ये शरीर हूं, तो जो स्टिम्युलेशंस, जो ये सेंसेशंस मुझे शरीर के थ्रू मिल रहे हैं, मैंने उन्हीं को अपनी प्राइमरी फीलिंग देख लिया. मैं सकल लेवल पर तो गई नहीं, तो एक थॉट के साथ चले कि मैं शरीर हूं, तो शरीर के द्वारा, इन पांच इंद्रियों के द्वारा जो जो सेंसेशंस आती हैं, यू नो आर फाइव सेंस ऑर्गन्स, तो माय साइट, माय ईयर्स, स्मेल, माय माउथ एंड टच, ये पांच कर्म इंद्रियों द्वारा जो सेंसेशंस आती हैं, वो मेरी फीलिंग्स, माय प्राइमरी फिजिकल फीलिंग्स जिसको हम बोलते हैं, वो बनती गई सेंसेशंस. और फिर मैं शरीर हूँ, ये फीलिंग्स हैं, तो इनसे जो मुझे फील होगा, ये मुझे खुशी देगा. कुछ अच्छा देखने से, कुछ अच्छा सुनने से मुझे खुशी मिलेगी, कुछ अच्छा खाने से मुझे खुशी मिलेगी. अरोमा, अरोमा थेरेपी, कि आपको वो अच्छी सुगंध मिलेगी तो खुशी क्रिएट होगी. यस, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, क्योंकि स्टिम्युलेंट तो है, तो वो स्टिम्युलेंट बाहर से आ रहा है, वो एक सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा कि ये मेरी प्राइमरी फीलिंग है, मेरा नेक्स्ट कंक्लूजन ये था कि खुशी कहाँ से आती है? बाहर से.
1: तो हेल्थ भी यहीं से आएगी, यू नो, हम जो सारे अगर
0: एवरीथिंग वॉज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन कि आउटसाइड इन, तो इसलिए हम खुशी के लिए, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर एक का क्या था, क्या चाहिए? खुशी चाहिए. बट बिकॉज आई थॉट आई एम द बॉडी एंड देन आई रियलाइज्ड कि स्टिम्युलेंट बाहर से है, सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एवरीवेयर आउटसाइड. एंड फिर मैं कहती हूँ खुशी के लिए मैं ये करती हूँ, खुशी के लिए मैं ये खाती हूँ, खुशी के लिए मैं ये सुनती हूँ, खुशी के लिए मैं नए नए कपड़े खरीदती हूँ. एवरीथिंग वॉज वर्किंग दिस वे. तो वी स्टार्टेड बिकमिंग वेरी डिपेंडेंट.
1: लेकिन वो दे तो रही थी खुशी,
0: स्टिम्युलेशन. यस, डेफिनेटली.
1: कुछ देर के लिए, चाहे वो नया कपड़ा था, चाहे वो कुछ जो मैं खाना चाहती हूँ, जो मैं देखना चाहती हूँ, वो दे तो रहा
0: है. स्टिम्युलेंट तो है, इसीलिए हम उसको स्टिम्युलेंट कहते हैं कि स्टिम्युलेंट आता है. आप टीवी देख रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, या आपको किसी चीज की आदत पड़ी है, चॉकलेट. चॉकलेट इज अ वेरी बिग स्टिम्युलेंट. कॉफी इज अ वेरी बिग स्टिम्युलेंट. ऑफकोर्स अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीजें. तो वो बार बार जो टेस्ट हम क्रिएट करते हैं, वो स्टिम्युलेट तो करता है ना कहीं.
1: अब स्टिम्युलेट किसे करता है, मेरे थॉट प्रोसेस को?
0: यस.
1: या मेरे बॉडी ऑर्गेनिक
0: सेंसेस? टेस्ट बड हियर, राइट? टेस्ट मैंने लिया, जैसे चॉकलेट खाई, मैंने टेस्ट लिया, लेकिन टेस्ट को परसीव किसने किया?
1: माइंड.
0: परसीव तो माइंड ने ही किया ना. माइंड ने परसीव किया कि ये टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे ये रियलाइज नहीं था कि ये थॉट कौन क्रिएट कर रहा है, ये थॉट ऑफ हैप्पीनेस कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ. सो आई थॉट कि अनलेस आई डोंट ईट दैट चॉकलेट,
1: चॉकलेट के कारण हो रहा है ये,
0: सो आई नीडेड दीज थिंग्स.
1: मतलब शॉपिंग करूंगी मैं तो शॉपिंग के कारण मुझे
0: खुशी मिल रही है. सो शॉपिंग आज बहुत बड़ा एक वो है लोगों को, कि कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, लेट्स गो फॉर शॉपिंग. सो शॉपिंग इज सपोज टू बी अ डी स्ट्रेसर, कि शॉपिंग करूंगी तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा. वाई? बिकॉज इट इज डेफिनेटली अ स्टिम्युलेंट. तो अब इतने सारे स्टिम्युलेंट्स, यू नो, हम ढूंढते गए कि कौन सी चीज मुझे खुशी देगी, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे म्यूजिक है, आज वीडियो गेम्स है. यू हैव टू सी चिल्ड्रन विद दैट, आई मीन दे आर टोटली सक्ड इन, एब्सोल्युटली. उनको कोई अवेयरनेस नहीं है कुछ हो रहा है, तो उतनी देर वो चीज आपके ऊपर क्या कर देती है?
1: हावी हो रखी होती है, बिल्कुल
0: हावी हो जाती है पूरी तरह. एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग कि दिस क्रिएट्स माय हैप्पीनेस.
1: ओके, बट व्हाट इज इट इन देम, उनमें ऐसा क्या है, वो क्यों ऐसे स्टिम्युलेंट है?
0: सी, इट्स नॉट स्टिम्युलेंट फॉर एवरीबॉडी. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज स्टिमुलेंट है. आपके लिए कॉफी स्टिमुलेंट हो सकती है, मेरे लिए चॉकलेट हो सकती है. आपके लिए गेमिंग हो सकती है, मेरे लिए मोबाइल पे बात करना हो सकता है. आपके लिए टीवी देखना हो सकता है, मेरे लिए इंटरनेट चैटिंग हो सकती है. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल.
1: और इतनी ज्यादा है, और इनफैक्ट यस, जो मेरे लिए नहीं है वो मुझे दूसरे को करते हुए नजर आता है कि वो गलत है उसके लिए,
0: लेकिन जो मेरे लिए है
1: वो मुझे ठीक लग
0: वो
1: रहा है.
0: मुझे नहीं पता,
1: क्योंकि वेरी ट्रू, यू नो, जब हम बच्चे को इन्वॉल्व हुआ देखते हैं तो हमें खुद को लगता है कि ये गलत हो रहा है कुछ.
0: लेकिन हम बहुत सारी चीजें करते हैं ऐसे जो हमें खुद उस टाइम नहीं अवेयरनेस आती. अब वो अलग अलग लोगों के लिए कैसे बन गई, जो चीज मैंने करने शुरू की, एक बार खाई चॉकलेट, आई लाइक्ड इट, सेकंड टाइम आई एट इट, एंड वी हैव सीन के जो कर्म क्रिएट करते जाओ बार बार बार बार, तो थोड़े टाइम के बाद इट बिकम्स माई हैबिट. तो ये मेरी हैबिट बन गई है. अब मैंने समझा कि ये हैबिट मुझे खुशी देती है, तो आई एम फीलिंग लो, मेरा मूड ठीक नहीं है, एंड मेरे अंदर वो बिलीफ फिट है कि चॉकलेट खाने से
1: मुझे अच्छा
0: मुझे
1: लगता है.
0: अच्छा लगता है, तो इमिडिएटली मेरा हाथ कहाँ जाएगा, एक चॉकलेट की
1: और
0: तरफ.
1: अवेलेबल भी है, चलो आसानी से.
0: या टीवी देखने से मेरा मूड ठीक हो जाएगा. नाउ व्हाई डज इट हैपन, क्योंकि टीवी मेरे माइंड इंटेलेक्ट पर इतना ओवरपावर कर देती है कि मेरी अपनी थॉट्स, सी इट इज अ सिचुएशन विच ओवरपावर्स मी. जैसे परिस्थिति मुझे ओवरपावर करती है, लोग मुझे ओवरपावर करते, उसी तरह वहां जो क्रिएट हो रहा है, दिस होल कॉन्शियसनेस कि कोई चीज मुझे ओवरपावर करती है एंड इट क्रिएट्स माय इमोशंस, एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम द टेलीविजन. क्योंकि टेलीविजन या कोई भी मूवी या कुछ हम देख रहे हैं, तो हम अपनी थॉट पावर, अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल बंद करते हैं. वो उदास है तो हम उदास हैं, वो गुस्से में है तभी तो हम कहेंगे ना सीरियल बहुत अच्छा है. कौन सा सीरियल और कौन सी मूवी अच्छी होती है जो आपको इमोशनली
1: स्टिम्युलेट करती है, जिसके साथ हम रिलेट कर पाते हैं,
0: तो हम कहते हैं हम उसके साथ जुड़ गए. जुड़ गए मतलब आप रोए मैं रोए साथ में. सो दैट इज द मूवी विच इज सक्सेसफुल, जो आपको पूरे 3 घंटे आपका मन, आपकी बुद्धि कहीं नहीं गई, तो आपको कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ा उतनी देर. दैट वॉज डूइंग योर जॉब फॉर यू. It was creating your emotions for you. यहाँ से हमें आदत पड़ती है और यही हमारी क्रिएटिविटी उस टाइम एकदम क्या बोलेंगे, यू नो, मोर और लेस इट्स इन द नील स्टेज. एंड बिकॉज ऑफ दिस, इवन वेन आई कम इन टू रियल लाइफ सिचुएशंस, आई वर्क इन दैट सेम मोड कि आप मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, सिचुएशन मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं.
1: मुझे आदत इतनी हो चुकी है, आई एम नॉट इवन रेडी, यू नो,
0: सो आई एम नॉट क्रिएटिव. जो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मैं सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखकर, एक नया दृष्टिकोण देकर, एक नए तरह से रोल प्ले करूं,
1: नहीं, वो तैयार ही नहीं होता. इनफैक्ट यू नो, कितनी बार देखा गया है, हम इनफैक्ट अगर अपने अनुभव से भी देखें, मूवी हॉल से निकलते हैं हम पूरे उस मूवी के इन्फ्लुएंस में इतने ज्यादा होते हैं, और कितनी देर तक रहता है वो इन्फ्लुएंस. हम कुछ भी डिसीजन लेने के उसमें नहीं, उस स्थिति में नहीं होते. सीरियल से बाहर निकलते हैं या मैच देखते हुए कभी बाहर, जब फिनिश होता है मैच, कितनी देर तक हमारे ऊपर वो पूरा, और हम
0: ये हो गया ना किसी चीज ने हम पर. सेम थिंग इज हैपनिंग विद वीडियो गेम्स, सेम थिंग हैपेंस विद इंटरनेट. आप इंटरनेट पर बैठे हैं, आपको टाइम की अवेयरनेस नहीं रहेगी, कुछ आपके पास हो रहा है उसके, मतलब इतने घंटों के बाद सडनली आप देखेंगे तो क्या हुआ, उतनी देर उस चीज ने आपको पूरी तरह से हावी कर लिया. ड्रग्स क्या करता है,
1: वो तो खैर फिजिकली
0: नहीं, हमने देखा. सेम थिंग इज हैपनिंग, व्हाई इज दिस एन एडिक्शन. ड्रग्स क्या कर रहा है, हमें रियलिटी से परे लेके जा रहा है. ये चीजें क्या कर रही है हमें, मैं, मेरा मूड ठीक नहीं है आज, ऑफिस में कुछ हुआ, कोई ऊपर नीचे बात हुई है, मेरे मन पर चल रही है, मैं आकर टीवी ऑन कर दिया. वो टीवी पर जो चल रहा है उसने मुझे रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर दिया. मैं अपना स्ट्रेस भूल गई, ऑफिस की बात भूल गई, जितनी देर मैं वो देख रही थी मेरा माइंड और इंटेलेक्ट पूरी तरह से.
1: आई यूज्ड टू डू इट अर्लियर, यू नो, स्टार्ट अ नॉवल. आई यूज्ड टू रीड अ नॉवल, जैसे कोई प्रॉब्लम आई, रीड अ नॉवल, यू नो, आप ड्रिफ्ट हो गए.
0: yes.
1: फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम
0: प्रॉब्लम सॉल्व होगी. तो लेकिन जितनी देर आपने वो स्टिम्युलेंट लिया है, आप उस दर्द से फ्री है. That's why we go for stimulants. के मुझे और कोई तरीका नहीं पता ना अपने स्ट्रेस को खत्म करने का, अपने वो जो चिंता है मेरे मन पे उसको खत्म करने का. I don't have a way. So I need something जो मेरे मन और बुद्धि को उस सिचुएशन से, which is on my mind, उससे वो परे कर दे. So a 3-hour movie is a good thing. 3 घंटे वो बात मेरे मन पर नहीं आती, और वो दूसरी चीज मुझ पर हावी कर जाती है, एंड देन वी से दिस इज एंटरटेनमेंट. हम इसको एंटरटेनमेंट कहते हैं. क्यों एंटरटेनमेंट? क्योंकि 3 घंटे
1: मैं कुछ नहीं क्रिएट कर रहा,
0: मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मुझे कोई स्ट्रेस, लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड दैट आफ्टर 3 आवर्स
1: अगेन दैट द होल थिंग विल कम बैक, एंड देन उसके बाद मेरी अपनी क्रिएटिविटी और डल हो गई.
0: क्रिएटिविटी डल हो गई क्योंकि वो इमोशंस ने आपके ऊपर हावी हो गए. जैसे ड्रग्स के लिए हमें मालूम है कि ड्रग्स डैमेजिंग है, वो हमें नंब कर देता है थोड़ी देर के लिए, एकदम यू नो हमारी अपनी क्रिएटिविटी खत्म. सेम इज विद एनी ऑफ दीज थिंग्स. इट्स ओनली यू नो वी डोंट कम टू नो बिकॉज द लेवल इज प्रोबेबली नॉट दैट मच. तो कोई भी चीज हम अपनी परिस्थिति को भूलने के लिए जिस चीज की तरफ हम जाते हैं, हम सोचते हैं इससे मुझे खुशी मिलेगी. एक्चुअली उससे खुशी नहीं मिल रही है, वो सिर्फ थोड़ी देर मेरे माइंड और इंटेलेक्ट को ओवर पावर कर रहा. अब होगा क्या, बार बार करने से वो चीज धीरे धीरे मेरी आदत बनती जाएगी, एंड देन इट्स अ डिपेंडेंसी. वो मेरी क्रेविंग बन जाएगी कि उसके बिना आई एम नॉट एबल टू फील गुड.
1: आई स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, यू नो, लाइक जैसे वो अस्थमा में जब अटैक पड़ता है तो आपको वो चाहिए होता है.
0: एब्सोल्युटली. लोग आज टेलीविजन सीरियल से अडिक्ट हो गए हैं. मतलब अगर एक दिन उनका वो सीरियल मिस हो गया या कुछ हो गया तो दे विल बी सो डिस्टर्ब. नाउ दिस इज एंटरटेनमेंट. हम एंटरटेनमेंट के लिए वो देख रहे हैं, लेकिन आज हम उस पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि एक दिन नहीं देख पाए तो कहेंगे हमें अनइजी लग रहा है या मुझे तो देखना ही है. मैच आ रहा है, यू हैव टू सी हाउ पीपल बिकम. नाउ दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज हमने लगा कि ये चीजें हमें खुशी देती हैं. अब ये क्रेविंग बन गई, आदत बन गई, और स्टिम्युलेंट का धीरे धीरे क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद आपको वही लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन क्रिएट करने के लिए, जो आज सपोज मैं 15 मिनट वीडियो गेम खेला तो मुझे एक हाई क्रिएट होता है ना वो अंदर, लेकिन वो 15 मिनट नहीं रहेगा लेकिन
1: फिर हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, ये तुम्हें बहुत ज्यादा और देर तक
0: yes, तो फिर उसकी जैसे ड्रग की डोजेज एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आपको वो ड्रग उतने अमाउंट में असर नहीं करता, फिर आप ड्रग की डोजेज को बढ़ाते जाते हैं ताकि आपको वो सेम हाई फीलिंग आए. सेम विल बी एप्लीकेबल टू एनी स्टिम्युलेंट. किसी भी स्टिम्युलेंट के साथ आपको टाइम टू टाइम वो स्टिम्युलेंट की मात्रा बढ़ानी पड़ती है. आज आप 15 मिनट देख रहे हैं, कल आप 1 घंटा देखेंगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे बीत जाएंगे, बिकॉज फिर आपको वो सैटिस्फैक्शन कम अमाउंट में नहीं मिलती है. सो द एडिक्शन जस्ट गोज ऑन बिल्डिंग अप. नाउ इट्स ओके एज फार एज द एडिक्शन इज देयर. अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये एडिक्शंस, ये हैबिट्स कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स पर इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हैबिट है. अब मुझे ये चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, अगर ये खत्म हो गया तो क्या होगा, अगर किसी ने मुझे ये नहीं दिया तो क्या होगा. तो समवेयर
1: इनसिक्योरिटी,
0: डिफरेंट थॉट पैटर्न्स, वो एक एडिक्शन को लेके मेरे डिफरेंट थॉट पैटर्न्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं. तो वो स्टिम्युलेंट जो बाहर से आ रहा था वॉज सपोज टू गिव मी अ गुड फीलिंग. वो सेंसेशन तो आ रही है, वो गुड फीलिंग सेंसेशन वाली तो क्रिएट कर रही है, लेकिन उसकी जो मेरी डिपेंडेंसी बन गई है वो मेरे अंदर अब कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है. लेट्स से सिंपल थिंग लाइक मनी. मनी एक डिपेंडेंसी है कि मुझे धन चाहिए क्योंकि धन से खुशी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आई थॉट इट्स कमिंग लाइक दिस. अब फियर, मेरे पैसे को कुछ तो नहीं हो जाएगा, आगे ये बिजनेस करूंगा ये चलेगा तो नहीं चलेगा,
1: पैसा आएगा कि नहीं आएगा,
0: ये मेरे पैसे के रास्ते में रुके हुए हैं, इनकी वजह से मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स ऑफ एंगर, स्ट्रेस,
1: फ्रस्ट्रेशन,
0: ईगो, फ्रस्ट्रेशन, फियर, all because of insecurity कि कहीं मेरा ये stimulant कम ना हो जाए, क्योंकि ये stimulant मेरी खुशी है. तो अब क्या हुआ, वो stimulant को पाने के लिए या उसको maintain करके रखने के लिए मैंने इस प्रकार की thoughts create करना शुरू किया. Tension, tension किस बात की होती है? आज किसी को भी पूछो tension किस बात की है? Fear, ये होगा या नहीं होगा, ठीक से होगा या नहीं होगा, ऑल रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू बिजनेस,
1: रिलेटेड टू रिलेशनशिप,
0: रिलेटेड टू रिलेशनशिप. रिलेशनशिप बहुत बड़ा एडिक्शन है,
1: बहुत एडिक्शन है, वेरी ट्रू.
0: यस, रिलेशनशिप इज एन एडिक्शन. यस, अनलेस आई टॉक टू यू आई डू नॉट फील गुड, दिस इज एन एडिक्शन. ये स्टिम्युलेंट है ना, ये भी तो स्टिम्युलेंट है. आपसे बात करके मुझे अच्छा लगेगा, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगेगा,
1: आपसे बात नहीं हुई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
0: आज मेरा दिन अच्छा नहीं बीता,
1: मेरा सारा दिन खराब हो गया।
0: से अगेन डिपेंडेंसी, तो कहीं ना कहीं अगर मेरी आप पर डिपेंडेंसी हो जाए इन अ रिलेशनशिप, तो मेरी थॉट्स कैसे हो जाएंगे? कहीं मैंने आपको किसी और से ज्यादा बात करते हुए देख लिया, पोजेसिवनेस, कहीं आप मुझे मिले नहीं कुछ दिन, एंगर, सो मेनी थिंग्स।
1: नो बट वी आर ऑल एक्चुअली स्टक, हम किसी न किसी एडिक्शन में आज हम फंसे हुए हैं, और तभी तो फियर है।
0: तो तब बट वो सारी एडिक्शंस का मूल कारण क्या, मैं शरीर हूँ, आई एम द बॉडी, सो आई नीड दी स्टिमुलेंस खुश रहने के लिए, मुझे इन चीजों की जरूरत है, ये चीजें ही खुशी देती हैं। Everyone just needs to prepare कि क्या क्या खुशी देता है, और आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, और वो सारी लिस्ट कहाँ है, यहाँ। तो somewhere इस लिस्ट के कारण जो मैंने ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने शुरू हुए, जैसे ये थॉट्स क्रिएट हुए, इनका फर्स्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ा, मुझ पर, और फिर इस शरीर के ऊपर। अब मैंने एक एक थॉट, आज मेडिकल साइंस भी हमें ये बताती है कि थॉट्स वाइब्रेशंस हैं, तो जो वाइब्रेशंस, जो थॉट्स हम क्रिएट करते, पहले हमारे शरीर के एक एक अंग पर उसका असर पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई टुडे द डॉक्टर सेज दैट द डिजीज इज साइकोसोमैटिक। आपकी कोई भी बीमारी लेकर आप डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कहेंगे मेजोरिटी बीमारियां आज साइकोसोमैटिक है, साइकी से कनेक्टेड है, कि आपकी थिंकिंग की क्वालिटी राइट नहीं है, तो इस वजह से आपको ये बीमारी हो गई। तो था सारा किस चीज के लिए, फॉर द हेल्थ एंड द हैप्पीनेस ऑफ द बॉडी, लेकिन उस थॉट के साथ चले कि मैं शरीर हूं, ये चाहिए ही नहीं, मिलेगा तो क्या होगा, फियर क्रिएट हुआ, और वो फियर ने इस शरीर को बीमार कर दिया।
1: ओह माय गॉड, लाइक इफ यू लुक एट इट, सारे जो मेरे स्टिमुलेंट्स थे जो मुझे हैप्पीनेस सपोजिटली दे रहे थे, कुछ कुछ देर के लिए ही, चाहे शॉपिंग दे रही थी, चाहे टीवी दे रहा था, चाहे चैटिंग दे रही थी, उनके ना मिलने का फियर ने मुझे बीमार करना शुरू कर दिया। एक्चुअली अगर हम
0: देखें, इट इज हैपनिंग दैट उनके ना मिलने का फियर, उनके ना मिलने की टेंशन, किसी और को उनका जिम्मेदार पकड़ करके इनकी वजह से नहीं मिल रहा गुस्सा, तो ये सारे जो हमने थॉट्स क्रिएट की, उन्होंने इस शरीर को बीमार कर दिया। अब जिस समय हमें ये समझ में आता कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, एक रियलाइजेशन, एक ट्रुथ पता चलने से पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है, एंड नाउ द फोकस बिकम्स आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई डू नॉट नीड इट फ्रॉम आउटसाइड। फीलिंग्स जो क्रिएट करनी है, दे आर नॉट हियर, दीज आर सेंसेशंस। सेंसेशन और फीलिंग में अंतर होना चाहिए। टुडे टच इज अ वेरी बिग सेंसेशन, एंड हमने कहते हैं उससे आई फील वेरी गुड, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फीलिंग गुड इज नॉट हियर
1: थेरेपीज।
0: यस,
1: see we are
0: yes it's okay at see again at which level are we aap primary level par aap stimulant ko le rahe hain, lekin stimulant aapke thought process par kya effect kar raha, that to we'll have to understand. sirf stimulant lete rahenge lekin idhar work nahi karenge to aap sirf addicted ho jayenge itni sari cheezon mein, and addiction can never be positive energy, kyunki addiction डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी हमेशा फियर क्रिएट करेगी। जिस दिन मैं किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, आई हैव स्टार्टेड माई फियर, एंड जैसे ही फियर स्टार्ट हुआ, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्टेड, इट विल अफेक्ट द बॉडी, और वो कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेगी। तो इसलिए जिस समय समझ में आया कि मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, I am a soul, I am consciousness, I am a being, and most important, I am the creator of thoughts and feelings.
1: Actually, this is, you know, like I can create my own happiness.
0: Yeah, most important.
1: Again, yes, because ये सारी चीजें जो हैं, ये मुझे happiness के लिए ही मैं ढूंढ रहा हूँ.
0: And जब ये perspective ही shift हो जाता कि happiness ढूंढनी नहीं है, शांति ढूंढनी नहीं है, मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, मैं हूं ही आनंद स्वरूप आत्मा, तो पूरा फोकस क्या हुआ। अब क्या होगा, आपकी जो डिपेंडेंसी है या जो क्रेविंग है, वो ऐसे नहीं कि एक दिन में चली जाएगी, क्योंकि इट्स अ हैबिट, यू नो, विच हैज बीन फॉर्म्ड मेनी मेनी इयर्स। लेकिन जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, हम अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग लाइक दिस। हैबिट जो बनी थी वो ऐसे बनी थी, हमारी क्रेविंग बाहर से आई लेकिन बार बार करने के बाद वो हैबिट बन गई। अब हम इस थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे तो हैबिट अपने आप टूट जाएगी।
1: बट आई डोंट नीड दिस टू फील हैप्पी।
0: आई डोंट इवन नीड टू से दैट अगेन, इट्स अ नेगेटिव
1: थॉट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल
0: मायसेल्फ I am a happy soul already. And now repeatedly, again it's a repetition of thought in the consciousness. बार बार अब इसको habit बनाना है। जो thought हम बार बार create करते हैं वो हमारी आदत बन रही है, वो हमारा belief system बन रहा है। तो when I create this thought in meditation every day, and हर रोज उस consciousness के साथ हम जीवन की यात्रा में चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, याद रखेंगे I am a powerful soul. I don't need this person to feel good, to feel happy. I can give happiness, I can give goodness. तो जब मुझे ये awareness आ जाएगी तो मेरा thinking pattern में परिवर्तन आ जाएगा। See, परमात्मा आकर क्या करता है? He hits at the root. So he says, change your thinking pattern, everything else will automatically change. मुझे ये आदत छोड़नी है, ये आदत doesn't need to work like that.
1: See, yeah. I don't read novels anymore.
0: Yeah. But you didn't have to do it.
1: No,
0: see?
1: Yeah, no, that see, is the way. I was addicted to novels. Like, किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती थी, आई यूज्ड टू पिक अप अ नॉवल एंड विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर मैं वो किताब पढ़ लेती थी और वो प्रॉब्लम आगे चली जाती थी। बट इन लाइक वन लास्ट वन एंड हाफ इयर्स माय सिस्टर वाज आस्किंग मी, मैंने एक भी नॉवल नहीं पढ़ा, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी।
0: लेकिन आपको कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं होगा कि एक्चुअली ये आदत छूट गई है। यू नो, वो आदत छोड़नी नहीं पड़ती है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो आदत कब छूट जाती है, क्योंकि डिपेंडेंसी छूट गई। डिपेंडेंसी क्यों छूट गई? क्योंकि यहाँ आत्मा ने राइट थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। पहले आत्मा क्या थॉट क्रिएट कर रहे थे? ये करूंगी तो खुशी मिलेगी, तो करो, करते करते वो आदत बनी। अब आत्मा ने थॉट क्रिएट किया, मैं हूँ ही आनंद स्वरूप आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। नाउ व्हेन आई स्टार्ट क्रिएटिंग दीज थॉट्स, व्हाट आर द वाइब्रेशंस? पॉजिटिव, पावरफुल। अब ये वाइब्रेशंस इस पूरे शरीर पे जाएंगे और ये शरीर जो एक्चुअली नेगेटिव थिंकिंग से बीमार हो रहा था, अब ये राइट थिंकिंग से, पावरफुल थिंकिंग से ठीक होता जाएगा। तो इसलिए एक जो रियलिटी है वो नहीं पता होने के कारण हम एक्चुअली बीमारी की तरफ जा रहे थे,
1: क्योंकि मेजोरिटी में जो है वो जो एक जो नहीं था, जो गैप था वो फिल हो जाएगा,
0: वो फिल हो जाएगा और रियलिटी पता चल जाएगी। एंड देन वी आर एबल टू वर्क विद आवर बॉडी। क्योंकि ये नहीं है कि हम शरीर को इग्नोर करेंगे, हमारा शरीर ये हमारा रथ है, दिस इज आवर चैरियट, इट्स वेरी वैल्यूएबल, बट इसकी वेल बींग मेरे हाथ में है। जब तक मैं आत्मा राइट थॉट्स नहीं क्रिएट करती, आई विल नॉट बी एबल टू हैव अ हेल्दी बॉडी। सो स्टिमुलेंट्स वर टेकिंग मी टुवर्ड्स अडिक्शन, एंड अडिक्शन ऑफ एनी काइंड विल क्रिएट फियर, एंड फियर विल क्रिएट डिजीज। तो स्टिमुलेंट से हमें आदत बनी, क्रेविंग बनी, उससे डर क्रिएट हुआ, उससे बीमारी आ गई। स्टिमुलेंट्स की आदत खत्म हो गई क्योंकि आत्मा ने राइट थॉट क्रिएट किया, राइट एनर्जी क्रिएट की, शरीर धीरे धीरे हेल्दी होने लग गया। एंड दैट्स व्हेन आई एम एबल टू यूज माय फिजिकल रिसोर्सेज इन द राइट चैनल।
1: वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। आज जो पूरी हमने बातचीत की, और जिन आदतों को या जिन स्टिमुलस को हम स्टिमुलेंट्स को हम ये मानने लगे थे कि वन दे आर द नीड ऑफ माई लाइफ, यू नो मैं उनके बिना नहीं जी सकता, दूसरा वही मुझे खुशी दे रहे हैं, आई नीड देम टू फील हैप्पी, कहीं ना कहीं उस पूरे थॉट प्रोसेस, उस मकर जाल से हम बाहर निकल सकते हैं।
0: यू नो
1: समवेयर वो जो एडिक्शन का एक पूरा विशेष सर्कल है जो हमें खुद रियलाइज ही नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है जो आज की बातचीत से जुड़ा हो, पूरी श्रृंखला से जुड़ा हो, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-555-0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरे श्रृंखला में बहुत सी बातें जो नई हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट करके देखें, और जिन स्टिमुलेंट्स की आज हमने बात की है वो जरा देखने की कोशिश तो करें, अवेयर तो हो कि हम किन किन बातों को स्टिमुलेंट्स मान रहे हैं, और फिर उन पर काम करें। तो आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गया आइगो आइगो आइगो ये क्या हो गया
1: आइगो आइगो आइगो ये क्या हो गया
0: आइगो आइगो आइगो ये क्या हो गया
1: आइगो आइगो आइगो ये क्या हो गया
0: आइगो आइगो आइगो ये क्या हो गया
2: आइए आइए दरवाजे पे क्यों खड़े हैं अंदर आइए ये घर है मुस्कुराहट का यहाँ बसती है खुशियाँ ये है पुनेरी आवाज 107.8 खुश रहो खुशियाँ बांटो।

0: करना था।
1: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
2: अश्विनी
1: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
3: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
1: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
4: व्हेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारी। खुद को पहचानने की इस जद्दोजहद में कई मुकाम हमने तय किए हैं। एक बात जो सामने आई है वो ये कि जिस तरह की जिंदगी आज के इस भागते दौड़ते युग में हम जी रहे हैं, उसमें कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां हमने खुद ही जनरेट कर ली हैं। सॉल्यूशंस भी हमें खुद ही तलाशने पड़ेंगे। ऐसे में एक बीमारी जिससे हम में से हर एक को दो चार होना पड़ता है कभी ना कभी, वो है डिप्रेशन। क्या है एग्जैक्टली डिप्रेशन, ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं और ये भी जान गए हैं कि डिप्रेशन को दूर करना हमारे अपने ही बस में भी है, लेकिन कई बार हमें प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है। किस तरह के डिप्रेशंस आ सकते हैं हमारी जिंदगी में और कौन सा वो वक्त होता है, कौन सा वो मुकाम होता है जब हमें एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम। और नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
5: ओम शांति।
4: ओम शांति सिस्टर शिवानी। आज पहले आपसे शुरू करते हैं कि डिप्रेशन के हर एस्पेक्ट को हमने जाना है अच्छी तरह से कि डिप्रेशन क्या है, जिंदगी के किस फेज में हमें समझ में आ जाता है कि डिप्रेशन है। यहाँ पे जब थोड़ी थोड़ी देर खुशी, थोड़ी थोड़ी देर गम होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। जो जर्नी हम इंटरनल जर्नी की बात करते आ रहे हैं पूरी इस श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें एक एस्पेक्ट तो ये आता है कि खुद के बारे में अवेयर होके हम ये जान लें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो हमें परेशान करते हैं और हमें उनसे दूर होना है। जो डिप्रेशन है, जो कभी कभी गम तक हम पहुंचते हैं, कुछ देर का गम हमें आता है, उसमें क्या ऐसी बातें खुद से करनी है हमें, जो खुद स्व काउंसलिंग की बात करते हैं, अपने आप से बात करने के बाद सेल्फ काउंसलिंग की बात करते हैं, कि हम उस वो चार घंटे के वक्फे को निकाल पाए और वो जो चार घंटे खुशी के आएंगे वो ज्यादा बेहतर हो।
5: सेल्फ काउंसलिंग अर्थात अपनी, जब हम पहचान लेते हैं कि कौन सी बात है जो उस चीज को ट्रिगर कर रही है, तो हम उसका सोल्यूशन, जैसे दूसरों को सोल्यूशन देते हैं वैसे खुद को सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनको पहचानना, मेरे अंदर कौन सी शक्तियां हैं उनको पहचानना। ज्यादातर क्या होता है, हम सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं परिस्थिति को सामना करने की शक्ति नहीं है, या किसी ने कुछ कह दिया या मेरे जीवन में कोई घटना घटी, मुझे मेरे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर एक राइट डिसीशन लेने की पावर नहीं है। तो ये जो सारी पावर्स हैं ये हम फील करते हैं कि हमारे अंदर नहीं है और वो खालीपन आना शुरू कर देते हैं। राजयोग जब हम करना शुरू करते हैं तो ये पावर्स एक नेचुरल रूप में इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी पावर्स हमारे अंदर हैं। You know, they don't have to be brought from anywhere outside. सहन शक्ति है, सिर्फ कभी कभी वो हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे उसको यूज करते जाएंगे वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कोई भी परिस्थिति और कोई भी व्यक्ति मेरी मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता।
4: लेकिन वही आपने कहा कि सेल्फ काउंसलिंग जो
5: हाँ, तो जैसे अगर सपोज आपसे मेरी कोई बात हुई और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, अब मेरी वो गम वाले फेज में मैं चली गई क्योंकि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरी, जो हमने कहा कि जो मेरी अपनी बनाई हुई इमेज है उसको हर्ट हुआ। देखो हर्ट हम कब होते हैं, मैंने अपने बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बनाई है, आपने कुछ ऐसे कह दिया जो वो इमेज मेरी बनाई हुई इमेज के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए आपके बोल मुझे तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें अब सेल्फ काउंसलिंग यही होगी कि सबसे पहले तो मेरी मन की स्थिति का मास्टर मैं खुद हूँ। अगर मैंने अपनी कोई इमेज बनाई है तो अच्छी इमेज अगर बनाई है तो सबसे बड़ी पावर तो यह है कि नोबडी कैन कंट्रोल मी। दूसरा अपने आप से ये बात करना शुरू करें कि असलियत क्या है, जो मैंने सोचा या जो आप कह रहे हैं, यू नो. एंड सेकेंड ट्राई एंड टॉक टू माई सेल्फ के ओके दिस इज वॉट यू फील, मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर नॉट, ईदर वेज लेट मी चेक माई सेल्फ. अगर आप सही हैं तो मैं अपने आप को उस अनुसार चेंज कर लूं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने जो कहा है
4: उसका कोई मायने नहीं है. और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही भी हैं तो आप अपने आप, मैं अपने आप को मार नहीं दूंगा. हाँ, कि मैं चेंज कर सकता
5: हूं. बिल्कुल, तो बहुत इजी है. लेकिन अगर हम, हमारे को प्रॉब्लम उस बात से नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम ये ज्यादा होती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा,
4: मेरी इमेज जो मैंने बनाई हुई थी
5: उससे वो, तो वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ जाता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा, और वो चीज हम बार बार अपने आप को फिर कहते रहते हैं. तो ये फिर हम उस टाइम परेशानी के पीरियड में गुजर रहे हैं, तो उस टाइम कोई और मदद नहीं कर सकेगा. आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ, उनकी जो राय थी वो उन्होंने कही, अब मुझे उसको अपने इमेज के साथ
4: पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब हम इस एस्पेक्ट पे हैं कि जब मैं उस डिप्रेशन के फेज में जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए भी, क्या ये सेल्फ काउंसलिंग Does it really help?
5: It really helps.
4: क्या हम बात कर सकते हैं उस फेज में, होते हैं कि हम बात कर पाए?
5: हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे ही पता है कि मुझे कौन सी बात दर्द कर रही है.
0: शिवानी बेन ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, which is otherwise said. सभी को याद रखनी चाहिए बात. कहते हैं nobody can make you depressed without your permission.
4: We gave him or her the permission.
0: So don't give permission to anybody.
4: बिल्कुल.
5: So if I have the power, why do I give that power away to somebody else?
0: उन्होंने बात की ना सारे पावर्स की, उसमें सबसे बड़ा है पावर ऑफ साइलेंस. यू शुड लर्न टू गो इन साइलेंस. साइलेंस में गए तो ऑटोमेटिक परखने की शक्ति आएगी,
4: खुद से बात करने का वक्त,
0: सहन करने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी.
4: तो अब डॉक्टर साहब, हम उस बात पर आते हैं कि ये तो बात है कि जब मैं उस फेज में आ गया कि मैं उतनी देर के लिए तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ, खुद से काउंसलिंग, खुद से बातचीत करके कहीं ना कहीं उस एहसास को मैं हटा सकता हूँ. अब बात करते हैं जो इससे परे जा चुके हैं, यू नो, हम थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं कि डिप्रेशन जो है वो सीप इन कर गया है. आपने पिछली बार हमने बताया था कई तरह के होते हैं डिप्रेशन. आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि क्या, कौन कौन सी वो तरीके, कौन कौन से वो डिप्रेशन कहे जाते हैं जिनके कारण शायद अलग अलग होते होंगे और उनके सिम्टम्स शायद अलग अलग होते हों. तो किस तरह के डिप्रेशन,
0: कई प्रकार से डिप्रेशन को डिवाइड करते हैं. एक तो जिसको कहा गया रिएक्टिव डिप्रेशन, मतलब कोई ना कोई परिस्थिति आती है उसके रिएक्शन में आप डिप्रेस्ड होते हैं, कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया तो डिप्रेस्ड हुए, किसका देहांत हो गया तो
4: डेथ इज अ मेजर थिंग.
0: दूसरा एक है जिसको कहा एंडोजिनस डिप्रेशन. इंडोजिनस डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा ही डीप होता है, जो केमिकल्स के कारण है, कि कोई बाह्य परिस्थिति ऐसी नहीं परंतु फिर भी अचानक व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है, दैट इज इंडोजिनस डिप्रेशन. और एक है प्रकार जिसको कहा साइकोटिक डिप्रेशन, विच इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. इसमें व्यक्ति पागल जैसी हरकतें भी कर सकते हैं, वो डिप्रेस्ड है लेकिन साथ साथ में साइकोसिस भी है उसे.
4: अच्छा, तो सारे जो डिप्रेशन है वो साइकेट्रिक नहीं होते हैं?
0: नहीं, साइकेट्रिक होंगे लेकिन साइकोसिस जिसको कहा, जैसे साइकेट्री में दो प्रकार की बीमारियां, एक तो न्यूरोसिस और दूसरी है साइकोसिस.
4: ओके.
0: न्यूरोसिस ऐसी बीमारियां जो माइल्ड फॉर्म ऑफ बीमारी भी कहेंगे, व्यक्ति खुद रियलाइज करता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए. साइकोसिस ऐसी बीमारियां हैं जहां पेशेंट स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है,
4: एहसास ही नहीं होता.
0: हाँ, वो तो कहेगा आप सब पागल है, तुम ट्रीटमेंट कराओ. इवन डॉक्टर के पास भी जाके पूछेंगे ना क्या तकलीफ है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, इनको प्रॉब्लम है ना, उनका इलाज करो आप. तो जो डीप, जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन है साइकोटिक डिप्रेशन,
4: जो कि वायलेंट भी हो सकता है, हमने पिछली बार बात की थी, या फिर सुसाइडिकल भी जा सकते हैं.
0: सुसाइडल तो रिएक्टिव डिप्रेशन में भी पॉसिबल है, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में पागल जैसी हरकतें करेगा.
4: इन तीन को आप, हमने डिफाइन किया, आपने बताया हमें कि किस तरह के जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो डिप्रेशन है. एक मैं यहाँ से बात आपसे, एक्चुअली हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सिस्टर शिवानी, आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि आज जब भी हम किसी मानसिक परेशानी की बात करते हैं, मानसिक बीमारी की बात करते हैं, इनफैक्ट आजकल तो इतनी ज्यादा उसके ऊपर बातचीत की जाती है, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, पहली चीज हर बीमारी का नाम डिप्रेशन दे दिया जाता है. व्हाई? आई एम लाइक, क्या हर जो मानसिक परेशानी है वो डिप्रेशन से उपजी है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं. कॉमनेस्ट है इसके लिए डिप्रेशन का, बिकॉज डिप्रेशन इज सो कॉमन, और बहुत सारी बीमारियां हैं. जैसे कि फोबिया आज बहुत बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चीजों का लोगों को डर लगता है, पानी का डर लगता है, घर से बाहर जाने का डर लगता है। फोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे और एक बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सन, कि एक चीज व्यक्ति बार बार करता है, कि भी नहीं 100 बार हाथ धुलाई करेगा,
4: वो अपना वो देखेंगे कि ताला लगाया कि नहीं, बार बार देखते हैं वो।
0: कई बार कुछ रिचुअल्स भी होते, डॉक्टर मेरे पास आए थे कि भी चौराहे पे और ऐसे स्पेसिफिक उसकी विधि, तो चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं, वो आगे बढ़ेंगे नहीं। कहते क्लिनिक में जाने को मुझे 3 घंटे लग जाते, एक बार ये ऑब्सेशन बुद्धि में आ गया फिर मैं आगे बढ़ता ही नहीं। ऐसी एंजाइटी एक बहुत बड़ी और बीमारी है, जो डिप्रेशन से बिल्कुल भिन्न है, उसके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और जो है वो है साइकोटिक बीमारियां, कि जिसमें सिजोफ्रेनिया हो गया, ऐसे और एक है मैनिक डिप्रेशन।
4: तो ये इट मींस दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिप्रेशन,
0: दे आर नॉट पार्ट ऑफ
4: डिप्रेशन, कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर होल ट्रीटमेंट या पूरा प्रोसेस, बट दे आर नॉट डिप्रेशन।
0: या तो ऐसा कहेंगे कि भी और बीमारियों के साथ साथ भी डिप्रेशन हो सकता है, परंतु ये सब डिफरेंट एंटिटीज है कि जिनका हम इलाज, जैसे मैनिक डिप्रेशन कहा, वो अलग प्रकार की बीमारी है, जहाँ कुछ समय तो व्यक्ति एक्साइटमेंट में जाता है, 1 दिन 5 दिन 1 मास, और फिर कुछ समय वो डिप्रेशन में जाएगा, या साइकिल उसका चलता रहेगा। उस समय बहुत खर्चा करेगा, बहुत बातें करेगा, गुस्सा भी कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, फिर कभी ना कभी उसे डिप्रेशन भी आता है थोड़ा समय वो उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, तब ठीक से इलाज हो सकता है।
4: तो यहाँ तो अभी हम 3 तरह के जो डिप्रेशन की आपने बात की, रिएक्टिव डिप्रेशन और आपने
0: एंडोजेनस
4: डिप्रेशन,
0: साइकोटिक डिप्रेशन।
4: एंडोजेनस डिप्रेशन में क्या था, रिएक्टिव तो ये था कि किसी रिएक्शन कर रहे हैं।
0: एंडोजेनस डिप्रेशन में केमिकल का इंबैलेंस है, जीन्स के कारण हो सकता, और भी कोई कारण पॉसिबल है कि बाहरी कोई परिस्थिति नहीं। व्यक्ति भी कहता है कि मुझे कोई ऐसे विचार भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मैं डिप्रेस्ड हो गया। वह संभव है कि उसे वह एंडोजिनस डिप्रेशन।
4: एंड देन थर्ड इज
0: साइकोटिक
4: डिप्रेशन,
0: जिसमें पागलपन भी है डिप्रेशन,
4: और फिर मेजर कहीं ना कहीं साइकियाट्रिक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। कैन वी हेल्प दीस काइंड ऑफ, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट रियल 3 depressions, मेजर डिप्रेशंस, जिनमें कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस भी हैं, क्या हम सेल्फ काउंसलिंग है पूरा प्रोसेस? हाँ,
5: दोनों एस्पेक्ट साथ साथ चलेंगे ना, मेडिकेशन, साइकोथेरेपी जो कर रहे हैं, एंड मेडिटेशन
4: खुद अपने आप।
0: ऐसा कहेंगे फर्स्ट टू है, सेल्फ काउंसिलिंग कैन हेल्प, रिएक्टिव डिप्रेशन में भी हो, एंडोजिनस डिप्रेशन में भी
5: psychotic.
0: होगा, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में नहीं होगा। इवन मैं तो कहता हूँ साइकोटिक डिप्रेशन में मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए, भले उनको हेल्प होती है। ऐसी भी रिसर्च स्टडीज हुई है कि साइकोटिक डिप्रेशन में भी मेडिटेशन मदद करता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं सिखाइए। क्यों? क्योंकि समझो कि आप कोई ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे गए, आपको साइकोटिक डिप्रेशन है, तो बहनों को तो पता नहीं है पूरा क्या है, तो इसलिए वो तो मेडिटेशन ही सिखाएंगे। कभी ये बढ़ भी सकता है, इसमें ये भी होता है कि वो जो डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस है, वह जो व्यक्ति सिखा रहा है उसके प्रति हो जाए।
4: हाँ।
0: कि नहीं यही मुझे परेशान कर रहा है,
4: जो सिज़ोफ्रेनिया
0: ब्रह्मा कुमारी वाले मेरे पीछे लगे हैं, ऐसे भी लोग तो सच मान लेते हैं कि सचमुच ऐसा हुआ होगा, बट लेकिन उसका वह डिल्यूजन है।
4: बिल्कुल।
0: ये भी हो सकता है कि मैं कृष्णा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो इसके कारण ये जो इस प्रकार का साइकोटिक डिप्रेशन, उसमें मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए।
4: डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने बात की थी जो मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, यू नो, जो लक्षण दिखने लगते हैं, तो कुछ फिजिकल लक्षण भी होते हैं जब डिप्रेशन हो रहा होता है?
0: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और ये जानना चाहिए सर मुझे। ये तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि फैमिली फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग है उसमें भी 30-40% को डिप्रेशन है। इवन एमडी फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं, कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन एक्चुअली उन्हें डिप्रेशन है। स्टडी भी हुई है, प्रॉपर कहीं टेस्ट आती है साइकोलॉजी में, जैसे रोशाक टेस्ट है, 16PF की, ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसके द्वारा हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट होती है, ऐसे ही ये साइकोलॉजिकल टूल्स है। वह जो फिजिशियन के पास जा रहे थे लोग, उन लोगों को ये साइकोलॉजिकल टूल्स दिए गए और पता चला कि बड़ी संख्या में 25-30% पेशेंट्स हु आर विजिटिंग अ एमडी फिजिशियन आर एक्चुअली डिप्रेस्ड।
4: ओहो, तो मतलब ये फिजिकल एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं आप, दे कैन बी ड्यू टू डिप्रेशन,
0: दे आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। नहीं, वो डिप्रेशन का एक पार्ट है, उन्हें वो फिजिकल सिम्टम्स भी हो रहे, भी पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कोई तकलीफ है, लेकिन साथ साथ में डिप्रेशन भी है.
4: तो अगर
0: जो फिजिशियन को समझ में नहीं आता है
4: डिप्रेशन दूर कर पाएंगे तो क्या वो सिम्टम्स
0: भी ठीक हो जाए. हाँ, अगर डिप्रेशन आपने दूर कर दिया तो वह जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, या तो उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी रिलीफ कर देंगे.
4: तो फिर सबसे पहली चीज यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन की डिप्रेशन है.
5: नहीं, बीच में आपको याद हो कि आया था कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों को
4: पेट में दर्द
5: होने लगा है और उसमें अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारे डायग्नोस भी कराए, लेकिन कुछ फिजिकल एलिमेंट ही नहीं निकलते, लेकिन फिर भी वो दर्द नहीं ठीक हो रहा. तो देन इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. लेकिन हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पर इतना ध्यान देते हैं ना, एक्सटर्नल, तो इंटरनल एस्पेक्ट पर न ध्यान देने के कारण उसको जड़ से उस प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पाते.
0: फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज आर इंटरलिंक्ड. जैसे ना हाइपोथायरॉयडिज्म एक तकलीफ जिसमें थायराइड का लेवल कम है, इट कैन बी लिंक विद डिप्रेशन. Either way is possible.
4: Depression can lead to hypothyroidism.
0: Hypothyroidism also can cause depressive symptoms.
4: Because it will be second one, second. जो chemical change हो रहा है.
0: हाँ, chemical ये even hypothyroid के symptoms भी ऐसे ही है.
4: अच्छा.
0: Lack of energy, कुछ कम करने का नहीं होगा मन, even reflexes are very slow. तो वो दोनों चीजें interlinked हो सकती.
4: मतलब आपने कहा कि जो पहले दो तरह के, जैसे रिएक्टिव डिप्रेशन और जो दूसरे डिप्रेशन की आपने बात की जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम सेल्फ काउंसलिंग से दूर कर सकते हैं. क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एम, जब हम उसकी तरफ पहुंचते हैं, जब भी इस कार्यक्रम में भी बात कर रहे हैं, कि मकसद हमारा यही है कि हम सोल्यूशंस जरूर तलाशें. और सोल्यूशंस अगर हम खुद की पहचान के दौरान ही तलाश लें, जो सफर पे हम हैं, तो क्या है वो सोल्यूशंस,
0: जो सेल्फ काउंसिलिंग के सॉल्यूशन. एक तो कि सेल्फ काउंसिलिंग से, या तो कहेंगे कि मेडिटेशन से, आप अपने आप को सही रूप से पहचान पाते, अपने सिम्टम्स को जो है. तो अधिकतर व्यक्ति अपने सिम्टम्स को ही पहचान नहीं पाता है. और अगर आप अपने सिम्टम्स को ठीक से पहचानने लगे तो थोड़ा भी डिप्रेशन शुरू होगा पता चल जाएगा, और फिर उसके लिए कोई कदम उठाना भी संभव है. आमतौर पर जब काफी डिप्रेशन बढ़ जाए तभी व्यक्ति को पता चलता है.
4: कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में रह पाना, सिस्टर शिवानी, कि कुछ देर के लिए तो मैं खुद से बातचीत करके अपने आप को उस स्टेट से बाहर ला सकती हूँ, लेकिन कई बार फिर ये लगने लग जाता है कि क्या मैं झूठ तो, मतलब मैं क्या जिंदगी जी रही हूँ. ये बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल अब मन में आता है, जब when we've been talking about कि अपने आप से बात की जाए, सेल्फ काउंसलिंग की बात की जाए. कई बार क्योंकि सब चीजें बेमानी लग रही होती है तो खुद से बात करना भी बेमानी लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या चीज है. लेकिन कितनी देर तक वो उस स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि हर लम्हा हर क्षण उस स्टेट में रह पाना, जैसे हमने पहले बात की थी, दैट इज द यू नो द बेस्ट. लेकिन वो नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा. अब ये भी कंडीशनिंग हो सकती है, लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं अभी आज के इस वक्त में नहीं है. तो कैसे हम अपने आप को हर पल समझा सकते हैं?
5: हर पल समझाना नहीं पड़ेगा एक्चुअली. ये सिर्फ एक शुरू में थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत.

0: चलो 5 मिनट्स एंड बैक. सो द टाइम ड्यूरेशन की हम कितनी देर वो डाउन
1: फीलिंग में बजाय हम
0: इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. पहले वो 4 घंटे था, अब वो थोड़ा और कम होता जाएगा एंड धीरे धीरे वी विल रीच अ स्टेज. कुछ बात आई, आप अपसेट हुए, क्विक आप वापस आ जाएंगे एंड धीरे धीरे स्टेज आएगी कि आप अपसेट नहीं होंगे.
2: राज्यों में जो मेरा अपना अनुभव है कि इसमें स्पेशल बहुत बैठने की आवश्यकता नहीं है. कई बार और जो टेक्निक्स होती है जिसमें आपको स्पेशली बैठना पड़ता है, 20 मिनट ध्यान किया फिर शांत लगने लगा. राज्यों की विधि ऐसी है कि आप चलते फिरते भी कर सकते. वैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ परंतु भी मैंने ऐसे इंटरव्यू तो ढेर सारी दी है. नॉलेज इज देयर, मुझे भी सोचने की आवश्यकता नहीं है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. तो जब आपसे बात कर रहा हूँ तभी मैं ये अवेयरनेस ला सकता हूँ कि आई एम अ पीसफुल बीइंग. आई एम पीसफुल और मैं आपको अपने विचार बता रहा हूँ. तो देन इवन व्हाइल टॉकिंग आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेज. मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं आप मेडिटेटिव स्टेज में हो सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं वो स्टेज आपकी बन सकती है. तो शिवानी बेन ने बिल्कुल राइट कहा कि वो जो रूट जब स्टार्ट हो रहा है देयर इटसेल्फ यू कैन कट इट ऑफ.
1: तो ये हमने पहले भी बात की थी कि ये जो पूरा अवेयरनेस है ये हम आज इतनी देर बाद आकर हम जानने की कोशिश करते हैं. द जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम एट अ वेरी यंग स्टेज यू नो, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्वेश्चनिंग यू नो नॉट रियलाइजिंग. अगर वो 5वीं का बच्चा या 6वीं का बच्चा भी काउंसलर के पास जा रहा है अगर ये अवेयरनेस उसके पास ही आ जाए वहां से तो ये कितना जरूरी है, कहा कैसे किया जा सकता है.
0: जितना आजकल जैसे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, लेकिन काउंसलर्स भी यही ध्यान रखें कि वो उस इंडिविजुअल को उस बच्चे को इनर पर लेकर जाएं, यू नो, वो भी कहीं सोल्यूशन आउटर ही ना देना शुरू कर दे कि ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं आप इस तरह से बिहेव करो. नॉर्मली हम जो चेंज लाने की कोशिश करते हैं वो बिहेवियरल लेवल पर बहुत ज्यादा होता है. आप इस तरह नहीं, आप अपने व्यवहार को परिवर्तन करो, सोच को परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि बिहेवियरल चेंज बहुत टेम्पररी होता है. फिर कोई और थोड़ी बड़ी परिस्थिति आ गई, अगेन द बिहेवियर विल चेंज. तो बिहेवियर विल कीप चेंजिंग, वो फ्लक्चुएशन से गुजरता ही जाएगा. लेकिन अगर एक परमानेंट बिहेवियर में चेंज लाना है तो द सोर्स को चेंज करना पड़ेगा. दैट विल बी द थॉट लेवल चेंज, जिससे एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा. फिर कोई भी बात आपको उस तरह के बिहेवियर पर लेकर नहीं जाएगी. सो द काउंसलर हैज टू टेक केयर कि यू आर चेंजिंग द एंटायर वे ऑफ थिंकिंग of the child, not just the behavior.
1: And that is what meditation is all about, actually.
2: That's all. I think still, like, ye to kehte bhi panchvi, main to samajhta hu, parents are best counselors. Aur bachcha 2 saal ka hai na, tab hi start ho. It's not actual counseling. Kaha gaya, bachchon ko dekha hai ki bhi bachche hai na, teaching se nahi sikhte. They don't do what you say. They do what you do. एक बार मैं भी अपनी एनालिसिस कर रहा था कि ऐसे स्पिरिचुअल कैसे बने, नो व्हाट हैपेंड इन लाइफ. लाइक माय पेरेंट्स वर नॉट सो स्पिरिचुअल, फिर भी ये कैसे बात आई. तो जब सोचते तो मुझे पता चला कि भी जब हम छोटे थे तो मेरे नाना, हम गांव जाते थे, गुजरात में एक छोटा सा गांव है, वैकेशन में 2-2.5 मास जाते थे. और मेरे जो नाना थे वो 2-3 घंटे तक कुछ पूजा पाठ अपना करते थे. हम लोग भी साथ में बैठ करके एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू. And I thought that must be the seed.
1: Somewhere deep within
2: the heart. Seed था सचमुच कि जो आगे चल कर के वो सचमुच full blown फेल में आया. तो parents को भी यही करना है.
1: बिल्कुल.
2: Parents गलती ये करते हैं. हमारे पास भी कहते हैं कि बच्चों को ले जाओ सेंटर पे, हमको नहीं आना है.
0: तो अगर आप बच्चों को राइट थॉट पैटर्न क्रिएट यू नो सिखा भी रहे हैं, अनलेस आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जो संस्कार है वो चेंज नहीं होंगे.
1: वो बच्चा तो फिर अपनी सही बात बोले.
0: एक्चुअली बहुत ज्यादा बच्चे का थॉट पैटर्न हम ही बनाते हैं. यू नो इवन ये कहना वहां मत जाना वहां भूत है, ये फियर क्रिएट करना, ये हमने ही तो क्रिएट किया. बच्चा चल रहा है इतना छोटा सा, उसको टेबल लग गई. अब बच्चे को समझाने की बजाय कि आपकी गलती थी, हम टेबल को मार देते. दिस इज ब्लेम कल्चर. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर टॉट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज द टेबल्स फॉल्ट. तो वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लेकिन ये सारे थॉट पैटर्न्स हम छोटे से उनके अंदर डाल रहे हैं. इंस्टेड यू नो राइट सोर्स, क्योंकि इजी वे आउट, बजाय कोई समझाना कि बाहर अंधेरा है या क्या, नहीं बाहर भूत है बाहर मत जाना. तो इजी वे आउट विल नॉट वर्क.
1: भूत आ जाएगा, यू नो सो जाओ right. इस तरह से सुलाने के लिए तो ये दूध पी लो, ये इस तरह से yes, definitely.
0: ये सारी छोटी छोटी चीजें जो लॉन्ग टर्म में हमारे थॉट पैटर्न को फिर डिटर्मिन कर देंगे.

0: और कहीं ना कहीं जब फिर वो जो अचीवमेंट की बात है, एक अगेन अनदर टाइप ऑफ डिप्रेशन. एक्चुअली अभी तो हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी. अचीवर्स जो अचीव करने की एक लालसा कि मुझे वहीं पहुंचना है और नहीं पहुंच पाते, वो जो डिप्रेशन है, चाहे वो पीयर प्रेशर से है, जो जो सुसाइड्स इतनी ज्यादा रिजल्ट्स को लेके होती हैं कि मेरे में कैपेसिटी है या नहीं, मुझ में क्षमता है या नहीं, लेकिन अचीव वो करना है, वो जो मेजर डिप्रेशन जिसे आज का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा रूबरू हो रहा है. अगली बार हम पूरे, हमारे पास बहुत से ईमेल्स भी आए हैं शिवानी, उन पे बात करेंगे. और ये कि वो अचीव अगर नहीं कर पाए तो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है. डॉक्टर गिरीश पटेल, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए, थैंक यू सो मच. एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत में जो बात सामने आई वो ये कि डिप्रेशन के कई फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं. तो जरूरत ये है कि ना सिर्फ हमारे मन में क्या चल रहा है, बल्कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारे फिजिकल सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, क्या हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए. और वहीं एक पॉज लेकर, एक लम्हे के लिए रुककर खुद से बात करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तुझे क्या चाहिए जिंदगी, ये हर बार हम कहते हैं. तो उस जिंदगी को तलाशना है, अपने अंदर की इस जर्नी, इस सफर को तय करना है और ये जानना है कि किस तरह से एक बेहतर ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहरी जिंदगी को भी हम जी पाएंगे. आपके पास भी जरूर कोई ना कोई सवाल होगा तो आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक. पुणे री आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: पंडित जगतराम भारद्वाज एक क्रांतिकारी शायर थे। भारत की पराधीनता की टीस ने उन जैसे प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों को गदर पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया था। 1914 में छिड़े प्रथम विश्व युद्ध को गदर पार्टी के लोगों ने भारत की स्वाधीनता के लिए एक अच्छा अवसर समझा। उन्होंने एक कार्य योजना तैयार की जिसके तहत विभिन्न देशों से भारतीय क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने के लिए भारत पहुंचना था। पंडित जगतराम को हथियार लेने अफगानिस्तान जाने के लिए नियुक्त किया गया, मगर पेशावर स्टेशन पर एक देशद्रोही ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। लाहौर सेंट्रल जेल में जगतराम और उनके साथियों पर प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा दायर किया गया। क्रांतिकारियों ने आपस में मिलकर विचार किया कि सात व्यक्ति पूरे षड्यंत्र की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर शेष साथियों का जीवन बचा लें। पंडित जगतराम ने इस कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। 13 सितंबर 1915 को जब इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था तो सभी क्रांतिकारी पंडित जगतराम का लिखा देशभक्ति गीत गा रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने 24 क्रांतिकारियों की फांसी की सजा का फैसला सुनाया। इस फैसले पर सारे देश में तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई। देश में विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ और मजबूरन गोरी सरकार को 24 में से 7 अभियुक्तों की फांसी की सजा को काला पानी की सजा में बदलना पड़ा। पंडित जगतराम को कालापानी में उन सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जिसके लिए वो बदनाम था। वहां उन पर हुए अमानुषिक अत्याचारों के विरुद्ध भारत में जोरदार विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कालापानी के राजबंदियों को भारत की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया। पंडित जगतराम पहले मद्रास और फिर नागपुर जेल में रखे गए। पंडित जगतराम की जेल से रिहाई 1940 में हुई। जीवन की अंतिम सांस तक वे देश की समृद्धि की दुआ मांगते रहे।

0: अरे ओ छोटू
1: जी दादा।
0: वहाँ बाबूजी को 3 नंबर टेबल पर 2 चाय लगा
1: जी,
0: और उधर 7 नंबर टेबल से ऑर्डर ले ले।
1: ठीक है।
2: और छोटू, और चाय में अदरक भी डाल देना।
1: अदरक वाली चाय दे रहा बाबूजी।
2: अच्छा यार पंकज, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो जवान है ना, जो देश की सरहद के ऊपर जो रखवाली करते हैं, वो कश्मीर और लद्दाख में उनका क्या हाल होता होगा इस कड़कड़ाती ठंड में।
3: दोस्त, असली देश सेवा तो वो ही करते हैं, हम तो केवल भाषण वाषण देकर ही काम चला लेते हैं देश सेवा के नाम पर।
0: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, देश सेवा तो सभी अपने अपने तरीके से करते हैं, मगर आजादी के लिए जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया,
2: हाँ?
0: उनकी देश सेवा के तो हम सभी कायल हैं।
2: ये बात तो है दादा, पहले लोग सेल्फिश कम होते थे और देशभक्त ज्यादा होते थे।
3: उस समय तो माहौल ही ऐसा था, वो सब माहौल का असर था।
1: बाबूजी, ये आपकी 2 स्पेशल चाय।
2: ला ला ला छोटू ला।
0: बेटा उस समय लोग सोते देश के लिए थे, जीते देश के लिए, मरते देश के लिए, यहाँ तक कि जो भी काम करते थे वो भी देश के लिए ही।
2: ये बात तो है दादा। अच्छा गजबी दादा, सुना है कि वो लोग देश के लिए अपने घर परिवार, माँ बाप बीबी और यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को ऐसे ही छोड़कर घर से चले जाते थे देश सेवा के लिए।
0: इसीलिए तो बेटा उन्हें आजादी के दीवाने कहते थे।
2: दादा आपकी बातें सुनकर तो अब हमारी भी सर्दी दूर होने लगी है।
0: बेटा आज हम तुम्हें पंडित जगतराम भारद्वाज की कहानी सुनाते हैं।
2: पंडित जगतराम भारद्वाज? दादा हमने तो आपसे प्रेरणा लेकर आजादी की काफी किताबें पढ़ी हैं, पर पंडित जगतराम भारद्वाज का नाम तो हमने कभी नहीं पढ़ा।
0: बेटा ऐसे हजारों लाखों देशभक्त हैं।
2: अच्छा।
0: जिनका भले ही आज किताबों में नाम दर्ज ना हो,
2: हाँ,
0: पर उनके योगदान हम कभी भुला नहीं सकते।
2: ये बात तो है दादा। तो दादा आज पंडित जगतराम भारद्वाज के बारे में ही बताओ ना दादा।
3: ठहरो दादा, पहले एक चाय और मंगा लेते हैं, फिर कहानी सुनेंगे। अरे छोटू, इधर 3 चाय और 1 प्लेट भजिया और लगाना
1: जी।
2: अरे ये मरा यार भूख के मारे,
3: यार मुझे भूख कंट्रोल ही नहीं होती, क्या करूं।
2: दादा आप तो पंडित जगतराम भारद्वाज के बारे में सुना।
0: हाँ तो अब सुनो पंडित जगतराम भारद्वाज की गाथा।
2: हाँ सुना दादा, सुना।
0: बेटा गदर के नाम से भला कौन वाकिफ नहीं होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे परतंत्र भारत की उस पत्रिका की जिसका नाम ही था गदर।
2: अच्छा ये पत्रिका का नाम था गदर।
0: इसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी।
2: अच्छा।
0: लोग इसे चाव से पढ़ते और अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले तमाम आंदोलनों को और तेज करते।
2: अच्छा।
0: अंग्रेज अधिकारी इस बात के लिए परेशान थे कि ये अखबार आखिर लोगों के हाथों पहुंचता कैसे है। यही नहीं, अंग्रेजों को तो भारतीयों की देशभक्ति से भी काफी चिढ़ थी।
2: वो तो होगी।
0: वे एक देशभक्त को मारते तो 10 और देशभक्त उनके सामने खड़े हो जाते।
2: क्या बात है।
0: अरे कई बार तो उनकी बंदूकें भी जवाब देने लगी। आज हम एक ऐसे ही भारतीय देशभक्त की बात कर रहे हैं जिसने देशभक्ति विदेश जाकर सीखी।
2: क्या बात कर रहे हो दादा, देशभक्ति विदेश में जाकर सीखी, वाह।
0: हाँ बेटा, स्वतंत्र देश अमेरिका में रहकर उन्होंने पराधीनता को समझा और भारत की स्वतंत्रता के लिए वहीं से काम करने लगे।
2: अच्छा।
0: माटी के इस सपूत का नाम था पंडित जगतराम भारद्वाज।

0: प्यारा सिंह, आज हमारा शहर भाई दिखाई नहीं दे रहा।
1: अरे उसकी कुछ मत पूछो।
0: अच्छा,
1: वो तो जहाँ भी होगा भारत की आजादी के बारे में ही सोच रहा होगा।
0: गलत, सरासर गलत। वो केवल सोचता नहीं है बल्कि करता भी है।
1: अरे हाँ, मैं गलत कह रहा था। यहाँ अमेरिका में रहकर भी उसका तो एक ही सपना है कि किसी भी तरह से भारत आजाद हो जाए।
0: अच्छा, सुना है आजकल उन्होंने युगांतर आश्रम को ही अपना स्थायी निवास बना लिया है।
1: वो भला कैसे?
0: अरे प्यारा सिंह भाई, इतना भी नहीं जानते? लाला हरदयाल ने उन्हें ही तो गदर के प्रकाशन का जिम्मा सौंपा है।
1: ये अच्छा हुआ, लाला स्वयं गदर पार्टी का काम देखते हैं और हमारे शायर साहब पत्रिका का काम।
0: प्यारा सिंह, वैसे देखा जाए तो पत्रिका हमारे सभी साथियों को समय पे मिल रही है। अरे ये बहुत बड़ी बात है।
1: आखिर क्यों ना मिले? हमारे शायर साहब खुद ही उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपनी कविताओं, ओजस्वी लेखों आदि से संवारते जो है।
0: लाला हरदयाल जो चाहते थे वो सब उस गदर में हो रहा है।
1: कई बार तो लगता है कि लाला की गदर पार्टी जो नहीं कर पाती वो शायर साहब की गदर पत्रिका कर देती है।
0: हाँ सही कहा प्यारा सिंह, ये सब हमारे शायर साहब की कलम का ही कमाल है कि वो इतने ओजस्वी लेख और कविताएं लिख देते हैं कि सूखती रगों में भी खून दौड़ने लगता है।
2: प्यारा सिंह, प्यारा सिंह,
1: क्या बात है शेर सिंह, तुम इतने घबराए हो क्यों हो?
2: अंग्रेज हमारे शायर साहब को खोज रहे हैं।
1: क्यों?
2: अरे भाई, गदर की चर्चा आज पूरे विश्व में है। अंग्रेज ये चाहते हैं कि किसी तरह गदर खरीदने वालों की सूची उन्हें मिल जाए तो सबको एक एक करके गिरफ्तार कर लिया जाए।
1: ओह
0: लो, अब अंग्रेज इस तरह देशभक्तों को पकड़ेंगे।
2: हाँ, ये एक चिंता का विषय है कि अंग्रेजों को अब उस सूची की तलाश है।
0: लेकिन हमारे शायर साहब भी तो सूची को अपने दिलो जान से छिपा कर रखते हैं,
1: इसीलिए वो अपने साथ एक भरी हुई पिस्तौल हमेशा रखते हैं।
2: लेकिन इससे खतरा कम तो नहीं हो जाता?
0: कोई भी जासूस उस सूची को पार कर देगा और हमारे शायर साहब कुछ नहीं कर पाएंगे।
1: पर इस तरह का काम उनका ही जासूस कर सकता है।
2: हमारे शायर साहब को ये सलाह देनी होगी कि यदि उनके सोते हुए किसी ने ये सूची पार कर दी तो क्या होगा।
3: अब कोई उस सूची को पार नहीं कर सकता। ये लो सूची, लगा दो आकर।
0: अरे पंडित जी,
1: ये क्या? पंडित जी क्या कह रहे हैं आप?
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अब इस सूची की जरूरत मुझे नहीं है, इसे जला दो।
1: पर इसमें तो हमारे सभी ग्राहकों के नाम और पते हैं, यदि इसे जला देंगे तो उन्हें कतर भेजेंगे कैसे?
2: हाँ
3: सुन लो सभी साथियों, इस पूरी सूची को मैंने अब अपने दिमाग में भर लिया है, अब ये सूची मुझे कंठस्थ हो गई है।
1: वाह,
3: अब कोई अंग्रेज इसे लेकर किसी देशभक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता।
1: वाह पंडित जी, वाह
0: वाह पंडित जी वाह, हजारों लोगों के नाम और पतों को आपने अपनी जुबान पर बैठा लिया, यही है सच्ची देशभक्ति। और साथियों, हम लोग तो केवल नारे लगाकर ही रह जाते हैं।
3: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है साथियों, आप लोगों का योगदान भी कोई कम नहीं है। आप लोग ना होते तो भारत से इतनी दूर रहकर हम अपने देश की आजादी के बारे में कैसे सोच सकते थे।
2: वाह पंडित जी वाह, श्रेय देना तो कोई आपसे सीखे। इतना बड़ा काम इस तरह से चुटकी में कर दिया और श्रेय दे रहे हैं हमें।
1: हाँ।
2: असली क्रांतिकारी तो आप ही हैं, सच कहता हूँ, आपका जवाब नहीं है पंडित जी।
4: तो ऐसे थे हमारे पंडित जी।
5: अच्छा।
4: उर्फ पंडित जगत राम भारद्वाज।
5: अच्छा।
4: उर्फ जगत राम हरियाणवी उर्फ खाकी, ये एक सच्चे देशभक्त थे। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकना इन्हें भी खूब आता था। काला पानी की सजा भी इन्हें अपने संकल्प से दूर नहीं कर पाई, बल्कि उससे ये तो और भी दृढ़ हो गए।
5: अच्छा।
4: युगांतर आश्रम में झाड़ू लगाने का काम हो।
5: हाँ?
4: या फिर गदर के लिए धारदार संपादकीय या ओजस्वी कविताएं लिखने का काम हो।
5: अच्छा।
4: ये हर काम को बखूबी अंजाम देते थे। गदर का काम चल ही रहा था कि आ पहुंची तारीख 10 मई। यही दिन था जिस दिन 1857 में आजादी का पहला शंखनाद भारत में गूंजा था।
2: साथियों, ये देखो गदर कांक, कितनी ओजस्वी कविता लिखी है हमारे पंडित जी ने। सुनो।
1: सुनाओ।
2: आज का दिन 10 मई है, दिन वही ये आज का, जबकि शरबत था शहादत का बुजुर्गों ने पिया, गूंज आती थी यही, मारो फिरंगी आज तुम, कौम के झंडे को गाड़ो, थाम तक तो ताज तुम।
0: वाह वाह, ये एक अच्छा अवसर है। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया है। अगर पूरे विश्व से हजारों की संख्या में देशभक्त भारत पहुंचे तो आजादी की लड़ाई को और तेज किया जा सकता है।
1: तुम केवल सोचते रहो, और अमेरिका और कनाडा से हमारे हजारों साथी निकल भी पड़े हैं।
2: अरे वाह, तो हम क्यों पीछे रहें?
3: आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सबके जाने की व्यवस्था कर दी है। हम सब प्रिंसेस कोरिया से हांगकांग जाएंगे, वहाँ से दूसरी व्यवस्था है।
1: अरे वाह पंडित जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। चलो, काफी दिन हो गए अपनी मातृभूमि के दर्शन को, आंखें तरस गई थी। चलो साथियों, हम सब तैयारी करें भारत जाने की।
2: हाँ हाँ, चलो चलो
1: चलो भाई, चलो चलो।
0: लो साथियों, हमारा ये प्रिंसेस कोरिया चल पड़ा है। आप सभी शायद नहीं जानते कि इस जहाज में कितने ही क्रांतिकारी हमारे साथ हैं। अब आप सभी उनके अनुभव सुने और अपनी भावी रणनीति तैयार करें।
1: आखिर हम अपने उन साथियों को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, कुछ तो बताओ सही।
2: अरे प्यारा सिंह, इस जहाज पर पंडित जगत राम भारद्वाज तो है ही, इनके अलावा सरदार ज्वाला सिंह, पृथ्वी सिंह और इंद्र सिंह आदि सभी तो हैं।
0: अरे शेर सिंह, मुझे पता चला है कि इस जहाज में कुल 155 क्रांतिकारी सवार हैं।
3: बिल्कुल सही कहा भाई आपने, ये सभी हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं हैं।
1: क्या?
3: क्योंकि कई लोग छद्म वेश में हैं।
1: ओह, पर अंग्रेजों को कैसे पता चल गया कि इतने सारे क्रांतिकारी इस जहाज पर सवार हैं? अब देखते रहना, वो अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम सब परेशानी में पड़ जाएं।
3: उनका काम है हमारे काम में रोड़ा अटकाना, और हमारा काम है उस रोड़े को हटाकर अपना काम करना। मजा तो इसी में आता है जब अवरोध अधिक हो।
2: कैसी बात करते हैं आप पंडित जी, ऐसे में भला हम अपना धैर्य कैसे बनाए रखें?
3: बहाव के साथ तो कोई भी बह सकता है भाई, पर बहाव के खिलाफ तैरना ही तो सबसे बड़ी चुनौती।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
1: और इस चुनौती को स्वीकार किया है आपने पंडित जी?
3: नहीं, केवल मैंने ही नहीं बल्कि हर उस साथी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है जिसने देश की माटी का कर्ज उतारने के लिए क्रांति की राह पकड़ी है।
1: वो तो है ही पंडित जी, पर क्या हमारे इतना करने से क्या देश आजाद हो जाएगा?
3: हमें हमारे देश को आजाद कराने के लिए केवल इतना ही करना है कि हमसे जो भी बन पड़े हम करें, बाकी सारे काम आसान होते जाएंगे। चुनौतियां जितनी अधिक होंगी उतना मजा आएगा।
2: वाह पंडित जी वाह, लगता है आपको चुनौतियों ने ही इतना तराशा है।
3: हीरे को जितना तराशा जाता है वो उतना ही मूल्यवान होता है। होने को तो वो एक कोयला मात्र है, पर उसके लिए की गई मेहनत का ही रंग है जो उसे अनमोल बनाता है।
0: वाह वाह पंडित जी वाह, हमें तो आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है। जी चाहता है कि आप बोलते रहें और हम सभी साथी सुनते रहें।
3: जी, आपकी ये चाह आज शाम को पूरी हो जाएगी जब आप सभी डेक पर मेरे प्रवचन सुनेंगे।
1: क्या बात है पंडित जी, तब तो मजा आ जाएगा, हमारे अन्य साथियों से भी मुलाकात हो जाएगी।
4: इस तरह से कभी प्रवचन, कभी शेर व शायरी, कभी किस्से कहानियों का दौर जहाज पर चलता।
5: अच्छा,
4: तो कभी कोई गुप्त योजनाएं बनती। इस तरह से न जाने कई दिन बीत गए और क्रांतिकारियों का ये जहाज बंदरगाह पहुंच गया।
2: लो भाई, रात तो आराम से गुजर गई, अब देखते हैं कलकत्ता पहुंचने पर क्या होता है हम सबके साथ।
0: ये क्या, अभी तो हम कलकत्ता पहुंचे ही नहीं और हमारा जहाज रुके?
3: रुक गया नहीं बल्कि रोक दिया गया।
0: क्यों?
3: आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, किनारे से एक संकेत दिया गया था और हमारा ये जहाज यहीं रोक दिया गया है।
2: अब क्या होगा पंडित जी?
3: देखते जाओ और सतर्क रहो, घबराना बिल्कुल नहीं। आप सभी अपने हथियार मुझे दे दे, बाकी मैं देख लूंगा।
2: ये लीजिए।
1: पंडित जी वो देखिए, नावों पर सवार होकर डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं।
3: ध्यान से देखो साथियों, वो डॉक्टर के वेश में पुलिस वाले हैं।
0: पुलिस
3: कुछ भी कर सकते हैं, हमारी तलाशी लेने आ रहे हैं।
1: आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी,
5: सबकी तलाशी लो, मगर ध्यान से।
0: जी।
5: ये लोग बिना हथियार के यहाँ आ ही नहीं सकते।
0: ले रहा हूँ साहब, ले रहा हूँ तलाशी, ले रहा हूँ अभी साहब, सबकी तलाशी ले रहा हूँ, किसी के पास कुछ भी नहीं मिल रहा है।
5: बेवकूफ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब अपने साथ अपने हथियार जरूर लेकर आए होंगे, बिना हथियार के ये लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।
0: साहब मैंने सबकी तलाशी ले ली, अच्छी तरीके से ले ली है, किसी के पास कोई हथियार नहीं मिला साहब, अब मैं क्या करूं?
5: ऐसा कैसे हो सकता है, फिर से तलाशी लो।
0: सचमुच साहब किसी के पास कोई हथियार नहीं है, मैंने बारीकी से तलाशी ली है।
5: ठीक है, सभी को जहाज से उतरते ही गिरफ्तार कर लेना।
0: जी साहब, ठीक है। ए, चलो सब उतरो नीचे लाइन बना के।
3: पुलिस से बचने के लिए कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर मैं उस यात्री के वो फटे पुराने कपड़े पहन लूं और अपना भेष बदल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं कर सकेगा और वो मुझे सब के सब भिखारी ही समझेंगे। चलो पंडित, यही तरकीब ठीक है। देखो यात्री भाई, क्या तुम मुझे अपने कपड़े दे सकते हो, मेरे कपड़ों के बदले में अपना ये फटा पुराना कोट पैंट?
6: अरे साहब क्यों मजाक करते हैं, ये कपड़े मैंने कोई शौक से तो पहने नहीं है, जो आपकी कीमती कपड़े के बदले ऐसे दे दूं।
3: मैं सच कह रहा हूँ भाई, आज मेरे साथियों को बचाने में यही कपड़े काम आएंगे।
6: अगर ऐसा ही है तो ले लो मेरे कपड़े और बचा लो अपने साथियों को, इस तरह मैं भी समझूंगा कि मैंने भी भारत माता के लिए कुछ किया।
3: तुमने कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है भाई, मैं तुम्हें वंदन करता हूँ।
6: मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर साहब।
3: मुझे भी।
6: ये लो मेरा कोट और मेरी पैंट।
3: धन्यवाद। अब क्या किया जाए, हथियारों की पेटी तो मैंने डॉक्टर के कमरे में छिपा दी है, अब इन कपड़ों में कुली बनकर निकल जाता हूँ।
5: अरे पकड़ो, अरे बेवकूफ, उस फटे पुराने कपड़े वाले को पकड़ो।
0: पकड़ो, पकड़ो।
3: अरे लो, रुक गया साहब, कहिए क्या बात है?
0: बताओ क्या इस पेटी में, खोलो पेटी खोलो।
3: आप ही देख लो ना साहब।
0: साहब इस पेटी में तो हथियार ही हथियार भरे हैं।
5: पकड़ो पकड़ो, उसे जाने ना पाए।
0: अरे साहब किसे पकड़ूं, वो तो निकल गया, भाग गया।
5: अरे बेवकूफ, कहीं का एक काम ठीक से नहीं कर सकता।
4: तो इस तरह से अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए पंडित भारद्वाज ने न केवल अपने साथियों को बचाया, बल्कि खुद गिरफ्तार होकर भी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल गए।
5: अच्छा,
4: ये तो तब पता चला जब क्रांतिकारियों को एक ट्रेन से लाहौर ले जाया जा रहा था।
5: अच्छा,
4: तो मुगलसराय रेलवे स्टेशन में पंडित भारद्वाज अपने चिरपरिचित मुद्रा के साथ घूमते हुए देखे गए।
5: अच्छा,
4: उन्हें पुलिस वाले तो पहचान नहीं पाए, किंतु उनके सभी साथियों ने पहचान लिया। इस तरह से पंडित जी खतरों से खेलते हुए अपना काम करते थे।
5: अच्छा,
4: किसी तरह वो लाहौर पहुंचे और गदर का काम एक बार फिर जोर शोर से चलने लगा।
5: वो तो चलना ही था दादा।
4: अब तो उनकी गिनती करतार सिंह, विष्णु गणेश पिंगले जैसे महत्वपूर्ण नेताओं के साथ होने लगी। इसके बाद पंजाब के लोंडोवाल स्टेशन के पास एक सभा बुलाई गई।
2: अरे सुनो साथियों, साथियों सुनो, आज हम सब एक महत्वपूर्ण काम के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब हमें सहन नहीं होती ये गुलामी की जंजीरें, हमें अपनी भारत माता को इन जंजीरों से मुक्त कराना है। आज हमारे साथ गदरवीर बाबा विधान सिंह, बाबा प्यारा सिंह, सरदार करतार सिंह, समर सिंह तथा पंडित जगत राम भारद्वाज भी शामिल हैं।
0: लेकिन लेकिन हमें करना क्या है पंडित जी?
2: आज हमें गदर की रूपरेखा बनानी है।
0: वो तो बनकर रहेगी, पर कृपाल सिंह के रहते ये कैसे हो सकता है?
1: क्या मतलब है तुम्हारा?
0: अरे उस गद्दार ने तो इसकी सूचना सरकार को दे दी है।
1: मारे गए, अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए।
2: पंडित जी आप अफगानिस्तान निकल जाएं।
1: जी।
2: जहाँ आपको हथियार मिलेंगे।
3: ठीक है, कहीं कोई और गद्दार तो वहाँ नहीं है?
1: वो भी तो उससे तुम निपट लेना।
3: ठीक है समर सिंह, मैं तो चला।
4: पर पंडित जी अधिक दूर नहीं जा पाए, पेशावर में उन्हीं के किसी साथी ने गद्दारी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
3: अच्छा,
4: उनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। सभी पर लाहौर षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चला। सभी लाहौर में ही कैद कर लिए गए। इस दौरान उनके साथ थे बाबा सोहन सिंह भकना, सरदार करतार सिंह सराबा, विष्णु गणेश पिंगले, सरदार जगत सिंह, हरनाम सिंह और पृथ्वी सिंह।
7: हमारा हिंद भी फूलेगा फलेगा एक दिन, लेकिन मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पहले। हमारा हिंद भी फूले फलेगा एक दिन, लेकिन मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पहले।
1: इस सामूहिक गीत से जेल की दीवारें तक हिलने लगी हैं।
0: अरे प्यारा सिंह, ये पंडित जगत राम भारद्वाज का गीत है, जिसे गाते हुए पंडित जी समेत उनके साथी आज अदालत जा रहे हैं, जहां उन पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई होगी।
1: पृथ्वी सिंह, लगता है सभी को फांसी हो जाएगी।
5: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या हो रहा है? इन्हें एक साथ नहीं, पांच पांच की टोलियों में हमारे सामने लाओ।
2: साथियों, हमें पता नहीं है कि किसे मौत की सजा हुई है और किसे काला पानी की।
1: सजा तो हम भारतीयों का गहना है भाई, पर प्रथम लाहौर षड्यंत्र की जिम्मेदारी तो केवल सात लोगों ने ली थी, पर गिरफ्तारियां इतनी अधिक ना जाने क्यों हो गई।
0: ये अंग्रेज जो ना करें वो थोड़ा है।
1: अरे वो तो हमारे पंडित जी ने अपने साथियों के साथ अपना नाम भी दे दिया और पूरे षड्यंत्र की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ऐसे साथी मिलते कहां है दोस्तों।
3: साथियों, मुझे खुशी है कि उन 24 सपूतों में मेरा नाम भी है जिन्हें फांसी की सजा हुई है।
4: पर पंडित जी, हमें क्यों छोड़ दिया?
3: तुम लोगों को दूसरे बड़े बड़े काम करने हैं ना, इसलिए।
2: अरे साथियों, मैंने सुना है कि इन 24 फांसियों के खिलाफ देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है, लोग तो सड़कों पर उतर आए हैं।
4: हाँ, इसका मतलब यही है कि अब सरकार इस फैसले पर फिर से विचार करेगी, और फिर भी इतने विरोध के बाद यदि सरकार नहीं चेती तो हो गया बंटाधार।
3: ऐसा नहीं है साथियों, हम जेल के अंदर हैं तो क्या हुआ, हमारे दूसरे साथी जो बाहर हैं वो भी अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं।
4: यानी वाइसराय ही इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे?
3: वो तो करना ही पड़ेगा, देश भर में इस फैसले के खिलाफ आंदोलनों का तूफान ही खड़ा हो गया है।
5: ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुमको पता नहीं 24 में से केवल 7 को ही फांसी की सजा हुई है, वो बाकी को काला पानी।
4: जेलर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि फांसी किसे हुई है?
5: क्यों नहीं, सुनो, फांसी की सजा पाने वालों में बख्शी सिंह, विष्णु गणेश पिंगले, सुरेंद्र सिंह वल्द ईश्वर सिंह, सुरेंद्र सिंह वल्द भूरा सिंह, हरभजन सिंह, जगत सिंह और करतार सिंह सराबा।
3: अरे, इसमें मेरा नाम नहीं है जेलर साहब, लगता है आपसे कहीं कुछ भूल हुई है, मेरा नाम तो इसमें होना ही था।
5: खैर मनाओ पंडित जी, तुम्हारे गले पर फांसी का फंदा आते आते रह गया।
3: लेकिन आखिर हुआ क्या?
5: अभी तो तुम काला पानी जाओ पंडित, वैसे भी बहुत हो गया इस जेल में तुम्हारा प्रवचन, अब देखते हैं वहां से कैसे बचकर आ पाते हो।
4: अपने प्रिय साथियों को जब फांसी होगी तब क्या नजारा होगा पंडित जी।
3: फख्र है भारत को, करतार तू जाता है आज, साथ अपने जगत पिंगले को लिए जाता है आज, है जगाया हिंद को करतार तेरी मौत ने, कसम हर हिंदी खून की खाता है आज।
4: वाह पंडित जी वाह वाह, जिन्हें फांसी हुई है उन साथियों के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ और हो ही नहीं सकती।
3: हमारे साथी तो निछावर हो गए देश के लिए, अब हम चले काला पानी, देखते हैं वो हमारी हिम्मत को कैसे तोड़ पाता है।
4: हाँ पंडित जी।
8: और इस तरह से पंडित जगतराम अपने साथियों के साथ काला पानी भेज दिए गए।
9: काला पानी?
8: हाँ, वहां उन्हें भी उन सभी यातनाओं से होकर गुजरना पड़ा जिसके लिए वो बदनाम था। बदन पर बेतों की मार के निशान ही सब कुछ बयां कर जाते थे। बाकी डंडा बेड़ी की सजा, अंधेरी कोठरी, कोलू का बेल बनाकर तेल निकाले जाना, रोज 20-20 शेर गेहूं पिसवाए जाते रहना, इसके अलावा पानी और खुराक की मात्रा आधा कर दी जाना,
9: अरे
8: तो आम बात थी। इन अत्याचारों के विरोध में क्रांतिकारियों ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी।
6: अच्छा, आखिर क्या होगा इस हड़ताल से? अत्याचार तो कम होने वाले नहीं है, लेकिन हमारी हिम्मत भी कम नहीं है। देखना, एक दिन ये अत्याचार ही पस्त हो जाएगा हमारी हिम्मत के सामने।
3: धीरज रखो साथियों, इन्हें मालूम नहीं है कि इनके अत्याचारों की खबर हमारे देश में लग गई है और वहाँ विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है।
6: पर पंडित जी, हमारे पृथ्वी सिंह जी की हालत बहुत बिगड़ गई है, उनका क्या करें? आप
3: उनकी हालत ठीक करने के लिए एक काम करो।
6: वो क्या पंडित जी?
3: ये मेरे खून से लिखा गया पत्र है
6: जी।
3: जाओ भाई पृथ्वी सिंह को दे दो।
6: सचमुच पंडित जी, आप अब कविताओं से प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं तो अपने खून से ही खत लिख दिया। आप धन्य हैं पंडित जी, धन्य हैं आप।
3: शुक्रिया साथी, पर उधर तो देखो जेलर साहब इधर ही आ रहे हैं। देखो कौन सा संदेशा लाए हैं।
5: सुनो कैदियों, तुम सबको यहां से जाना पड़ेगा। अब तुम सब भारत की जेलों में जाकर सड़ोगे।
3: जेलर साहब, जब ये काला पानी की सजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो हमारे देश की जेलें हमारा क्या बिगाड़ लेंगी?
5: पंडित, पहले तो राजमहेंद्री की जेल, फिर नागपुर की जेल जाना पड़ेगा तुम्हें।
3: चले जाएंगे जेलर साहब, वहां भी चले जाएंगे।
9: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
10: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसण भांडण आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
11: तेरे जैसा यार कहां,
10: दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जात।
12: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
10: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर अबॉब फिरकत। त्याच सोबत
13: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
10: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
14: पहला नशा, पहला खुमार।
10: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
3: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्माकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
4: ओम शांति.
3: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
4: थैंक यू.
3: लास्ट टाइम मैं आपसे एक बात कर रहा था, एक बहुत सुंदर बात आपने कही कि जब बच्चा रोता है तो अपने दर्द के लिए रोता है, भूख के लिए, पेट में दर्द के लिए, या नींद आ रही है तो रोता है, लेकिन वो ब्लेम नहीं करता.
4: बच्चा रोता है लेकिन वो ब्लेम नहीं करता, तो उसमें क्या होगा? वो रो रहा है लेकिन वो सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहा है. रेजिस्टेंस की एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि ये रॉन्ग है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए वो बच्चे के साथ की जो हमारी एनर्जी है वो हमेशा एक्सेप्टेंस की होती है. अब इसी तरह बच्चा भी कुछ भी करे, एक छोटा बच्चा कुछ भी करे, पेरेंट कभी छोटे बच्चे के लिए रॉन्ग नहीं कहता है. आधी रात को उठ जाए, सारी रात जागता रहे, कहेंगे नेचुरल है ना, नेचुरल है, बच्चा है तो करेगा ही. दिस एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये उस एज में कितनी प्यारी चलती है. लेकिन धीरे धीरे हम ये एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि वो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग से चलना शुरू हो जाए. एंड जब वो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट से नहीं चलेगा, तब हम उसके राइट्स को कई बार
3: रॉन्ग
4: कहना शुरू कर देंगे. और जैसे ही हम उसके राइट को रॉन्ग कहेंगे, वो हमारे राइट को रॉन्ग कहेगा, और फिर हम दोनों के बीच एक गैप आने लगेगा. एंड व्हाट इज वेरी सटल, जो हम नहीं रियलाइज करते, कि ये जो गैप है, दिस इज एनर्जी ऑफ डिसरिस्पेक्ट. यू नो, इफ आई क्रिएट दिस थॉट फॉर यू कि आप रॉन्ग हैं, तो आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू. और जब दो आत्माओं के बीच रिस्पेक्ट की एनर्जी नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन, कोई भी कॉन्वर्सेशन, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना, वो पॉसिबल नहीं है. कोई भी बात को रिजोल्व करना बहुत इजी है अगर रिस्पेक्ट इंटैक्ट है. तब हर बात सॉल्व हो जाएगी, हर बात का सोल्यूशन निकल आएगा. अब हम कहते नहीं, रिस्पेक्ट तो है ना, आई रिस्पेक्ट माई वाइफ, आई रिस्पेक्ट माई चाइल्ड रिस्पेक्ट मी, बट नो, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग. उस क्षण वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग जब हम कह रहे हैं मैं राइट हूं, आप रॉन्ग हैं. आप देखो, एक छोटा बच्चा है, हमें अपनी हर बात बताता है, आके सब चीज, इवन छोटी छोटी चीज, लाइक आज टिफिन में मेरा फ्रेंड ये लेकर आया, आज टीचर ने ये बोला, आज क्लास में ये हुआ, वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा. वो छोटा बच्चा आके, माँ सुन भी नहीं रही है तो भी वो अपनी सारी बात सुनाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, माँ मुस्कुराती जाएगी. इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, वो अपनी कई बातें हमसे छुपाना शुरू कर देता है. और फिर हम एक ऐसे स्टेज पर आते हैं जब पेरेंट बच्चे से पूछता है, आज क्या किया सारा दिन, कहाँ गए थे, किससे मिले.
3: बोलते नहीं है, आजकल बताते नहीं हो, क्या बात है,
4: अब ये क्या हुआ. वही पेरेंट, वही चाइल्ड, वही मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. वो बच्चा हर चीज बताता था, बताना चाहता था, बता के उसको अच्छा लगता था, बिकॉज यू लव टू शेयर विद योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. और वो ही बच्चा अब नहीं बताता, पूछने पर भी नहीं बताता. पहले बिना पूछे बताता था, अब तो पेरेंट बच्चे के गोल गोल घूमता है, कहाँ गए थे, क्या किया, उसके कमरे में उसके पीछे जाएंगे, क्या कर रहे हो. और बच्चा कहेगा, जाओ अभी आप अपना काम करो, मेरा दरवाजा बंद करके जाओ बाहर. वॉट हैज हैपेंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि फिर नहीं तो हम इसको एक जस्टिफिकेशन दे देंगे एंड हम कहेंगे जेनरेशन गैप. देयर इज नो जेनरेशन गैप.
3: अंग्रेजी में कोई टर्म ले देंगे,
4: विच इज, एंड ये देकर हम उस चीज को सॉल्व करने से पीछे हो जाते हैं. हम कहते हैं ये नेचुरल है,
3: इट इज नॉर्मल,
4: नॉर्मल. एंड जैसे ही नॉर्मल कहा, तो उसको ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा. अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या हो गया, क्यों वो बच्चा मुझे अपनी बातें नहीं बता रहा. क्योंकि अगर अभी भी हम उसको ठीक नहीं करेंगे, तो एज द चाइल्ड ग्रोज अप, वो अपनी बहुत सारी बातें बताना हमें बंद कर देगा. जब वो बच्चा इतना था, वो जो कुछ बताता था, हम मुस्कुराते थे. मतलब हम उसकी हर बात को एक्सेप्ट करते थे, एक्सेप्ट भी करते थे, सुनते थे और मुस्कुराते थे, हम एक्सेप्ट करते थे। वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, आज जो हुआ वो बहुत प्यारा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, अब अगर वो बच्चा कहे आज स्कूल से आके, आपको पता है हमने क्या किया, आज हम सब स्कूल बंक करके हम मूवी देखने गए। सी, अब ये रिएक्शन हो जाएगा, इतना प्यारा भी ओ नहीं होगा उस टाइम पे, उस टाइम इट विल बी अ लिटिल। वो जो मुस्कुराहट पहले आती थी उसकी शेयरिंग सुनने पर, वो मुस्कुराहट गायब हो गई और मुस्कुराहट की बजाय अब डांट भी आ जाएगी कि ये सिखाया तुमको, स्कूल इसलिए भेजता हूँ मैं, तुम्हारी इतनी महंगी फीस इसलिए भेजता हूँ, तुम बंक करके बहुत लंबा
3: पैसे कहाँ से लाए, कौन दोस्त है तुम्हारे आजकल।
4: तो बच्चा थोड़ा सा, फॉर देम जब ये पहले होना शुरू होता है, फॉर देम इट कम्स एज अ बिग शॉक, इनको क्या हो गया, ये तो मेरी हर बात सुनकर स्माइल करते थे, हंसते थे, आपस में डिस्कस भी करते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे, आज क्या हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद उस बच्चे ने आकर कहा, आज आपको पता है क्या हुआ, आज मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक सिगरेट ऑफर की, मैंने थोड़ी सी ट्राई की, घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ये जब दो बार, चार बार, छह बार होने लगा, तो बच्चे ने देखा अब कुछ चीजें बदल गई है, अब जब मैं शेयर करता हूँ ये खुश नहीं होते हैं। उसके लिए डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, अब बच्चे के लिए वो वाली एज में भी राइट था वो, और वो इस एज में भी जो कर रहा है उसके लिए वो राइट है, लेकिन उसको यहाँ से जो रिएक्शंस मिलने लगे हैं वो बदल चुके हैं। पहले एक्सेप्टेंस, हंसना, मुस्कुराना, और अब अप्रिसिएशन की बजाय रिजेक्शन, रेजिस्टेंस। जैसे पहले उसकी बातें घर में एक हंसी का टॉपिक और एक खुशी का टॉपिक बनती थी, अब उसकी बातें घर में एक चिंता का और एक गुस्से का टॉपिक बन जाती है ना, पूरी फैमिली डिस्कस करती है। इट्स नॉट जस्ट वन एंगर, इट्स अ डिस्कशन इन द हाउस। एंड फिर लेबल क्या लगेगा, बिगड़ गया है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, अब इसका हम क्या करें। जब ऐसी एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शन मिलेगा, तो वो बच्चा अब अपनी बातें बताना बंद कर देगा। हमें ये लगेगा कि उसने बताया, हमने डांटा, उसने बताना बंद कर दिया, हम सोचेंगे उसने करना बंद कर दिया। वो करना बंद नहीं करेगा, वो सिर्फ करके बताना बंद करेगा। वो बताया मैं मूवी गया, बंक किया, हमने डांट दिया, नेक्स्ट टाइम वो नहीं बताएगा।
3: अच्छा, मतलब अभी आजकल वो हमको नहीं बताता तो हम समझते हैं कि वो सुधर गया,
4: हमने कहा ना डिसिप्लिन कर दिया
3: डांट के।
4: उसने बताया मैंने उस दिन सिगरेट पी, हमने सबने जोर से डांट दिया, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चला, इसका मतलब उसने करना बंद कर दिया। उसने करना नहीं बंद किया, लेट अस ऑलवेज रिमेम्बर दिस, उसने सिर्फ करके बताना बंद कर दिया। और जब करके बताना बंद हो जाता है, तब बातें थोड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। हमारे पास सारा दिन में कितने ईमेल्स आते हैं, जो बच्चे अपनी छोटी बड़ी गलतियां, जो अब उनको लगता है कि वो गलती थी, जब कर रहे थे तो गलती नहीं लगी, लेकिन वो गलतियां अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, आस्किंग फॉर सोल्यूशन, लेकिन लास्ट लाइन उसमें ये होती है, प्लीज माई पेरेंट्स शुड नॉट कम टू नो दिस, प्लीज इसको टीवी पे नहीं डिस्कस करना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि ये मेरी बात है। एंड दिस इज नॉट वेरी गुड न्यूज कि एक बच्चा अपने जीवन की प्रॉब्लम को लेकर अपने ही पेरेंट के पास नहीं जा पाता, स्ट्रेंजर्स के पास जा रहा है
3: और सीक्रेटली,
4: दिस इज नॉट नाइस। आज काउंसलर्स की क्यों जरूरत है, आज एक बच्चे को काउंसलर से क्यों बात करनी पड़ रही है, वो ही बात ना, उसकी जीवन की बात ही करता है ना वो काउंसलर से जाके, अपनी प्रॉब्लम ही बात करता है ना, मतलब पेरेंट से नहीं कर सकता, एक स्ट्रेंजर को पैसे दे के वहां जाके बात करेंगे, क्या बात करनी है।
3: मैंने छोड़ा था अपने बेस्ट फ्रेंड से या अपने रिलेशनशिप में, जिसको मैं बोलता था बार बार, क्योंकि हर चीज में जब भी मैं उनको बताने गया तो मुझे टोकना शुरू हो गया। आजकल आप ऐसे करते हो बट आप ऐसे नेचुरली ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा, नेचुरली क्या, सुनते नहीं थे, मुझे सिखाते सिखाते सिखाते लगते सिखाने लगते थे बार बार बार बार। मैंने बोला यार, एक तो मैं दुखी हो कि आपके पास कुछ आपको सुनाने आ रहा हूँ और आप कम से कम सुन के कुछ मत बोलो, दूसरे दिन सिखाओ.
4: दिस इज सो ब्यूटिफुल. सी अंडरलाइन दिस. जब हम अपने मन की बात, अपनी प्रॉब्लम, इवन इफ वी आर रॉन्ग, लेकिन जब हम अपनी बात किसी को सुनाने जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
3: सुन तो लो.
4: और अगर वो मुझे टोकने लग जाए और मुझे गलत बोले, तो आपने कहा फिर मैंने बताना
3: बंद कर दिया.
4: इसीलिए वो बच्चे ने बताना बंद कर दिया. दिस इज सो ब्यूटिफुल. हम किसी से भी, इवन इस एज में, वाई एज अ चाइल्ड, किसी भी एज में हम किसको अपनी बात सुनाएंगे? जो हमारी बात को पहले सुनेंगे, फिर सुन के हमारे प्रति जजमेंटल नहीं हो जाएंगे. और हम जैसे हैं, जो है, हम उनको बात बताएंगे, वो हमें एक्सेप्ट करेंगे. हाँ, एक्सेप्ट करके फिर आराम से वो हो सकता है कि हमें राइट गाइड करने के लिए एक एडवाइस भी दे देंगे, और एडवाइस अच्छी लगेगी.
3: सिस्टर, एक गुरु थे जिनके पास मैं कभी कभी जाता था पहले. तो मैंने एक बोला कि मेरा बेटा आजकल एक गलत लड़की के साथ फंसा हुआ है, मुझे गुस्सा आता है, क्या करूं, दिस दैट. यहां तक बात थी तो उनकी जो असिस्टेंट थी वो सुन रही थी. नेक्स्ट टाइम जब मैं बेटे के साथ गया तो द वे शी टॉक टू माई सन, एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम लाइफ में है. दैट इज वाई वी गो टू अ डॉक्टर, प्रोफेशनल. सुनता है वो, सुनते सुनते आप खुद ही, बोलते बोलते आप अपना ही सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम.
4: परफेक्ट.
3: मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि वी डोंट हैव टू टेल देम, वो खुद ही निकालते हैं क्वेश्चन.
4: परफेक्ट. इसका मतलब सामने वाले का रोल क्या है?
3: सुनना.
4: लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, नॉन जजमेंटल होकर सुनना. मैं आपकी बात सुन सकती हूँ. सपोज मैं प्रैक्टिस कर लो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, कि अब कोई बात मेरे से शेयर करेंगे, आई विल नॉट इंटरफेयर. मैं इंटरफेयर इन द सेंस बीच में बात के, आई विल नॉट इंटरफेयर. मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बात को काटू भी नहीं, मैं उनको गलत भी नहीं बोलू, तो मैं सिर्फ सुनू. बिकॉज अ लॉट ऑफ अस आर डूइंग दिस आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि सिर्फ सुनना है. लेकिन सुनना सिर्फ यहाँ नहीं है. सुनना यहाँ है. और सुनना अगर है विद द राइट एनर्जी, मतलब सुनते हुए उनके प्रति कोई जजमेंटल थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं.
3: वो जो गुरु जिनको मैं अपने दिल की बात बोलता था, उन्होंने उसको भी प्योर आत्मा देखा, मुझे भी एक प्योर आत्मा देखा, मुझे भी एक बच्चा देखा, उसको भी एक बच्चा देखा. लेकिन थोड़े कच्चे पक्के उनके साथ वाले जो थे शिष्य या उनकी सर्विस सेवा करने वाले, वो जजमेंटल हो जाते थे. तो डिफरेंस वहीं दिखता था,
4: वहीं
3: गुरु क्या बिहेव करता है, ये कैसे बिहेव करते हैं.
4: अब
3: तो फिर हम जाके गुरु को बोलना छोड़ देते थे.
4: हाँ.
3: क्योंकि वो सुनेगी कि मैं अभी तक ड्रिंक करता हूँ या अभी तक मेरी सिगरेट नहीं छूटी, तो फिर ये मुझे उस नजर से देखेगी. तो जजमेंटल
4: कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है. अब जैसे आपने कहा कि उन महात्मा ने आपके प्रति भी जजमेंटल नहीं हुए, बच्चे के प्रति भी जजमेंटल नहीं हुए, तो आपको एनर्जी कैसी मिली?
3: प्यार की. बहुत
4: तो बताने का मन करता है. इसी तरह जो वो महात्मा आपके लिए कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते?
3: करना तो चाहिए.
4: दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू, बिकॉज हम सब ने अनुभव कर लिया है कि इक्वेशन कैसे वर्क करता है. हम सबको पता है कि कौन सी चीज एक कम्फर्टिंग एनर्जी क्रिएट करेगी और कौन सी चीज एक डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट कर देगी. काउंसलर क्या करता है? काउंसलर कोई जजमेंट नहीं क्रिएट करते हैं अंदर, क्योंकि एक उनकी अटैचमेंट नहीं है ना. एक कोई आ रहा है, अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट आ रहे हैं, वो उसके प्रति जजमेंटल नहीं होते हैं. ये एक अभ्यास है. ये अभ्यास जितना हम करेंगे हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट. और ये अभ्यास करना बहुत इजी है, क्योंकि सामने वाली आत्मा अपने संस्कारों के वश कोई कर्म करके आई है. उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी, उसके संस्कारों के थ्रू बिल्कुल राइट है. तो क्योंकि वो बिल्कुल राइट है, तो उनके प्रति जजमेंटल होना, वो मेरे राइट से राइट नहीं है. हो सकता है ना वो मेरे राइट से राइट नहीं है, लेकिन वो अपने राइट से तो बिल्कुल राइट है. तो इसलिए जब सामने वाला बिल्कुल राइट है, अगर आप ये थॉट क्रिएट कर लें, आपकी एनर्जी फील चेंज हो जाएगी.
3: सिस्टर, जैसे वो हमारे गुरु थे, उन्होंने मुझे देखा एक प्योर आत्मा, एक छोटा बच्चा, मेरा शिष्य, ठीक है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद दिया. ये जो डॉक्टर है जिन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा इसके इतने घंटे हो गए, इसके मैंने पैसे लेने हैं, इसकी बात किसी और को बोली नहीं है। दिन में ऐसे 10 लोग आते हैं, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। ये बात इसकी वाइफ को भी नहीं बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब मेरे बच्चे की बात होती है या मेरी बेटी या बेटे की, जहाँ रिलेशनशिप है, जहाँ अटैचमेंट है, वहाँ क्या करें हम?
4: जहाँ रिलेशनशिप है
3: वहाँ मैं गुरु नहीं बन सकता, ना उनका डॉक्टर बन सकता, मैं तो पिता हूँ।
4: बिल्कुल, और इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि मैं पिता हूँ तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि आई अंडरस्टैंड माई चाइल्ड।
3: पिता की ड्यूटी बिहेवियर क्या होना चाहिए?
4: पिता की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ड्यूटी, लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। एक पेरेंट की एक बच्चे के प्रति फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
3: प्यार।
4: दैट्स अंडरलाइन हो गया। एंड विच मीन्स के सामने आपका बच्चा कोई भी बात कह रहा है, कोई भी बात कर रहा है, आपकी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए।
3: अनकंडीशनल।
4: जैसे ही आप जजमेंटल हुए, आपकी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड होगी। जैसे यू सेड यू कुड फील द डिफरेंस कि जो महात्मा है वो जजमेंटल नहीं है, तो एनर्जी कैसी है? जो साथ में खड़े हैं वो सुनकर जजमेंटल है तो एनर्जी कैसे? उनके अंदर वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो अगर हम अपने बच्चे के प्रति जजमेंटल हुए तो हमारी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो गई, तो हमने अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने कहा एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की। फिर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली? वो गलत ना करे, उसको गलत को ठीक करना मेरी ड्यूटी है, उसको गलत से बचाना मेरी ड्यूटी है, उसके जीवन में कुछ गलत नहीं होना, वो सब ड्यूटी तो याद है।
3: आईना तो दिखाना चाहिए ना
4: उसको,
3: यू आर रॉन्ग,
4: यस
3: ये गलत कर रहे हो तुम, इसका ये हो जाएगा रिजल्ट, पता नहीं तुम कहाँ क्यों कर रहे हो, पता नहीं क्या।
4: रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी लिस्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई फर्स्ट ड्यूटी टूवर्ड्स एनी सोल एंड ऑफकोर्स टूवर्ड्स चिल्ड्रन, सबसे पहले कि प्यार फ्लो करता रहे, फिर उसके बाद एडवाइस। इट डजंट मीन प्यार दे रहे हैं एडवाइस नहीं दे रहे हैं।
3: कभी कभी बच्चे एडवाइस लेने आते भी
4: आते
3: नहीं,
4: भी नहीं।
3: सिर्फ सुनाना चाहते हैं और बोलते भी सुन लो मुझे छोड़ दो, बस मुझे सुनाना है।
4: वो हमारे पास प्यार के लिए आते हैं, दुआओं के लिए आते हैं, हमारी गुड विशेज और ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं, वो हमारे पास अप्रूवल और अप्रिसिएशन के लिए आते हैं। हर आत्मा को ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हर आत्मा को अप्रूवल और एक्सेप्टेंस चाहिए। और ये देखो आप हमें इस एज से सिखाया है कि बच्चा जो करता है अगर पेरेंट के चेहरे पर वो देखकर मुस्कुराहट आती है तो विच मीन्स द पेरेंट अप्रूव्स ऑफ द चाइल्ड एंड दैट मीन्स यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। एंड अगर आपने जो किया वो देख कर अगर पेरेंट के चेहरे पर मुस्कान की जगह कुछ और आ जाता है, बैड बॉय बैड गर्ल, ये उस एज से सिखाया था। तो विच मीन्स मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कि आई एम अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन फॉर मी, ये मैंने अपने बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिए, ये किस पर डिपेंडेंट थी? इफ पीपल अप्रूव ऑफ मी और डोंट अप्रूव ऑफ मी, क्योंकि मुझे इस एज से सिखाया था। एंड तो ये बिलीफ सिस्टम बना, इफ पीपल अप्रूव देन आई एम गुड, इफ पीपल डोंट अप्रूव देन आई एम नॉट गुड। दिस वॉज ट्रू और नॉट ट्रू वी डोंट नो, बट वी बिलीव दिस बिकॉज वो कंडीशनिंग वैसे बनी। अब इसमें भी पीपल में सबसे इंपॉर्टेंट पीपल कौन से? पेरेंट्स, पार्टनर, स्पाउस, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका हमें अप्रूवल चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो अप्रूवल ही प्यार की निशानी है। अगर आप अप्रूव करते हैं यू लव मी, हमारे लिए वो अप्रूवल ही हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है कि इफ माय पेरेंट अप्रूव्स ऑफ मी देन आई एम अ गुड पर्सन बिकॉज दैट इज व्हाट आई वाज टॉट एट दिस एज। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और जैसे हमने अप्रूव करना बंद किया, रिजेक्ट किया, तब जो दूसरी थोड़ी सी रिस्की चीज हुई कि कुछ और लोग थे बाहर जिसको हम फ्रेंड्स कहेंगे, जो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। पेरेंट रिजेक्ट कर रहा था और फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर रहे थे। सोल को एक्सेप्टेंस चाहिए तो वो आत्मा किस तरफ जाएगी? वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाना शुरू करेगी। अब ये और रिस्की हो गया क्योंकि पहले तो फ्रेंड्स छोटी छोटी बातें बोल रहे थे, चलो आज कॉलेज बंक करके पिक्चर जाएंगे, कल चलो आज कुछ ये ट्राई करेंगे, तो वो बच्चे के लिए भी ठीक था, वो कर रहा था। धीरे धीरे फ्रेंड्स कुछ और करने के लिए भी कह सकते हैं। जो बच्चा करना नहीं चाहता है वो उसकी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग में भी रॉन्ग की साइड पर आ रहा है, लेकिन वो अपनी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग को भी चेंज करता है और जो उसके लिए रॉन्ग था वो भी करता है, सिर्फ ताकि वो अपने फ्रेंड्स का अप्रूवल और एक्सेप्टेंस खो नहीं दे। एंड इसको हम एक और फिर वर्ड देते हैं जिसको हम कहते हैं पीयर प्रेशर, कि अब तो वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में चला गया, अब वो उनकी बात सुनता है। और जब वो पीयर प्रेशर में आ जाता है, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ दिस टुडे, कि एक क्लास में स्कूल में कुछ बच्चे कुछ करते हैं सिर्फ, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चे वो करने लग जाते हैं जस्ट सो दैट दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। एंड बहुत सारे बच्चे अपनी बात सुनाते हैं आके कि इफ वी डोंट डू इट, इफ वी डोंट डू व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग, तो फिर हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, वी नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो सिर्फ वो एक्सेप्टेंस के लिए हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं। अब ये बच्चे को अगर हम देखें, उसको पेरेंट्स से रिजेक्शन मिला कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, वो फ्रेंड से रिजेक्शन नहीं ले सकता कि वो भी बोले कि तुम रॉन्ग हो, तो वो अकेला कहाँ, फिर यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं, तो फिर वो इस तरफ चला जाता है। अगर इस बच्चे को पेरेंट्स से हमेशा एक्सेप्टेंस मिले, ये बच्चा कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जो वो करना नहीं चाहता है। ये पेरेंट्स के लिए आज के समय में बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट मींस कि जो तुम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं, वो आपके पर्सपेक्टिव से, आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो अभी, वो बिल्कुल राइट है। दिस इज रिस्पेक्ट। अगर पेरेंट बच्चे को ये रिस्पेक्ट दे दे कि आप बिल्कुल राइट हो, तो बच्चा भी पेरेंट को क्या रिस्पेक्ट देगा, आप भी जो कह रहे हो आप भी बिल्कुल राइट हो, हियर दिस इज इट। अब जब ये दो लोग नजदीक आ जाएंगे तब एडवाइस देने का टाइम आएगा। इधर होके तो एडवाइस वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट जहां बीच में है वहां अच्छी से अच्छी एडवाइस भी अच्छी नहीं लगेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी, सही नहीं लगेगी, ये गलत है, यू आर रॉन्ग, तो फिर आपकी हर बात भी तो मुझे रॉन्ग लगेगी। एंड इसीलिए आज बच्चे कहते हैं जैसे ही घर पहुंचो ये अपना शुरू हो जाते गए, तो हमारी अच्छी
3: सुनाते भी नहीं ना, जैसे सुनाती बट ऐसा क्यों, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, तुमको वो बोलना चाहिए था, तुमको ऐसे करना चाहिए था। एक मैं किसी एक एक्टर की इंटरव्यू सुन रहा था, उसने इतना सुंदर कहा कि उसने बोला कि मेरी फिल्में फ्लॉप होती गई, तो लास्ट टू फिल्म जब बिल्कुल फ्लॉप हुई तो मैं पिताजी के पास गया, बोला कि बहुत दुखी था, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला देखो बेटा ये भी माइनस में गई फिल्म, ये भी माइनस में गई, दो माइनस मिलके अब प्लस हो जाएगा, तो चिंता नहीं कर जा, अभी कीप वर्किंग। तो उसको उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, वो कहा कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, प्रमोशन बराबर नहीं किया, रोल सुनाया नहीं, हमसे पूछा नहीं, कहानी सुनाई, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बहुत प्यार दिया, खिलाया पिलाया, बोला ठीक है बेटा आगे अच्छा हो जाएगा। उसके लिए उस समय उतनी ही जरूरत थी उसको,
4: क्योंकि
3: लेक्चर हम बाद में भी दे सकते हैं।
4: उस समय वो प्यार, वो एक्सेप्टेंस, वो हीलिंग का काम करता है, वो हीलिंग का काम करता है, और उस समय जजमेंटल और क्रिटिसिज्म उस चोट को और भी ज्यादा गहरा करता है। तो कौन आएगा अपनी चोट लेकर ऐसे इंसान के पास जो मेरी चोट पर और जोर से चोट मारेगा, व्हाई विल आई गो देयर।
3: जैसे मैं किसी दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ कि भाई मुझे यहाँ चोट लग गई, वहाँ वो मिर्ची लगाए और चोट पे चोट लगाए और उसको दर्द करे, मैं दर्द हील करने जा रहा हूँ और वो पूछे कि ये तुमको चलाना नहीं आता कार, गिरे कैसे, सोचा नहीं था क्या, क्या कर रहे थे तुम, अंधे हो क्या। मैंने बोला भाई मुझे ऐसे रहने, दर्द में मेरे दर्द को ऐसे रहने दे, मैं कहीं और जाता हूँ, मुझे तेरी दवाई नहीं चाहिए, तू भले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर हो,
4: दिस इज इट,
3: बाय बाय, थैंक यू सो मच,
4: दिस इज इट,
3: आई डोंट वांट यू,
4: व्हिच मींस योर मोस्ट प्रेशियस एडवाइस आल्सो, क्योंकि पेरेंट एडवाइस अच्छी देंगे, राय अच्छी देंगे, लेकिन क्योंकि एनर्जी ठीक नहीं है, एनर्जी जजमेंटल और क्रिटिसिज्म की है, वो अच्छी से अच्छी एडवाइस भी कानों को उस टाइम अच्छी नहीं लगती है।
3: मेरी गुरु मुझे कहती थी, देश काल और पात्र देखकर बोलो बेटा। तुम जब चाहे जब एडवाइस दे रहे हो, पहले देश देखो कौन से देश में है, काल देखो समय इसका मूड कैसा है, इस समय इज ही रेडी टू एक्सेप्ट, या इस समय वो गुस्से में है या ठंडा है, फिर पात्र, पात्र मतलब
4: सामने वाला
3: की
4: बिल्कुल।
3: तो उनको बोलते थे कि पहले कुछ कोई तुम्हारे पास एडवाइस के लिए आता है, बहुत परेशान आता है, पहले पानी पिलाओ, फिर कुछ खिलाओ, फिर मीठा खिलाओ, उसको शांत करो, फिर उसकी बात सुनो, फिर देखो कि उस किस हालत में है, सुनने लायक है, तो बाद में बोलो।
4: लेकिन इसमें भी जैसे आपने कहा कि चोट लेकर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर से एडवाइस नहीं चाहिए कि हमें गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। इवन दो दैट पर्सन कुड गिव मी द बेस्ट टिप दैट टाइम, और अगर मैं वो टिप को ले लूं, मेरे बहुत सारे काम अच्छे हो जाएंगे उसके बाद, मेरे को कभी चोट नहीं लगेगी उसके बाद। लेकिन वो उस टाइम ठीक नहीं है, उस टाइम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है चोट की हीलिंग, ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड विच मीन्स चोट की हीलिंग मीन्स अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कि तुमने जो किया, तुम्हारे से जो हो गया है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड ये बोलने में नहीं, ये अंदर सोचने में, ये थॉट में कि उस आत्मा ने जो भी किया वो अपने किसी सन्स, इवन इफ द चाइल्ड और द पर्सन कम्स एंड टेल्स यू द वर्स्ट थिंग यू हैव एवर हर्ड, द वर्स्ट, हम तो छोटी छोटी बातों में क्रिटिकल होते हैं ना, द वर्स्ट थिंग दैट वी हैव एवर हर्ड, अगर हम वो सुनने के बाद भी ये स्थिति रख सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड कि आपने उस टाइम ऐसा किया, बिकॉज हर आत्मा अपने संस्कार और अपने कार्मिक अकाउंट लेकर आई है। कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण आत्मा वो करने के लिए एक यू नो एक फोर्सफुली, जैसे हम अपने कार्मिक अकाउंट के पास जाते हैं, मुझे जो एडवाइस देनी है वो आगे की चीज के लिए है कि इसके बाद, मतलब उसका नेक्स्ट कर्म। पास्ट कार्मिक अकाउंट ना उसके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में कैसे हो सकता है, वो तो उसके भी कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो उसका पास्ट कार्मिक अकाउंट है। हम सबके कंट्रोल में क्या है, नेक्स्ट कर्म, नेक्स्ट क्या करना है। हम क्रिटिकल किसके बारे में हो जाते हैं, जो पास्ट कर्म हो गया है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे ही हो, दिस इज पास्ट कर्म। तो वो क्रिटिसिज्म अगर हमने नहीं क्रिएट की, हमने अंडरस्टैंड किया, एम्पथाइज किया कि हाँ उसने ऐसा किया, तो हमने उसके दर्द को हील किया। जब वो पेन कंप्लीटली हील हो जाएगा, जो आपने कहा ना समय देखकर, वो पेन जब तक कंप्लीटली हील नहीं हो तब तक एडवाइस वर्क नहीं करेगी। तो पेन को हील करे, फिर समय आने पर जब वो पात्र खुद रेडी है एडवाइस लेने के लिए, तब अपनी राय बताई जाएगी।
3: बिल्कुल सही बात है सिस्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इससे कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड में।
4: थैंक यू, ओम शांति।
3: थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू।
5: इफ वी गेट हर्ट, लेट अस टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग द हर्ट। लेट अस नॉट ब्लेम अदर्स फॉर आवर पेन। वी कैनॉट लव पीपल होम वी होल्ड रिस्पॉन्सिबल for our pain. If we are not judgmental about the other person, and also do not hold them responsible for our emotions, then we are accepting them completely. When we accept them, we will get acceptance from them. This is respect and love. When someone shares their problem or mistakes with us, if we are judgmental, then we are rejecting them. Continuous rejection from us will stop them from sharing with us. Role of a parent or friend is to be a counselor, which means to be non-judgmental. Accept unconditionally. Our love and acceptance is the healing for them. Heal them and then
2: जवाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योति स्वयं भी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। आशा करती हूँ आप प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है, सबका प्रिय वही होता है जो प्रभु का प्रिय होता है, यानी कि सर्व प्रिय ही प्रभु प्रिय है। किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो अक्सर अपने परिचय में हमें वह बताता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, शिक्षक हूँ, इस तरह से चिकित्सक हूँ, इस तरह से अपना वो परिचय देता है। अध्यात्म कहता है कि व्यापार करना, शिक्षा देना या चिकित्सा करना उस व्यक्ति के सृष्टि रंगमंच पर भूमिका है, वास्तव में वो एक आत्मा है। सफल अभिनेता भी वही है जो हर रोल बड़ी संजीदगी से निभाए। आत्मा एक क्या है? प्रकाशमान सितारे के आकार की अति सूक्ष्म दिव्य सत्ता है जो शरीर रूपी ड्रेस पहनकर रंगमंच पर रोल प्ले करती है। कोई भी आत्मा एक शरीर धारण कर केवल एक रोल प्ले नहीं करती, बल्कि अनेक प्रकार के रोल एक ही शरीर से प्ले करती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक सफल व्यापारी है, परंतु व्यापारी की भूमिका क्या है? हाँ, उसके साथ साथ वो उसकी अन्य भी कई भूमिकाएं हैं, जैसे भाई की, पुत्र की, पिता की, पति की, पड़ोसी की, पेशेंट की, यात्री की, तो या ग्राहक की, या दर्शक की, पाठक की। तो हम देखते हैं कि व्यापारी की भूमिका में वो वाहवाही लूटता है, परंतु यदि अन्य भूमिकाओं में अगर वो खरा नहीं उतर पाता है, जैसे कि पत्नी से झगड़ा, पुत्रों से क्रोध, माता से अनबन, बहनों से उदासीन, पड़ोसियों से कटाकटा, अपने चिकित्सक के साथ झुंझलाया हुआ, यात्रा में भी बेचैन, तो उसे सृष्टि रंगमंच का कैसा अभिनेता मानेंगे? सफल अभिनेता भी वही है, हाँ, वह माना जाएगा जो हर भूमिका बड़ी संजीदगी से निभाता है। मान लीजिए कोई अगर फिल्मी अभिनेता किसी फिल्म में उसे राजा का रोल करना है तो बहुत ही सुंदर प्ले करता है, परंतु अन्य 10 फिल्मों में उसका रोल क्रमशः नौकर का, सिपाही का, चपरासी का, शिक्षक का, या पिता का, कुली का, भिखारी का, पहरेदार का, पुत्र का, पति का, या अन्य किसी भी रोल में वो रहता है। ये उसने संजीदगी से निभाए हाँ या नहीं निभाए, नहीं अगर निभाए हैं तो उसके लिए कहा जाएगा कि अमुक अभिनेता।

की केवल एक फिल्म सफल हुई, बाकी सब फ्लॉप हो गई। इसी प्रकार सृष्टि रंगमंच के उस उपरोक्त अभिनेता की केवल एक भूमिका व्यापारी रूप में सफल हुई, बाकी सब फ्लॉप हो गई। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है सबका प्रिय वही है, यानी कि सर्वप्रिय ही क्या होता है, प्रभु प्रिय है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि एक्टर एक फिल्म में अगर उसने अच्छी भूमिका निभाई और दूसरे में उसने उसका अभिनय अगर अच्छा नहीं है तो उसकी जो फिल्म है वो फ्लॉप क्यों हुई, ये क्यों हो जाती है, भूमिकाएं यहाँ पर क्या है उसकी। कोई भी अभिनेता जब किसी भी भूमिका का निर्वहन करने से पहले उसकी तैयारी में समय नहीं देता उस भूमिका को आकर्षक बनाने के लिए, स्वयं को उसके अनुरूप नहीं ढालता तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ न्याय नहीं करता तो करता है तो उसकी वह भूमिका फ्लॉप हो जाती है। उसी प्रकार है कि जीवन रूपी नाटक में भी जब कोई भी एक्टर अपनी किसी भी भूमिका को समय नहीं देता, उसकी अहमियत को नहीं समझ पाता, उसे सम्मान नहीं देता तो उसकी भी वह भूमिका क्या होती है, फ्लॉप हो जाती है। वह अपनी किसी एक इमेज को सवारने में समय शक्ति ऊर्जा लगाता है परंतु अन्य भूमिकाओं पर वो क्या करता है, गौण उसको मानकर उसकी अवहेलना करता है। तब कहने में तो आता है ना कि वह अपनी पत्नी से पुत्रों से न्याय नहीं करता, परंतु वास्तव में तो वह अपनी पति वाली भूमिका से और पिता वाली भूमिका से न्याय नहीं करता। हाँ, इस प्रकार वह क्या होता है, ऑलराउंडर अभिनेता बनने के बजाय किसी एक भूमिका को पकड़कर उसी तक सीमित रह जाने वाला साधारण एक्टर बन जाता है। यहाँ देखते हैं कि हम भूमिका को सीमित या असीमित करते हैं अवगुण और अवगुण, अवगुण और गुण जो होते हैं उसको भी हम देखते हैं कि उस पर क्या करते हैं। सृष्टि रंगमंच पर मानो जो है कि भूमिका को सीमित कौन कर देता है, हाँ उसको हम देखते हैं उसकी भूमिका जो है सीमित या असीमित करते हैं उसके अवगुण और गुण, मानो चाहे तो सारी सृष्टि को प्रभावित कर सकने वाली भूमिका भी प्ले नहीं कर सकता और चाहे तो ऐसी भूमिका भी प्ले कर सकता है कि उसके नजदीकी लोगों पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। जैसे मान लीजिए बाजार से हमने एक लोहे का टुकड़ा खरीदा, अब उसकी कीमत है 50 रुपए। हमने उस टुकड़े को इस प्रकार ढाला कि वह एक स्कूटर का महत्वपूर्ण पुर्जा बन गया, अब जिससे उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत हो गई 500 रुपए। इससे भी आगे अगर आप देखें तो यदि हम उसे और अधिक तराश कर कार का पुर्जा बना देते हैं तो उसकी कीमत हो जाती है 1000 रुपए। और यदि इतना आकार दे कि वह हवाई जहाज में काम करने वाला कोई महत्वपूर्ण स्क्रू बन जाए तो कीमत उसकी 5000 रुपए तक भी की जा सकती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि लोहे के टुकड़े के साथ गुणवत्ता जुड़ती गई और कीमत बढ़ती गई। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है सर्वप्रिय ही प्रभु प्रिय है। एक होता है यहाँ पर हम देखते हैं इंद्रियों की जो गुणवत्ता की वृद्धि, इसी प्रकार कोई भी साधारण जो व्यक्ति होता है वो ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से यदि अपने विचारों में सर्व के लिए शुभकामना, नेत्रों में सर्व के लिए पवित्रता की किरणें और मुख में सर्व को ऊंचा उठाने वाले बोल और हाथों में परोपकार के कर्म भर ले तो उसकी भूमिका जो है वैश्विक हो जाती है। हर कोई उसे जाने लगता है, हर कोई उसे अपना मानने लगता है। वह सर्वप्रिय अर्थात लोकप्रिय के साथ साथ प्रभु प्रिय भी बन जाता है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसने अपने एक एक इंद्रियां की गुणवत्ता को बढ़ा लिया। कई भाई बहन के मन में एक प्रश्न आता है कि हम अपनी भूमिका को सर्वप्रिय बनाना चाहते हैं, परिवार में सबको राजी रखने के साथ साथ समाज देश में भी सबको राजी रखना चाहते हैं, परंतु पता नहीं क्यों हमसे ऐसा चिंतन भूल और कर्म हो जाते हैं जो भूमिका फ्लॉप हो जाती है। अब इस प्रश्न के उत्तर में हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी जो है किसी दीवार के साथ टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तब वह कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये टकराए, परंतु पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। कैसे हो गया, इसका स्पष्ट उत्तर है कि चालक में नियंत्रण शक्ति की कमी थी। उसने समय पर गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाए, ब्रेक की सुविधा होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए दुर्घटना घट गई। यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं कि नियंत्रण शक्ति की कमी। इसी प्रकार मानव जो है जीवन रूपी गाड़ी की जो चालक मानव आत्मा है, मानवीय जो गाड़ी के सभी महत्वपूर्ण अंगों को चलाना या रोकना यह आत्मा के वश में है। अब यदि मुख से क्रोध के शब्द या अन्य प्रकार के नकारात्मक शब्द निकलते हैं तो इसका अर्थ है कि आत्मा चालक में नियंत्रण शक्ति की कमी है। वह अपनी ही एक अंग मुख को कमांड नहीं दे पा रही है कि कब उसे क्या बोलना है, क्या बोलना है उसे ये नहीं पता, कितना बोलना है। तो यहाँ हम देखते हैं लौकिक दुनिया में जब कोई ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल कर न कर पाए और दुर्घटनाग्रस्त कर ले तो उसका जो लाइसेंस जब्त हो जाता है और अदालत में उस पर कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार जब हम अपने और शरीर की जो कर्म इंद्रियों को अगर ठीक से कमांड नहीं दे पाते हैं और उनके कारण किसी से टक्कर या चक्कर में फंस जाते हैं तो हमारा भी सुखमय जीवन जो है जीने रूपी जो है उसकी लाइसेंस जो है जब्त हो जाती है, अर्थात हम रोग शोक के शिकार हो जाते हैं और हम पर क्या होता है, हम पर भी धर्मराज की अदालत में कार्यवाही चलती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है सर्व का प्रिय प्रभु प्रिय। जैसे कि हम देखते हैं कि आत्मा की इंद्रिय पर नियंत्रण शक्ति बनी रहे और बढ़ती रहे, इसके लिए भगवान शिव कहते हैं प्रजापति बने हो, इंद्रियों रूपी प्रजा के मालिक हो, क्या अनुभव करते हो? स्टॉप कहा और कोई भी कर्म इंद्रिया जो है स्टॉप हो गई? ऐसे नहीं, आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। हर कर्म इंद्रिया की शक्ति को आंख के इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्म इंद्रिय जीत बिनु तब फिर प्रकृति जीत, मन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बने। तो अपने से पूछो, हर कर्म इंद्रिया जी हुजूर जी हाजिर करते हुए चलती है? आप राज्य अधिकारी का सदा स्वागत और सलाम करती रहती है? राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है? हे राज्य अधिकारी, आप सबकी राज्य कारोबार कैसी है? मंत्री उपमंत्री कहीं धोखा तो नहीं देते हैं? चेक करते हो अपने राज्य दरबार को? राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी? राज्य अधिकारी की यहाँ के संस्कार ही भविष्य में काम करेंगे। फौलादी दृढ़ता का प्रतीक आसमान में चमकते ही चमकने वाला ध्रुव तारा जिस ध्रुव बालक की यादगार है उसकी पौराणिक कहानी में दिखाया गया है कि वी माता के कटु वचनों से आहत होकर वह अकेला ही तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा और तपस्या में रत हो गया। तपस्या करते करते भूख प्यास श्वास निद्रा भय सब पर विजय प्राप्त कर ली। इस अखंड तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया, बेटा ध्रुव जिस पद को तुम्हारे पिता या पितामह तक ने नहीं पाया है, जिसे और भी कोई नहीं पा सका है, वह ध्रुव लोक तुम्हारा है। अभी तुम घर लौट जाओ, पिता के बाद सिंहासन को घोषित करना, पृथ्वी पर राज्य भोग कर फिर तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। आत्मनियंत्रण और निरंतर जो तप में ध्रुव को प्रभु प्रिय के साथ सर्व प्रिय भी बना दिया। हम सब भी विकारों रूपी वी माता के कटु वारों से आहत हो परमात्मा पिता की अव्यभिचारी याद रूपी तपस्या के पथ पर अग्रसर है। इस पथ का एक ही मूल मंत्र है, स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों पर विजय। इंद्रिय जीत ही विश्व जीत, विश्व प्रिय लोक प्रिय सर्व प्रिय और प्रभु प्रिय है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। सदा हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। ओम शांति।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप सुनने के तहत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अहो ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी हो आमचा

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पेड़ों का दर्द, पात्र परिचय, पंकज, आदित्य, वेदांत, यश, आदित्य प्रकाश, उन्नति, लेखिका सुधा पुरी।
3: कितना मजा आता अगर मैं एक पेड़ होता, कितने फल लगते मुझ पर
4: इससे तुम्हें क्या फायदा होता?
3: मजे से खूब सारे फल खाता।
5: पर पेड़ तो अपने फल खा ही नहीं सकता, तुम्हें तो खाद खानी पड़ती।
6: बात तो सोचने की है, नदी अपना जल नहीं पी सकती, पेड़ अपना फल खा नहीं सकते।
4: यानी पूरी की पूरी प्रकृति हमें दूसरों के लिए जीना सिखा रही है।
7: मम्मी भी पहले सबको खिलाकर बाद में खाती है।
6: हम भी क्या ले बैठे हैं सुबह सुबह, चलो वहाँ योग की कक्षा में ध्यान सिखा रहे हैं आज।
4: मेडिटेशन, चलो चलो।

0: धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मस्तक के बीचों बीच ध्यान ले जाए। विचारों को साक्षी भाव से देखिए, उन पर विचार न करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए।
1: मुझे इस ध्यान में हमेशा ही आनंद आता है, पर ये क्या ऐसा लग रहा है पेड़, हवा, पृथ्वी, जल सब बातें कर रहे हैं। ये यहाँ है, जैसे ये पेड़, ये हवा, ये जलाशय, ये पृथ्वी, ये सब मेरी ओर आते हुए कुछ कह रहे हैं। इधर से चुपके से सुनती हूँ।

0: संसार है।
1: मैं भी सुन पा रहा हूँ साफ साफ प्रकृति के सब अंगों की बातें।
2: लगता है योग कर करके हमारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। अब हम प्रकृति को और स्पष्ट सुन पा रहे हैं। देखो वहाँ योग की कक्षा चल रही है।
3: तो हम भी तो वहाँ से योग कर रहे हैं।
4: आज ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इन सब प्रकृति के अंगों की सब बातें हम साफ साफ सुन पा रहे हैं।

0: ओह, तो क्या कह रहे थे कल तुम सब? ये धरती विनाश की ओर ही बढ़ रही है, विनाश नहीं घोर विनाश।
1: पर ये आप कैसे कह सकते हो?
0: मैं पेड़ हूँ और वनों के तीव्रता से नष्ट होने से परेशान हूँ।
2: मतलब?
0: कोई समझ ही नहीं रहा है।
3: क्या पेड़ भैया?
0: अरे यही कि वन धरती के फेफड़े हैं। आपके फेफड़ों को ही कोई नष्ट कर दे तो क्या आप जी सकेंगे?
3: हैं? ये क्या बात कर रहे हो
0: भाई? इस धरती को अपना ही शरीर समझो और पेड़ों की वनों की रक्षा करो। लेकिन तुम कहाँ सुनने वाले?
2: पर मैं, बल्कि हम सब अपने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हैं।
0: उससे क्या होगा?
1: क्यों, क्यों नहीं होगा?
0: हर रोज, जी हाँ, हर रोज पूरे विश्व में एक फुटबॉल कोर्ट जितना वन नष्ट कर दिया जाता है। भूमध्य रेखीय वन कितनी तीव्रता से नष्ट हो रहे हैं, कुछ अंदाजा भी है?
3: हे भगवान, पर क्यों?
0: मानवों की जरूरतों और प्रगति के लिए।
4: हे ईश्वर, कितनी अंधेर गर्दी है प्रगति के नाम पर।
0: प्रगति या जनसंख्या में वृद्धि?
2: मतलब?
0: मानवों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे के पूरे वन ही साफ। उफ।
4: फिर कहते हो, आह कितनी गर्मी हो रही है, उफ कितनी सर्दी है।
3: कहीं बारिश का कहर है तो कहीं आंधी तूफान का, सुनामी और ना जाने क्या क्या।
1: वो तो है ही।
3: तुम सब अपने जीवन काल में ही वो परिवर्तन देख पा रहे हो मौसमों के, जिनको की सदियां लग जाती थी। वो क्या कहते हो तुम, क्लाइमेट चेंज
0: और ग्लोबल वार्मिंग?
4: कुछ ऐसा ही हुआ था आइस एज में, जब सब एक बार को तो नष्ट हो गया था।
2: हम भारतीय तो पेड़ों को पूजते हैं।
0: हाँ पूजते हैं, राजस्थान में गणगौर के समय,
3: उत्तर प्रदेश में तीज पर,
4: दक्षिण भारत में पोंगल पर,
2: पूरी भारत में बिहू पर,
0: पंजाब में बैसाखी और संक्रांत पर,
4: और गुजरात में मकर संक्रांत पर।
0: क्या कुमकुम लगाते हो, जड़ों के पास अगरबत्ती प्रसाद के ढेर लग जाते हैं,
4: दूध दही की बारिश कर देते हो उस एक दिन तो।
0: कितना सुंदर नृत्य किया है मेरे इर्द गिर्द इन सब महिलाओं ने, पर फिर बाद में क्या?
2: बाद में मतलब? बाद में भी हमारे मन में श्रद्धा होती है।
0: सिर्फ श्रद्धा से पेट नहीं भरता साहब, पूजा तो आप हम पेड़ों की बहुत करते हैं, पर उनमें पानी देने से कतराते हैं।
2: क्या कभी किसी ने किसी पेड़ का जिम्मा उठाया है?
4: कई संस्थाओं के लोग दिखावे के लिए पेड़ तो लगाते हैं, फिर मुड़कर भी नहीं देखते कि उसका क्या हुआ।
0: जैसे ये काम किसी और का है, उन्हें तो पेड़ लगाते हुए फोटो खींचा कर अखबारों की सुर्खियां बटोरनी थी बस।
5: लेकिन वो अब कहूँ भी क्या, ये पेड़ क्या समझेगा हम मानवों के सामाजिक झमेले, करना पड़ता है।
2: कभी उदाहरण बनाने के लिए है ना दीदी?
5: और क्या, कभी सिर्फ सांकेतिक रूप से संदेश देना पड़ता है, या जैसे किसी अधिकारी को किसी नई योजना के शुभारंभ का संकेत करते हुए, तो फिर जैसे वो पेड़ लगा के, है ना?
2: अब मेरी सुन लो साहब, मैं पानी हूँ पानी।
3: लो अब ये माशे भी कुछ ना कुछ उलाहना जरूर देंगे।
5: दे भी क्यों ना, कुछ कम गलतियाँ कर रहे हैं हम मानव क्या?
2: पेड़ भैया, तुम्हारी धमनियों में जड़ों से ऊपर की ओर जाकर पत्ते पत्ते में समाने वाला, तुम्हारे दिल की धड़कन से खूब वाकिफ हूँ, बिल्कुल इन मानवों के रक्त की तरह।
1: ये पानी की लहरों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी समुद्र के किनारे हूँ। पर ये क्या, ये तो स्पष्ट कुछ कह रहे हैं, ये सारा माजरा है क्या?
2: पेड़ भैया, तुम्हारी जड़ों के आसपास ये जो सीमेंट लगाकर पटरियों पर तुम्हारी सीमा रेखा तय करते हैं ना, ये मानव
4: कहने का तो बड़े वैज्ञानिक बनते हैं।
3: ये भी नहीं समझते कि आपके तने के अंत से बहुत दूर तक तुम्हारी जड़ें फैली होती है, और उनका सबसे दूर वाला छोर ही पृथ्वी से तुम्हारे लिए हवा और पानी बटोरता है।
4: तुम्हारे तने के आसपास सीमेंट लगा देने से जैसे तुम्हारी जड़ों की सांस ही थम जाती है, पानी क्या खाक बटोरेगी?
2: फिर देखो ना अपने पत्तों का हाल, एकदम निर्जीव और पीले पड़े हुए हैं।
0: वही तो कह रहा हूँ, ये मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये हरे भरे पत्ते ही तो हैं जो इनका छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इनके काम आने वाले ऑक्सीजन में बदलते हैं, अपने साथ साथ इनके लिए भी भोजन बनाते हैं।
5: ठीक ही तो है, और कपास से कपड़ा और लकड़ी से मकान,
2: यानी रोटी कपड़े और मकान का फुल पैकेज।
0: सुना तो है अब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं ऐसे सीमेंट के चबूतरे हटाने के लिए, कुछ एनजीओ भी इसमें मदद कर रहे हैं, पर वही ना, लातों के भूत
3: बातों से नहीं मानते। नौबत यहाँ तक आ गई कि राष्ट्रीय स्तर पर बात उठानी पड़ी प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान।
0: साफ सफाई जैसी मौलिक बात भी अभियान के रूप में उठानी पड़ रही है।
2: ठीक कहते हो पेड़ भाई, नए नए बड़े कार्यक्रम तो बहुत शुरू करते हैं, पर साथ साथ कूड़े के ढेर भी लगाते जाते हैं।
1: दीदी ये सब प्रकृति के अंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह मानवों की कहाँ की अकलमंदी है।
0: पर यह स्वच्छता अभियान एक आदमी या संस्था का नहीं, पूरे मानव जाति का है।
4: मैं भी मानव की इस मूर्खता से हैरान हूँ। और तो और, मैं तो सभी जलाशयों, नदी, तालाब, समुद्रों, महासागरों के प्रदूषित होने से परेशान हूँ। ये सब प्रदूषित हुए तो समझ लो दो तिहाई धरती प्रदूषित।
2: इतना गणित तो जानते ही होंगे बुद्धिमान मानव, या भूगोल ही सही, पढ़ाई तो बहुत करते रहते हैं।
3: बस करो अब बस करो, समझ लो अब समझ लो, मत करो मत करो मत करो, साफ रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ।

पटना, यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

लगी मस्त नजर की कटार, हा हा हा, मस्त नजर की कटार।

राहों में हो, इन प्यार की राहों में दिल बिक गया, हम बिक गए।

हो मस्त नजर की कतार हा हा।

जिस दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा।

कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए, लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

यहाँ देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, बस मैं और तू।

आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह समारो, तुम आज मेरे संग हंस लो।

0: अजी ये क्या कह रही हैं आप?
1: कभी और गाइए।
0: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
2: हाँ गाओ।
3: मैं और नहीं गा सकती।
2: गाओ,
0: आपको गाना पड़ेगा।